0: दरगाह अंदर पाइए तगना कुरसकूत महला पहला
1: तगना इंद्री तगना नारी पलके थुकबो।

0: श्लोक महला पहला, गौ ब्राह्मण को करला वो गोबर तरना जाय, धोती टिका तय जप माली धान मलेशा खाई, अंतर पूजा पड़े कते बासन जंतर का भाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला।
1: मानस खाने करे लेवा श्री भगवान तन गलता, तिन घर ब्राह्मण

धर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे अपरपूर मथे टिका तेड़ धोती कखाई हथ श्री जगत कसाई नील वस्त्र पैरो प्रवान मलेश ताले पूजे प्रवान आखे आका पुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे न जान देख चौंका कड्डी कार उपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे योन साडा पिटे तन पिटे पेड़ करे

पांडु पूजय पंडय बाज न कोई, नानक पंडय बहरा एको सच्चा सोई। जित मुख सदा सलाहिए भागा रति चार, नानक ते मुख जिले इत सच्चे दरबार बोड़ी सबको अखिया।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया 9870 किलोहर्ट्स ते। तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी डी फ्रीडिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, तफ़सील कुझु हिन तरह आहे। थोरी देरि में तव्हां हमेशा भगत कौराम साहब खे ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदो ऐं पोइ कुझु गीत ऐं कलाम ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कई वेंदियूं। अहिड़े प्रोग्राम जी विचूड़ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर छो त भगत कौराम साहब जन जे मिठड़े आवाज़ में ई कलाम ॿुधूं।

जपत गाय पटले कर लकड़ी मुख से मुरली बजावत है। जपत गाय पटले कर लकड़ी मुख से मुरली बजावत है। मखल का

अदब कलम साहब जन जी सदाबहार आवाज में कलाम दिरे आकाशवाणी जी सिंधी सरस आहे यार पेश आहे तफसरो विक्रमन के सुबह ते नमूने सा लॉन्च करण सा भारत जो पहलो खांगी तौर ते तैयार कयल ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल ते भारत के एक गंभीर आलमी रांदीगर करे बढ़जंदड़ आलमी स्पेस इकोनॉमी में खेस परपा कयो आहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जे फैसले के सही साबित कयो आहे जो हुन मुल्क जे स्पेस खेत्र के खांगी खेत्र लाइ खोलियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस जे इंडिपेंडेंट स्टेट वजीर इन खां अलावा प्रधानमंत्री ऑफिस जे सूबाई वजीर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जे वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इहा ॻाल्हि चई डॉक्टर सिंह मिशन आगमन जे सुबह ते लॉन्च खे ॾिठो जंहिंखे छोड़े वियो श्रीहरिकोटा जे सतीश धवन स्पेस सेंटर मां जिते स्काई रूट एरोस्पेस सुबह ते नमूने विक्रम वन खे संदसि मुक़रर लो अर्थ ऑर्बिट में मोकिलियो इन तरह सां इहा पहिरीं भारतीय खांगी कंपनी आहे जंहिं भारतीय ज़मीन तां ऑर्बिटल लॉन्च खे हासिल कयो आहे मिशन सां भारत जी स्पेस जर्नी में हिकु माइलस्टोन बरपा थी वियो आहे तंहिंसां पतो थो पवे कि मुल्क जी अवामी खांगी भाईवारी मॉडल जेको आहे सो तमामु पुख़्तो आहे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसरो

ऐं सुधारण सां भारतीय इनोवेटर्स जी जजी कुवत खे अनलॉक कयो वियो आहे। खेन मुल्क जे स्पेस बुनियादी ढांचे जो लंग मिली वियो आहे ऐं खेन आलमी दर्जे जी टेक्नोलॉजी जो इकोसिस्टम पिण मिलियो आहे, जंहिंसां हू भारत मां ई रॉकेट्स खे तयार करे लॉन्च करे सघंदा। वज़ीर इन स्पेस इसरो ऐं स्पेस खाते जे स्पेस खाते खे पिण वाधायूं ॾिनियूं, जो हिन रिकॉर्ड जे अवामी खांगी भाईवारी ढांचे तहत भारतीय स्पेस इकोसिस्टम में इहा हासिलात हासिल कई वई आहे। हुन चयो त विक्रम वन जी हासिलात ॿुधाए थी त कीअं दूरंदेशी पॉलिसी तयार करण सां साइंटिफिक महारत ऐं वापारी टैलेंट खे गॾिजी करे आलमी चटाभेटी टेक्नोलॉजीस हासिलातूं हासिल करे सघनि था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लंबे अरसे खां स्कायरूट टीम सां पंहिंजे एसोसिएशन खे यादि कराईंदे चयो त हिन तमामु वेझे तरह सां कंपनी जे फाउंडर्स खे ॾिठो आहे त कीअं शुरूआति खां वठी करे संदन मंझि तकनीकी अक़ीदो, क्रिएटिविटी ऐं इनोवेटिव एप्रोच हुई। हुन चयो त अॼु जी हासिलात सालनि जी महिनत, साइंटिफिक महारत ऐं महकम इरादे सबबि आई आहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह चयो त विक्रम वन ॾेखारियो आहे त ऑर्बिटल मिशन में हिकु ख़ासि दर्जे जी तकनीकी मैच्योरिटी घुर्जे। आलम भर में जेके पहिरियों दफ़ो लॉन्च कया वेंदा आहिनि से फ़क़ति डमी मासिस खणंदा आहिनि, पर हिन इन जे उबतर विक्रम वन आज़माइशी पेलोड खयो आहे, तंहिंसां ऑर्बिट में जदीद टेक्नोलॉजी जो पतो पए थो, असांजी महारत साबित थिए थी। वधीक चयो त भारत जो स्पेस इकोसिस्टम तमामु घणी तब्दीली में आयो आहे, ख़ासि करे जॾहिं खां साल 2020 खां वठी करे रिफॉर्म्स आंदा विया आहिनि, सुधार आंदा विया आहिनि। अॻु में सालनि ताईं कंहिं बि को बि प्राइवेट लॉन्च कोन थियो आहे। अॼु भारत खे 400 खां बि वधीक स्पेस स्टार्ट्स अप आहिनि, संदसि पहिरियों स्पेस यूनिकॉर्न आहे ऐं संदसि स्पेस इकोनॉमी जेका मईशत आहे सा 9 बिलियन अमरीकी डॉलर जी आहे। तंहिं में मुल्क जी दूरांदेशी हिन खे वधाए करे 44 बिलियन अमरीकी डॉलर ताईं आणणु इहो सभु मुमकिन थी वेंदो ईंदड़ ॾहाके ताईं। हुन ॿुधायो त विक्रम वन जी हासिलात कामयाबी ॿुधाए थी त कीअं पॉलिसी में सुधार आणण सां इनोवेशन वधे थी, आलमी चटाभेटी वापारी वधनि था ऐं भारत आलम जो हिकु अहम स्पेस सरप्राइज़ कंदड़ मुल्क बरपा थिए थो।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: कुछ गीत गज़ल ऐं कलाम आगाज़ करे किशोर रमाणी जी आवाज़ सां।

సార్, శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము ట్రంగుల్ కంజీ యాత్ర తెలింది మాల్దోవా, నార్త్ మెసెడోనియా అండ్ రొమానియా. पार्लियामेंट जो चौमासे वारो इजलास अॼु खां शुरू थियण वारो आहे. सरकार सभिनी सियासी पार्टियुनि खे अपील कई आहे त इजलास खे इजलास कमकार सही नमूने सां हलाइण ॾियनि. अमरीकी फ़ौज ईरान जे पैरामिलिट्री इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स जे ठिकाणनि मथां हवाई हमला कया आहिनि. जॉर्डन में ईरान अमरीकी सिपाहियुनि खे मारियो आहे. तंहिंजे मोटाए ते कार्रवाई में इहा कार्रवाई कई वई आहे. गुयाना में सरकारी ॿेड़ी में 133 माण्हू आहे जेका ॿुॾी वई आहे. तंहिंमें 67 माण्हुनि खे बचायो वियो आहे ऐं ॿियनि माण्हुनि जी ॻोल्हा जारी आहे. पेरू में 5.5 मैग्नीट्यूड ज़लज़ले खां पोइ जंहिं ज़लज़ले एडेंस इलाइक़े खे मुतासिर कयो, तंहिंमें 5 माण्हू मारिजी विया आहिनि ऐं 20 खां बि वधीक ज़ख़्मी थी पिया आहिनि. इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में भारत सोने बिलो ऐं 3 चांदी जा बिला खटिया आहिनि. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बिला खटंदड़नि खे वाधायूं ॾिनियूं आहिनि. ऐं फुटबॉल में स्पेन अर्जेंटीना खे एक्स्ट्रा टाइम में 1-1 तां मात ॾेई करे फीफा वर्ल्ड कप 2026 खटी चुको आहे.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। यह 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से ज्यादा नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परम्पराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्रवाई को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर

0: मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। इन तीनों देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मॉल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। स्पेन ने अतिरिक्त समय में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। यह स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में यह खिताब जीता था और इस जीत के साथ ही स्पेन एक समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. A report.
2: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Unpublished, Akashwani News, Delhi.
1: On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday chaired the meeting of the Business Advisory Committee of the Lok Sabha. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Mr. Birla emphasized

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर सुबह के 7:10 और 15 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका। संगीतिका कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे इंद्रेश मिश्र के गाए भजन। तबले पर हैं रितु मिश्रा, सितार पर संगत की है रईस अहमद ने और हारमोनियम पर हैं दामोदर लाल घोष।

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप इंद्रेश मिश्र के गाए भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आज की इस महकती हुई सुबह में गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उगते हुए सूरज की मध्यम सी धूप, ठंडी हवा का झोंका और हाथ में चाय का प्याला, जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो दिल अपने आप गुनगुना उठता है।

हर सुबह एक नया ख्वाब लाती है, हर सुबह एक नया ख्वाब लाती है, बीत गई जो रात उसे भुलाती है। मुस्कुरा कर तो देखो इस नए सवेरे को, ये जिंदगी जीने का एक नया अंदाज सिखाती है। बिल्कुल दोस्तों, कल क्या हुआ उसे भूल जाइए और अपने आज के दिन में मुस्कुराहट से एक नई कहानी लिखिए। जिंदगी यही है दोस्तों, रात को हम सब थक कर सो जाते हैं और सुबह एक नई ऊर्जा के साथ फिर से लग जाते हैं। वैसे दोस्तों, आज जब मैं सुबह आ रही थी तब बारिश की हल्की हल्की सी फुहार पेड़ पौधों पर देखकर बहुत ही ताजगी का अनुभव हुआ और बहुत ही लुभावना था सब। और निकलिए आप भी बाहर और आनंद लीजिए इस बारिश का।

दोस्तों, दिन की शुरुआत अगर एक सकारात्मक विचार से हो तो क्या बात है। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आज के दिन को सिर्फ ऐसे ही नहीं बिताना है, बल्कि खुलकर जीना है और अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाना है।

गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, खूबसूरत पल हमेशा बहुत ही जल्दी बीत जाते हैं। हम चाहे उन्हें कितना भी रोकने की कोशिश करें, पर फिर भी वो भागते ही चले जाते हैं। और आप सब साथ होते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता। आपका दिन बहुत ही अच्छा, ऊर्जावान और सफलताओं से भरा रहे, इसी कामना के साथ अब मैं आपकी दोस्त आपसे विदा लेती हूँ। और हंसते मुस्कुराते रहिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। छोड़े जाते हैं आपको इस प्यारे से गीत के साथ।

0: अभी आप गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में और फिर उर्दू में।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मोहित शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए और उस जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
3: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस

0: बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
2: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
3: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
2: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना

0: ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
2: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
3: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधमसिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
4: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
5: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमरीका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाश

0: सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है, शीर्षक दिया है वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति मारिया संजू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है, जनजाति समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिन्स टुडे। गवर्नमेंट सीक्स कोऑपरेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandhu in Chisinau today. Madhya Pradesh Cabinet approves Uniform Civil Code Bill, tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. US strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tensions deepen. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. A report.
3: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
2: On the eve of the monsoon session, the government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
4: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday chaired the meeting of the Business Advisory

0: judge player of the series. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakel.
1: Thank you, Shagun. The Asian Age informs Shah to introduce Rajya Sabha Vande Mataram Protection Bill today. Armenia and Saudi Arabia, among six nations eyeing India's battle-tested Astra missiles, headlines the Hindu business line. In its editorial piece titled Two Pillars of Space Success, Hindustan Times writes, a robust talent pipeline will ensure India's continued public sector success and spur private sector momentum in the space sector. From punching above its weight with a low-cost Mars orbiter mission to establishing itself firmly in the club of elite space-faring nations with its superstardom, India has enough claims to space superstardom. Also, India became the third country in the world after the US and China to have private sector capacity in orbital launch, a critical threshold demonstrating technological sophistication. Hindustan Times headlines Sindhu ends two-year title drought in style, adding the 31-year-old become first Indian to win Japan Open, combining relentless attack and tactical discipline and composure. And finally, coming soon in Gujarat, a life-size Harappan town with markets, dockyards. Very soon, visitors to Lothal, one of the most prominent outposts of the Indus Valley civilization, will be able to get a feel of walking through the Harappan streets and civic spaces, informs the Indian Express. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Monsoon session of Parliament begins today. Government seeks cooperation of all political parties for smooth functioning of Parliament. President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau today. Madhya Pradesh Cabinet approves Uniform Civil Code Bill, tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के कामकाज को खुश उसलूबी से जारी रखने के लिए तआवुन करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मालदोबा की अपनी हमनसब माई सांधु से वक्त की सतह की बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश काबीना कमेटी ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है। कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरेकार से बाहर रखा गया है। जम्मू और कश्मीर के रजौरी और पुंछ जिलों में ताजा सैलाब और जमीनें तोड़े खिसकने से 11 अफराद हलाक हो गए, 8 अफराद अब भी लापता हैं। अमरीका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। हमलों की ये नवी रात है जिसकी वजह से आबनाए हुरमुज से मुतालिक कशीदगी में मजीद शिद्दत आ गई है। और स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को इजाफी वक्त में 1-0 से हराकर 2026 का फीफा आलमी कप जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। 25 दिन के इस इजलास में 19 नशिस्तें होंगी। तफसील हमारे नामानिगार से।
3: उम्मीद है कि इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल बहस मुबाहिसे और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुताबिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। उधर राज्यसभा में कौमी एहतराम को नजरअंदाज करने की रोकथाम से मुताबिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। इन बिलों के अलावा पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन से मुताबिक तरमीमी बिल, इनकम टैक्स के तरमीमी बिल, बहुत छोटे और औसत दर्जे के कारोबार को तरक्की देने से मुताबिक तरमीमी बिल 2026 पेश किए जाने की भी उम्मीद है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
2: मानसून इजलास के मौके पर हुकूमत ने कल पार्लियामेंट हाउस में एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। 40 सियासी पार्टियों के 50 से ज्यादा रहनुमाओं ने मीटिंग में शिरकत की। पार्लियामेंट उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मीटिंग के बाद नामा निगारों से खिताब करते

0: हुए सभी सियासी पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो पार्लियामेंट का कामकाज खुशउसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं और बुनियादी मामलात पर तामीरी बहस मुबाहसा करें।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: सुने। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कल लोकसभा की मशावरती कमेटी के कामकाज से मुतालिक एक मीटिंग की सदारत की। इसी दौरान सरकार और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाले अरकान ने इस इजलास के दौरान कानून साजी और दीगर मुजवजा कामकाज के बारे में तबादले ख्याल किया। जनाब बिरला ने तामीरी बहस मुबाहसे, बामाना शिरकत और आला तरीन पार्लियामानी अख्तार का ख्याल रखने की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने वजाहत की है कि पार्लियामेंट के इजलास के पेश नजर जो आज से शुरू हो रहा है, नई दिल्ली जिले में किसी भी एहतजाजी मार्च या जुलूस की इजाजत न तो मांगी गई है और न ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि मस्कूरा इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की दफा 163 नाफिज है, लिहाजा जंतर मंतर को छोड़कर बाकिया इलाकों में एहतजाजी मार्च, जुलूस, मुजाहरे और 5 या इससे ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चेसिनाव में मालदोवा की अपनी हममनसब माया सांडू के साथ वफद की सतह की बातचीत करेंगी। सदर मुर्मू मालदोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मालदोवा भारत पार्लियामानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से भी बातचीत करेंगी। इसके अलावा वो एक तजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगी। किसी भारतीय सदर का मालदोवा का ये पहला दौरा है। सदर जमहूरिया 3 मुल्कों मालदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर हैं। मालदोवा के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया दूसरे मरहले में कल शिमाली मकदूनिया पहुंचेंगी। मध्य प्रदेश काबीना ने जगदीशपुर में जो भोपाल के नजदीक एक तारीखी कस्बा है, एक खसूसी मीटिंग के दौरान यकसा सिविल कोड UCC बिल को मंजूरी दे दी है। हमारे नवनिगार ने बताया है कि कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश ने यकसा सिविल कोड UCC पर अमल दरामद के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। कल भोपाल के जिले जगदीशपुर में काबीना की एक मीटिंग मुनाकिद की गई जिसकी सदारत वजीर आला डॉ मोहन यादव ने की। इस मीटिंग में UCC बिल 2026 के मसौदे को इत्तेफाक राय से मंजूरी दे दी गई। अब इस बिल को रियासती असेंबली के मानसून इजलास में पेश किया जाएगा। ये इजलास आज से शुरू हो रहा है जो 24 जुलाई तक जारी रहेगा। काबीना मीटिंग के बाद वजीर आला यादव ने नामानिगारों को बताया कि UCC से रियासत में इस यकसा सिविल कोड से रियासत के हर शख्स को बराबर की हैसियत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि अब रियासत में कई शादियों की इजाजत नहीं होगी। यकसा सिविल कोड के मुताबिक जो लोग लिव इन ताल्लुकात में रहेंगे उन्हें एक महीने के अंदर अंदर इंदराज कराना होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन गांव की सतह पर भी लाजमी होगा। अलबत्त कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरेकार से बाहर रखा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रजौरी और पुंछ जिलों में कल बारिश की वजह से अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक और 8 लापता हो गए। राहत और बचाव टीमों ने सैकड़ों अफराद को बचाकर उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि राहत से मुतालिक कार्रवाइयां जारी हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस हादसे के बाद सूरत हाल का जायजा लिया और जम्मू और कश्मीर सरकार को यकीन दिलाया कि मरकज की तरफ से हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: राजौरी और पुंछ जिलों के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की रात आने वाले तबाहकुन सैलाब ने कीमती इंसानी जानों के इतलाफ के साथ निजी और सरकारी इमलाक, सड़क और बुनियादी ढांचों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। दोनों जिलों में सैकड़ों गाड़ियां या तो सैलाब में बह गईं या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। पूरे जिले में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जबकि राजौरी जिले के तकरीबन निसफ इलाके में बिजली मुनकता हो गई है। जम्मू कश्मीर से गुलशन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: जुनूब मगरबी मानसून हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज और कल के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। محکمہ نے ریاست کے بہت سے حصوں میں شدید سے بہت شدید

0: आ सकते हैं। इसी दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट के पेश नजर कांगड़ा, चंबा और सिरमौर जिले की इंतजामिया ने आज सभी तालीमी इदारे बंद रहने का हुक्म दिया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: उत्तराखंड में कल सुबह से बारिश हो रही है, जिससे मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासत के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं और इंतजामिया अलर्ट के पेश नजर हर किस्म की परेशानी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तफसील हमारी नामानिगार से।
2: भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, खोड़ी और उधमपुर नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के रेड अलर्ट के पेश नजर पहली से बारहवीं जमात के स्कूलों के लिए एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सभी महकमों को चौकस रहने की हिदायत दी है। राहत और बचाव टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। वजीर आला ने आवाम और यात्रियों से अपील की है कि वो महकमे मौसमियात और इंतजामिया की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी पर अमल करें। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस।
1: उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में मुतदिल से शदीद बारिश हो रही है, जिससे रियासत में मामूलत जिंदगी मुतासिर हुए हैं। तफसील हमारे नामानिगार से।
3: मुजफ्फरनगर जिले में शदीद बारिश के सबब एक पुरानी इमारत के मुनहदिम होने से चार बच्चों समेत पांच अफराद हलाक हो गए, जबकि पांच दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस दौरान संत कबीर जिले में एक प्राचीन मंदिर भी मुनहदिम हो गया है, लेकिन किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। शदीद बारिश ने रियासत के कई जिलों, जिनमें राजधानी लखनऊ शामिल है, मामूलात जिंदगी को मुतासिर किया है। मुतादिद इलाकों में सड़क पर पानी जमा होने और ट्रैफिक के आमोदरफ्त में खलल पड़ने की इत्तलात हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: अमेरिका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान पर ताजा फौजी हमले किए हैं और ये हमलों की लगातार नवी रात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि ईरान के खिलाफ ये ताजा हमले कल रात किए गए, जो ईरान की फौजी सलाहियतों को कमजोर करने के मकसद से जारी रहेंगे, जिन्हें ईरान आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों और शहरी मल्लाहों पर हमले करने के लिए इस्तेमाल करता रहा है, जिनमें अमरीकी फौजों ने ईरान के बहुत से फौजी असासों को निशाना बनाया है, जिनमें साहिली निगरानी और फजाई दिफाई ठिकाने, समुद्री तनसीबात और मिजाइल और ड्रोन के जखीरों की जगह भी शामिल हैं। अमरीकी फौज ने इस्लामी पासदारा ने इनकलाब की फौजों को भी निशाना बनाया है, जिन्होंने उर्दुन में 17 जुलाई को अमरीकी फौजियों पर हमले किए थे। ईरान में भारतीय सफारतखाने ने अदम इस्तेकाम और तनाजे की हालिया शिद्दत के पेश नजर भारतीय शहरियों के लिए एक ताजा हिदायत जारी की है। उसने किसी भी मकसद से ईरान का सफर करने वाले भारतीय शहरियों के लिए हिदायत जारी की है कि वो अपना सफर मुलतवी कर दें, जब तक के सलामती की सूरत हाल में बेहतरी न आ जाए। हिदायत में कहा गया है कि जो भारतीय शहरी ईरान में मौजूद हैं, वो आरजी तौर पर ईरान से निकलने पर गौर खोज करें और इसके लिए वो जो भी परवाजें दस्तियाब हैं उनका इस्तेमाल करें। सफारतखाने ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय शहरियों को यह हिदायत भी दी है कि वो अपनी जाती मालूमात सफारतखाने में जल्द अज जल्द दर्ज कराएं। उसने ये बात भी जोर देकर कही है कि सफारतखाने की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार नजर रखें, ताकि वो ताजा जानकारी और मजीद हिदायत से बाखबर रहें। किसी भी तरह की मदद के लिए सफारतखाने ने ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, +989128109105, +989128109109, +989128109102 और +989932179359। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में कल देर रात स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा आलमी कप 2026 का चैंपियन बन गया है। स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ जीत का वाहिद गोल खेल के 106वें मिनट में किया। ये गोल स्पेन के फेरन टॉरेस ने किया। इससे पहले दोनों टीमों की तरफ से 90 मिनट के खेल के दौरान सख्त जद्दोजहद के बावजूद कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी। स्पेन ने दूसरी बार मर्दों का फीफा आलमी कप जीता है। इससे पहले उसने 2010 में पहली मर्तबा आलमी कप जीता था। स्पेन के कप्तान को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है, जिन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड से नवाजा गया है, जबकि स्पेन के ही उनाई सिमोन को गोल्डन ग्लोव का अवार्ड दिया गया है और पाउ कुबारसी को नौजवान खिलाड़ी का अवार्ड अदा किया गया है। फ्रांस

0: खिलाड़ी किलियान मबाप्पे को फीफा आलमी कप 2026 का गोल्डन बूट अवार्ड नवाजा गया है। मर्दों की क्रिकेट में कल रात लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने तीसरे एक रोजा बैन अलावी मैच में भारत को 27 रन से हरा दिया। रोहित शर्मा की शानदार 138 रन, शुभमन गिल के 77 रन और विराट कोहली के 74 रन के बावजूद भारत की टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी, जिसे जीत के लिए 388 रन का निशाना मिला था। इस तरह इंग्लैंड ने यह सीरीज 2-1 से जीत ली है। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शायद होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप और इनकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने आज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसूनी इजलास की खबर को सफे अव्वल पर शाये करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को नुमाया किया है कि सभी पार्टियां इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी से जारी रहे ताकि बिलों पर मुकम्मल बहस हो सके।
0: और आखिर में खास खबर एक बार फिर, पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के कामकाज को खुश उसलूबी से जारी रखने के लिए तआवुन करें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाऊ में मालदोवा की अपनी हमनसब माइया सांदू से वक्त की सतह की बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश काबीना कमेटी ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है। कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में ताजा सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक हो गए, 8 अफराद अब भी लापता हैं। अमरीका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर 8:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में स्वर गंगा कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे मैत्रेय मजूमदार का गायन राग नट भैरव में। हारमोनियम पर है कौशिक मित्रा और तबले पर संगत की है सुमित राम धोकर ने। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में अभी आपने मैत्रेयी मजूमदार का गायन सुना राग नटभैरव में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 9:15 और 4 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आर गेस्ट।

अच्छा मैं आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद यानी 9:35 पर सुबह का ही प्रोग्राम में आप समाप्त फरमाएंगे शब्द। 10:15 पेश करेंगे प्रोग्राम आज सवेरे 9:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 10:00 सुनिएगा अखबार जरिए पर मैं अपनी प्रोग्राम शान फरोजा। 10:05 पर गैर फिल्मी गजलों के प्रोग्राम हुस्न गजल में आज आप समाप्त फरमाएंगे ताज अहमद और उमा गर्ग की गजलें। 10:30 पर हम पेश करेंगे गीता दत्त के यौम वफात के हवाले से खुसूसी फीचर वक्त ने किया क्या हसीन सितम, पहली डॉक्टर मोहम्मद अलीम की होगी। 11:00 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का, प्रोग्राम होगा मेरी पसंद। 11:30 हम पेश करेंगे रेडियो डॉक्टर। 12:00 खबर

चुकी जाएंगे और 12:10 से 12:45 तक फिल्मी दुकानों का प्रोग्राम होगा मिले सुर मेरा तुम्हारा। जवान 12:30 पर सुनिएगा प्रोग्राम तारीख साज। 12:45 पर प्रोग्राम होगा सुर्खियों में। 1 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 1:15 पर हमारी आज की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मैंने एमबी भी 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत प्रोग्राम सुबगाही। सुबगाही प्रोग्राम में सामीना समात फरमाइए। परमिंदर कौर चड्ढा से शब्द।

0: सुनगाई प्रोग्राम में सामने भी आप समाप्त फरमा रहे थे परमिंदर कौर चड्ढा से शब्द। इसके साथ ही आज का सुनगाई प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम में भी कदारी के तरकी हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का। तो जानते हैं 20 जुलाई के दिन क्या कुछ ऐसा महत्वपूर्ण हुआ जो इतिहास बन गया, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के दिन की विशेषता के बारे में।
2: यस मुकेश जी, टुडे ऑन इंटरनेशनल चेस डे वी सेलिब्रेट मोर देन जस्ट अ गेम, वी सेलिब्रेट अ टाइमलेस लैंग्वेज ऑफ

0: strategy, patience, and intellect that has connected humanity for centuries. Mm-hmm. Since the official founding of the International Chess Federation in 1924, this game of kings has transcended borders, cultures, and generations, proving that a board of 64 squares can hold infinite possibilities. Whether you are a grandmaster calculating moves deep into the endgame or a beginner learning the power of the first pawn push, chess teaches us that every decision carries weight and every setback is an opportunity to reposition for victory. Today, let's honor the discipline, the beauty of the gambit, and the endless pursuit of mastery. Pick up a piece, make your move, and keep the tradition alive, because in chess, as in life, the next move is always yours to define.
1: आज के दिन वर्ष 1969 में अपोलो 11 यान ने पहली बार इंसान को चंद्रमा पर पहुंचाया था, जब नील आर्मस्ट्रांग ने उस वीरान लेकिन जादुई सतह पर अपना पहला कदम रखा। उन्होंने केवल एक उस समय मिशन नहीं पूरा किया, बल्कि मानवता के लिए संभावनाओं के एक नए युग का द्वार खोल दिया था। ये मनुष्य के लिए एक छोटा सा कदम है, लेकिन पूरी मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। आज जब हम उस महान उपलब्धि को याद करते हैं, तो हम न केवल उस साहस को नमन करते हैं, बल्कि अंतरिक्ष की असीम गहराइयों में छिपे भविष्य के सपनों को भी सलाम करते हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें, तो अभी से एक दो दिन पहले ही भारत के पहले निजी तौर पर तैयार किए गए एरोस्पेस जो विक्रम 1 रॉकेट है, उसने भी पृथ्वी की पहली कक्षा में अपना पेलोड स्थापित करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और ख्याति दिलाई है।
0: That's amazing.
1: बिल्कुल।
0: In 1810, Colombia declared its independence from Spanish colonial rule. The day is celebrated as Colombia's Independence Day. In 1903, the Ford Motor Company delivered its first automobile, marking a milestone in the history of the automobile industry.
1: और 1924 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी आज ही की तारीख को की थी। ये संगठन भारत में दलित वर्गों के बीच शिक्षा का प्रसार करने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए समर्पित था। अगर बात करें 1969 की, तो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के अचानक निधन और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी के इस्तीफे के बाद एम हियादतुल्लाह ने भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर आज ही की तारीख को पदभार ग्रहण किया था। और 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था, जो इस युद्ध का एक बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हुआ था। और अब बात उन विशिष्ट व्यक्तियों की जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए, आज ही के दिन जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, या आज जिनका जन्मदिन है। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं बटुकेश्वर दत्त की। आज इस प्रसिद्ध क्रांतिकारी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले 8 अप्रैल 1929 को वे उस समय जाने गए जब वे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार हुए। उन्होंने आगरा में स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित करने में भी उल्लेखनीय कार्य किया था।
0: गुग्लियो मार्कोनी वाज एन इटालियन फिजिसिस्ट एंड इन्वेंटर ऑफ अ सक्सेसफुल वायरलेस टेलीग्राफ और रेडियो। इन 1909 ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स व्हिच ही शेयर्ड विद जर्मन फिजिसिस्ट फर्डिनेंड ब्रॉन। He later worked on the development of shortwave wireless connections, communications, which constitutes the basis of nearly all modern long-distance radio.
1: आज हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध पार्श्व गायिका गीता दत्त को। उन्होंने अपनी दिलकश आवाज से लगभग 3 दशकों तक करोड़ों श्रोताओं को मदहोश किया। कालजयी फिल्म प्यासा के गीतों को स्वर देने वाली पार्श्व गायिका गीता दत्त के पति थे लोकप्रिय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक गुरु दत्त। आइए सुनते हैं 1956 में आई फिल्म भाई भाई में गीता दत्त की आवाज में गाया गया ये खूबसूरत सा नगमा।

और श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के 50 और 60 के दशक के लोकप्रिय अभिनेता अभिनेताओं में से शुमार राजेंद्र कुमार की आज जयंती है। वे जुबली कुमार के नाम से प्रसिद्ध रहे। एक अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी दिलीप कुमार अभिनीत जोगन। इसमें उनका किरदार भले ही छोटा था, लेकिन उनकी सफलता का सफर यहीं से शुरू हुआ। आइए तो क्यों ना सुना जाए 1966 में आई उनकी फिल्म सूरत से ये खूबसूरत सा गीत।

घूम जुठी शहनाई में पहली बार वो एक अभिनेता के तौर पर दिखलाई दिए। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजेंद्र कुमार का अभिनय आज भी लोगों के जहन में है। उसके बाद उन्होंने धूल का फूल, मेरे महबूब, आई मिलन की बेला, संगम और आरजू जैसी कई फिल्मों में सराहनीय अभिनय किया। आइए सुनते हैं 1970 में आई फिल्म गीत से उन पर फिल्माया गया ये एक और सुंदर सा नगमा।

0: सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 9:50 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के कामकाज को खुश असलूबी से जारी रखने के लिए तआवुन करें। सभी जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मालदोवा की अपनी हमनसब माया सांधु से वफद की सतह की बातचीत करेंगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में ताजा सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने से 12 अफराद हलाक हो गए और 8 अफराद अब भी लापता हैं। अमरीका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। हमलों की ये नवी रात है जिसकी वजह से आबनाए हुरमुज से मुतालिक कशीदगी में मजीद शिद्दत आ गई है और स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को इजाफी वक्त में 1-0 से हराकर 2026 का फीफा आलमी कप जीत लिया है। खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। 25 दिन के इस इजलास में 19 नशिस्तें होंगी। मानसून इजलास के मौके पर हुकूमत ने कल पार्लियामेंट हाउस में एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। 40 सियासी पार्टियों के 50 से ज्यादा रहनुमाओं ने मीटिंग में शिरकत की। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मीटिंग के बाद नामानिगारों से खिताब करते हुए सभी सियासी पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो पार्लियामेंट के कामकाज खुश असलूबी से जारी रखने को यकीनी बनाएं और बुनियादी मामलों पर तानवी कामकाज करें। उम्मीद है कि इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल बहसों मुबाहिसे और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कल लोकसभा की मुशावरती कमेटी के कामकाज से मुतालिक एक मीटिंग की सदारत की थी। इसी दौरान सरकार और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाले अरकान ने इस इजलास के दौरान कानून साजी और दीगर मुजवजा कामकाज के बारे में तबादला ख्याल किया। दिल्ली पुलिस ने वजाहत की कि पार्लियामेंट के इजलास के पेश नजर जो आज से शुरू हो रहा है, नई दिल्ली जिले में किसी भी एहतजाजी मार्च या जुलूस की इजाजत न तो मांगी गई है और न ही दी गई है। सभी जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मालदोवा की अपनी हमनसब माया सांधु से मुलाकात के साथ वफद की सतह की बातचीत करेंगी। सभी मुर्मू मालदोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मालदोवा भारत पार्लियामानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से बातचीत करेंगी। इसके अलावा वो एक तजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगी। किसी भारतीय सदर का मालदोवा का ये पहला दौरा है। सदर जमहूरिया 3 मुल्कों मालदोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश काबीना ने जगदीशपुर में, जो भोपाल के नजदीक एक तारीखी कस्बा है, एक खसूसी मीटिंग के दौरान यक्सर सिविल कोर्ट यूसीसी बिल को मंजूरी दे दी है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे अख्तियार से बाहर रखा गया है। मध्य प्रदेश ने यक्सर सिविल कोड यूसीसी पर अमल दरामद के लिए यह एक बड़ा कदम उठाया है। कल भोपाल के जिले जगदीशपुर में काबीना की एक मीटिंग की गई जिसके सदारत वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने की। इस मीटिंग में यूसीसी बिल 2026 के मुसविदे को इत्तेफाक राय से मंजूरी दे दी गई। जम्मू कश्मीर के

राजौरी और पुंछ जिलों में कल बारिश की वजह से अचानक सैलाब और मिट्टी के तोड़े खिसकने से 11 अफराद हलाक और 8 लापता हो गए। राहत और बचाव टीमों ने सैकड़ों अफराद को बचाकर उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि राहत से मुतालिक कार्रवाइयां जारी हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस हादसे के बाद सूरत हाल का जायजा लिया और जम्मू कश्मीर में सरकार को यकीन दिलाया कि मरकज की तरफ से हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। राजौरी और पुंछ जिलों के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की रात आने वाले तबाहकुन सैलाब ने कीमती जानों के इतलाफ के साथ निजी और सरकारी इमलाक, सड़क और बुनियादी ढांचों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। पूरे जिले में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जबकि राजौरी जिले के तकरीबन निसफ इलाके में बिजली मुनक़ते हो गई है। जुनूब मगरबी मानसून हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज और कल के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने रियासत के बहुत से हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए इंतबाह जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कांगड़ा जिले के धर्मशाला में 82.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उत्तराखंड में कल सुबह से बारिश हो रही है, जिससे मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासत के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं और इंतजामिया अलर्ट के पेश नजर हर किस्म की परेशानी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक देहरादून, टहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, कौड़ी और उधमपुर नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वज़ीर-ए-आला ने आवाम और यात्रियों से अपील की है कि वो महकमा मौसमियात और इंतजामिया की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी पर अमल करें। उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में मुतदिल से शदीद बारिश हो रही है, जिससे रियासत में मामूलात जिंदगी मुतासिर हुई है। मुजफ्फरनगर जिले में शदीद बारिश के सबब एक पुरानी इमारत के मुनदिम होने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि 5 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल दाखिल कराया गया है। अमरीका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान पर ताजा फौजी हमले किए हैं और ये हमलों की लगातार नवी रात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि ईरान के खिलाफ ये ताजा हमले कल रात किए गए, जो ईरान की फौजी सलाहियतों को कमजोर करने के मकसद से जारी रहेंगे, जिन्हें ईरान आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों और शहरी मल्लाहों पर हमले करने के लिए इस्तेमाल करता रहा है, जिनमें अमरीकी फौजों ने ईरान के बहुत से फौजी असासों को निशाना बनाया है, जिनमें साहिली निगरानी और फजाई दिफाई ठिकाने, समुद्री तनसीबात और मिजाइल व ड्रोन के जखीरों की जगहें भी शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान में भारतीय सिफारतखाने ने अदम इस्तेहकाम और तनाजे की हालिया शिद्दत के पेश नजर भारतीय शहरियों के लिए एक ताजा हिदायत जारी की है। उसने किसी भी मकसद से ईरान का सफर करने वाले भारतीय शहरियों के लिए हिदायत जारी की है कि वो अपना सफर मुलतवी कर दें, जब तक के सलामती की सूरत हाल में बेहतरी न आ जाए। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में कल देर रात स्पेन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा आलमी कप 2026 का चैंपियन बन गया है। स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ जीत का वाइड गोल खेल के 106वें मिनट में किया। ये गोल स्पेन के फेरान टोरेस ने किया। इससे पहले दोनों टीमों की तरफ से 90 मिनट के खेल के दौरान सख्त जद्दोजहद के बावजूद कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी। स्पेन ने दूसरी मरतबा मर्दों का फीफा आलमी कप जीता है। इससे पहले उसने 2010 में पहली बार आलमी कप जीता था। स्पेन के कप्तान को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जिन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड से नवाजा गया, जबकि स्पेन के ही उनई सिमन को गोल्डन ग्लव का अवार्ड दिया गया है और पाउ कुबारसी को नौजवान खिलाड़ी का अवार्ड अदा किया गया। फ्रांस के खिलाड़ी को फीफा आलमी कप 2026 का गोल्डन बूट अवार्ड से नवाजा गया। मर्दों की क्रिकेट में कल रात लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने तीसरे एक रोजा बैन अल अकवामी मैच में भारत को 27 रन से हरा दिया। रोहित

0: शर्मा के शानदार 148 रन, शुभमन गिल के 77 रन और विराट कोहली के 74 रन के बावजूद भारत की टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी, जिसे जीत के लिए 388 रन का निशाना मिला था। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के कामकाज को खुश असलूबी से जारी रखने के लिए ताउन करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनो में मॉल्डोवा की अपनी हमनसब माया सांधू से वक्त की सतह की बातचीत करेंगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में ताजा सैलाब और जमीनी तोड़े खिसकने से 11 अफराद हलाक हो गए, 8 अफराद अब भी लापता बताए जाते हैं। अमरीका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को इजाफी वक्त में 1-0 से हराकर 2026 का फीफा आलम कप जीत लिया है। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: रेडियो में भी 1000 71 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। अखबार जरिए पर अपने प्रोग्राम समाप्त फरमाइए। शम्मे फरोजा। मसावात एक ऐसा नस्बुल ऐन है जिसके हुसूल के पीछे ये ख्याल कार फरमा है कि तमाम नौ इंसानी मसावी अहमियत की हामिल है और रंग, नस्ल, सिंफ, कौमियत और अकायद वगैरह की बुनियाद पर की जाने वाली हर तफरीक से बालातर है और इंसान होने की हैसियत से हर शख्स तरक्की करने और अपनी फितरी सलाहियतों को जिला बख्शने और उनसे मुस्तफीद होने का पूरा हक रखता है। साथ ही हर इंसान को अपने जानो माल और वकार के तहफ्फुज़ और एहतराम का भी यकसा हक हासिल है। मुश्तरक इंसानियत का तसव्वुर सदियों से इंसानी मुआशरे में मौजूद है क्योंकि इसकी बुनियाद वो तमाम अकायद और नजरियात हैं जिनकी रूह से तमाम इंसान खुदा की मखलूक हैं। मुश्तरक इंसानियत के इसी तसव्वुर ने आलम इंसानी हकूक और इंसानियत के खिलाफ जराइम जैसे तसव्वुरात को जन्म दिया है। एक नाकाबिले तर्दीद हकीकत है कि खुदा ने हर इंसान को मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ पैदा किया है। दुनिया का हर इंसान अपनी फितरी सलाहियतों, काबिलियतों, अहलियतों और जहानत वगैरह के लिहाज से दूसरों से मुख्तलिफ होता है। इस एतबार से कोई दो इंसान भी एक दूसरे के ऐन मसावी नहीं होते। सलाहियतों के इस इख्तलाफ को फितरी अदम मसावात कहते हैं और उन फितरी तफरीकात को बदला नहीं जा सकता। ताहम मसावात के नस्बुलैन के हुसूल के लिए किया जा सकता है कि इन तमाम मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल अफराद को अपनी फितरी सलाहियतों को जिला बख्शने और उनको फरोग देने के मसावी मौके फराहम किए जाए, वरना इसका नतीजा समाजी अदम मसावात की सूरत में नमूदार होगा जिससे एक मखसूस गिरोह या तबके के लोगों के इस्तेहसाल का रास्ता खुलेगा। समाज में मौजूद मुख्तलिफ अकसाम की अदम मसावात को तीन दर्जों में बांटा जा सकता है, यानी सियासी, समाजी और माशी अदम मसावात। सियासी मसावात का मतलब है कि मुल्क के हर शहरी को मुल्क के सियासी निजाम में हिस्सा लेने का मसावी हक हासिल हो। हर शहरी को मुल्क की हुकूमत के इंतखाब में आजादी के साथ वोट देने या इलेक्शन लड़ने का मसावी हक मिले। इंतजामिया और खिदमात के जुमरे में भी बिला तफरीक किसी इम्तियाज के अपनी अहलियत के मुताबिक मुलाजमत हासिल करने का हक भी सभी शहरी को हासिल हो। साथ ही किसी जुर्म का इर्तकाब करने पर अदालत के जरिए बिना किसी तफरीक के हर मुजरिम को जुर्म की नौयत और संगीनी के मुताबिक मसावी सजा का भी इंतजाम हो। समाजी अदम मसावात वो हैं जो समाज की पैदा करदा हैं, जो रंग, नस्ल, पेशे, सिंफ या जात की बुनियाद पर वजूद में आती हैं। मुआशी मसावात का यह मतलब नहीं कि तमाम इंसानों में दौलत की मसावी तकसीम को यकीनी बनाने की कोशिश की जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हर शहरी को पैदावारी वसाइल तक रसाई और उनसे इस्तेफादे का मसावी मौका फराहम किया जाए। मुख्तलिफ अफराद और गिरोहों के दरमियान आमदनी और इससे पैदा होने वाले वसाइल के एतबार से गहरे फर्क के नतीजे में माशी नाबराबरी पैदा होती है। आज हम अपने गिर्दोपेश पर नजर डालेंगे तो जगह जगह माशी अदम मसावात की मिसालें नजर आएंगी। फलक बोस, आलिशान इमारतों के साया, झुग्गी झोपड़ियां और सलम बस्तियां और रातों को कड़ाके की सर्दी में फुटपाथ पर रातें गुजारते हुए अफराद, एयर कंडीशन्ड स्कूलों के साथ साथ बैतुलखला और पीने के पानी की बुनियादी सहूलियात से महरूम स्कूल, शादी ब्याह की आलिशान दावतें और कूड़े के ढेर में खाना तलाश करते हुए मफलूकुल हाल अफराद हर बड़े शहर में आम मुशाहिदे की बात है।

आप समा फरमा रहे थे मजाज लखनवी कलाम ताज अहमद की आवाज में। आज के हुसैन गजल प्रोग्राम की आखिरी पेशकश उमा गर्ग की आवाज में समा फरमाइए जिगर मुरादाबादी की ये गजल।

जिंदगी का आगाज सन 1946 में बनने वाली एक देवमालाई फिल्म भटका प्रहलाद से किया। इस फिल्म में उन्हें पहली बार अपनी मखसूस आवाज में एक गाना रिकॉर्ड करने का मौका मिला, जिसे लोगों ने पसंद किया। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे के हनुमान प्रसाद। जिस वक्त गीता दत्त ने यह गाना गाया, उस वक्त उनकी उम्र थी महज 16 साल। गीता दत्त को इस गाने की सिर्फ दो लाइनें ही गाने का मौका मिला, मगर उन्होंने रिकॉर्डिंग रूम में अपनी आवाज का ऐसा जादू जगाया कि लोग दंग

0: बचपन का नाम गीता घोष राय चौधरी था। उन्होंने एक बंगाली खानदान में आंखें खोली और फिल्म और मौसीकी का शौक उन्हें विरासत में मिला। उनके वालिद देवेंद्रनाथ घोष राय चौधरी एक बड़े और रसूखदार जमींदार थे। उनके वालिदा का नाम अमिया देवी था। गीता दत्त 10 भाई बहनों में एक थी, मगर सबसे होनहार और होशियार।
1: खानदान गैर मुनकसिम बंगाल के जिला फरीदपुर से ताल्लुक रखता था, मगर 40 की दहाई में यह खानदान मशरकी बंगाल से हिजरत करके मगरबी बंगाल आ गया और कलकत्ते को अपने नए मस्कन के तौर पर मुंतखब किया।
0: लेकिन गीता दत्त को ज्यादा दिनों तक इस खूबसूरत शहर में रहने का मौका नहीं मिला और वो अपने वालिदैन के साथ मुंबई आ गयी, जहाँ एक बिल्कुल अलग और अनोखी दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। और वो दुनिया थी हर तरह की चमक दमक से लबरेज फिल्मी दुनिया।
1: गीता दत्त दादर के एक अपार्टमेंट में अपने वालिदैन के साथ रहने लगी। उस वक्त उनकी उम्र महज 12 साल थी और उन्हें तालीम के हुसूल के लिए वहाँ के मशहूर स्कूल बंगाली हाई स्कूल में दाखिल करा दिया गया।
0: लेकिन उनका दिलो दिमाग आला तालीम की तरफ मुतवज्जे होने के बजाय फनकारी की तरफ ज्यादा मायल था, लिहाजा उनके वालिद ने उन्हें अपने जमाने के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर के हनुमान प्रसाद की सरपरस्ती में दे दिया, जिन्होंने पहली नजर में ही इस नन्हे फनकारा के फन को कुछ इस अंदाज से परख लिया कि दुनिया को आगे चलकर उनकी परख की दाद देनी पड़ी। उन्होंने इनकी मखसूस तरीके से मौसीकी के मैदान में तरबियत शुरू कर दी। जिस साल मुल्क आजाद हुआ यानी सन 1947 में, उन्हें अपने करियर का पहला बड़ा ब्रेक मिला फिल्म दो भाई से, जिसमें उनका गाया हुआ ये नगमा बेहद पसंद किया गया।

मदद की आवाज में गजब का सूज और डर था, मगर साथ ही उनके अंदर ये सलाहियत भी थी कि वो मुख्तलिफ मौजूआत के एतबार से अपने गाने का अंदाज बदल लेती थी, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल होता था कि क्या ये वही फनकारा है जिसके गाने दर्द और एहसास की शिद्दत से लबरेज होते हैं।

0: गीता दत्त और गुरु दत्त की शादीशुदा जिंदगी बेहद खुशगवार साबित हुई और उनके तीन बच्चे हुए जिनका नाम था तरुण, अरुण और नैना। बहुत ही मसरूफ रहने वाली गीता दत्त के लिए एक प्रोफेशनल फनकारा और एक मोहब्बत करने वाली माँ के साथ तालमेल बिठाकर जिंदगी गुजारना कोई आसान काम न था। गीता दत्त के पास न सिर्फ हिंदी फिल्मों में गाना गाने और अदाकारी के ऑफर्स थे बल्कि उनकी अपनी मादरी जबान बंगाली में बनने वाली फिल्मों के लिए भी उनके पास गाना गाने के ऑफर्स कम न थे। गीता दत्त ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हिंदी फिल्मों की इतनी बड़ी कामयाब गुलोकारा और अदाकारा होने के बावजूद वो बंगाली फिल्मों के लिए गाने क्यों गाएं, जिसकी पहुंच जाहिरी तौर पर हिंदी फिल्मों के मुकाबले उस वक्त बहुत महदूद थी।
1: सन 1950 की दहाई में सुचित्रा सेन बंगाली फिल्मों की सबसे चहेती अदाकारा थी, जिनके लिए बंगाली गुलोकारा संध्या मुखर्जी की आवाज लाजिमो मलजूम समझी जाती थी। मगर जब हेमंत कुमार ने गीता दत्त की आवाज को उनके लिए पहली बार पेश किया तो बिल्कुल एक नया जोश वलवला शायकीन में पैदा हो गया जो काफी दिनों तक बाकी रहा।

हंस के फूल गीता दत्त की सबसे बड़ी और अहम फिल्म एक गुलकारा के तौर पर मानी जाती है। इसमें उन्होंने अपने दिल के छालों और दर्द को कुछ इस अंदाज से अपने मखसूस सोच भरे आवाज में पेश किया कि जो लोगों के दिलों को दर्द और आह से भर देती है। इस फिल्म को उनके शौहर गुरुदत्त ने बड़ी लगन जतन और हुनरमंदी के साथ पर्दे सीनी पर पेश किया था। ऐसा कहा जाता है कि ये एक तरह की सामान्य ही फिल्म थी जिसमें गुरुदत्त ने अपनी जिंदगी की कहानी को बड़े ड्रामाई

दत्त को बचपन से ही गाने का बेहद शौक था। जब उनकी उम्र महज 5 साल के करीब थी तभी उन्होंने गुनगुनाना और गाना शुरू कर दिया। गीता दत्त के लिए उनका गांव एदलपुर जो कि जिला फरीदपुर मशरकी बंगाल में वाकई था एक तरह से कुदरती माहौल और फजा मुहैया कराता था। उनका घर एक नदी के करीब था और अपने फुर्सत के लम्हात उन्हें उसके किनारे पर बैठकर वक्त गुजारना बेहद पसंद था। नदी में आने जाने वाली कश्तियां और छोटी छोटी मछली मारने वाली नाव उन्हें अपनी तरफ बेहद रागिब करती थी क्योंकि इसमें सवार होने वाले मल्लाह और मुसाफिर कुछ इस अंदाज से अपने काम और सफर के दौरान बंगाली जबान में नगमे छेड़ते थे कि नन्ही गीता दत्त उसके शहर में खोए बगैर नहीं रह पाती। उनकी जबान पर अपने आप ही वो गाने जारी हो जाते और फिर घंटों तन्हाई में उसे गाया करती। गीता दत्त की दीवानगी कुछ ऐसी बढ़ी कि न खाने पीने की सुध, न सोने जागने की फिक्र, न पढ़ाई पर तवज्जो, जो कि माँ के लिए एक नई परेशानी का सबब बनने लगी क्योंकि उन्हें उस वक्त ये नहीं मालूम था कि उनकी नन्ही परी एक दिन हिंदुस्तानी फिल्मों की अजीम गुलकारा बनने वाली है।

गीता दत्त के इस हुनर से उनका पूरा गांव वाकिफ हो गया। क्या छोटे क्या बड़े सभी उनके फन के कायल थे। यहाँ तक कि उनसे सकाफती तकरीबात के मौके पर गाने की फरमाइशें की जाने लगी। इसे पूरा करना उनके लिए आसान न था।

किस्मत इंसान को कुछ अपने मखसूस अंदाज से लेकर चलती है। गीता दत्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके वालिदैन हालांकि उनके फन की कदर करते थे और उसे न सिर्फ सराहते थे बल्कि इस मैदान में उनकी तालीम और तरबियत में भी कोई कसर न छोड़ी थी, लेकिन जब हिंदी फिल्मों में बाजाबता तौर पर गाने का ऑफर आया तो उनके लिए ये फैसला करना एक मुश्किल अम्र साबित हुआ कि वो अपनी कम सिम बच्ची को ऐसा करने की इजाज़त दें या ना दें, क्योंकि उनका ताल्लुक एक बावकार और इज्जतदार घराने से था और उन दिनों हिंदी फिल्मों में काम करना शर्फा के यहाँ ज्यादा तहसीन और तारीफ की नजरों से नहीं देखा जाता था।

आठवें हनुमान प्रसाद जो उन दिनों एक मशहूर मौसीकार थे, कहा जाता है कि एक दिन गीता दत्त के घर के सामने से गुजर रहे थे। घर के अंदर से उन्हें एक लड़की के गाने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज ने उन्हें इतना मुतासिर किया कि वो बिना झिझक घर के अंदर दाखिल हो गए और दरियाफ्त किया कि ये किसकी आवाज है। तो उनके वालिद ने कहा कि ये मेरी नौ उम्र बेटी गीता दत्त है जिसे

0: गाने का बेहद शौक है। बस क्या था कि हनुमान प्रसाद उनसे इशरार करने लगे कि एक फिल्म में जिसकी वो मौसीकी तरतीब दे रहे थे उसे गाना गाने का मौका दिया जाए, जिसे बड़ी मुश्किल से उनके वालिदैन ने यह सोचकर कबूल किया कि उनको वही करना चाहिए जहाँ उनकी बेटी का दिल बसता है।
1: हिंदुस्तानी फिल्म मौसीकारों की एक अहम पसंद बन गई। उनसे छोटे बड़े सारे मौसीकारों ने गाना गवाया, जो उनकी सलाहियत को इस मैदान में साबित करने के लिए काफी था। एस डी बर्मन के साथ जिन अजीम मौसीकारों के साथ उन्होंने काम किया, इसमें वसंत देसाई, गुलाम हैदर, अनिल बिस्वास वगैरह के नाम काबिले जिक्र हैं।
0: बात का शिद्दत से एहसास होने लगा था कि वहीदा रहमान से उनकी कुर्बत उनकी खानगी जिंदगी पर बहुत गहराई के साथ असरअंदाज हो रही है, मगर उनके लिए घर और इश्क में तालमेल बिठाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। और गीता दत्त के लिए भी इस बात को भूलना मुश्किल था कि उनका शौहर उनके होते हुए भी किसी और के साथ मोहब्बत करे, लिहाजा तलखियां और दूरियां कुछ इस कदर बढ़ी कि दोनों के लिए बहुत मोहलिक साबित हुई।

0: कहा जाता है कि हर इश्क का एक अंजाम होता है, चाहे वो खुशियों से भरा हो या दुख भरा। गीता दत्त और गुरुदत्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन गीता दत्त को ये तकलीफ दी खबर मिली कि उनके शौहर इस दुनिया में नहीं रहे। गुरुदत्त ने उस रात जब उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा था, कुछ इस कदर परेशान थे कि उन्होंने न सिर्फ खूब शराब नोशी की बल्कि बहुत सारी नींद आवर दवाइयाँ भी खा ली, जो इस कदर मोहलक साबित हुई कि उनकी जान ही ले बैठी।
1: गीतादत्त के लिए अपने शौहर की जुदाई और मौत का गम बर्दाश्त करना मुश्किल था। इसका असर उनकी सेहत और काम पर भी पड़ने लगा। इससे न सिर्फ उनका अपनी जिंदगी से जी उचाट हो गया बल्कि काम से भी उनकी तवज्जो हटने लगी, जिससे न सिर्फ आगे चलकर उन्हें माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ा बल्कि साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री के बेहद मुकाबले भरे माहौल में उनकी हैसियत भी

बिलाखिर 20 जुलाई सन 1972 को जिगर की बीमारी से उनका इंतकाल हो गया। 50-60 की दहाई में हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली ये मकबूल अदाकारा और गुलुकारा आज भी हमारे दरमियान कुछ इस तरह अपने नगमों के साथ मौजूद हैं, जैसे कभी वो इस दुनिया से रुखसत ही ना हुई हों।

0: की जाए, एक मारूफ अदाकार जिन्हें आप तमाम जुगी कुमार के नाम से जानते हैं, यानी राजेंद्र कुमार का यहां पैदाइश है। राजेंद्र कुमार 20 जुलाई 1927 को पैदा हुए। उनके वालिद मराठी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे, यानी मराठी का कॉन्ट्रैक्ट था उनके पास और वो मुख्तलिफ शहरों में रहा करते थे। जैसे आजादी से पहले कराची में रहे, सिंध में रहे, उसके बाद फिर वो बम्बई आ गए। बम्बई आने के बाद उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और राजेंद्र कुमार ने अपनी तालीम का आगाज किया। राजेंद्र कुमार को अदाकारी का शौक बचपन से ही था, लेकिन उन्होंने सबसे पहला ब्रेक फिल्म जोगन में दिलीप कुमार के साथ एक छोटे से रोल के तौर पर मिला, लेकिन उस छोटे से रोल ने उनकी जिंदगी की राहें हमवार कर दी और उन्होंने अदाकारी के हुनर सीखे और फिर धीरे धीरे इसी रमेश पर वो चल पड़े। उनकी अदाकारी से सजी फिल्मों की बात की जाए तो बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो आपको जबान जद खास आम होंगी, जिनमें सूरज, आप आए बाहर आई, इंडिया, एक झलक, दुनिया रंग रंगीली, दीवार भाभी, घर संसार, खजांची, तलाक, चिराग कहां, रोशनी कहां, धूल का फूल, दो बहनें और इस तरह की बहुत सी फिल्में हैं जिनमें राजेंद्र कुमार ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और उन फिल्मों को अमर कर दिया। आज की मेरी पसंद प्रोग्राम की नामे हमने उन्हीं की फिल्मों से लिए हैं। प्रोग्राम की पहली पेशकश झुका आसमान फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: कौन है जो

मंजिलों से बढ़ा जा रहा।

महेंद्र कुमार ने यूं तो बहुत सी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी अदाकारी से सजी फिल्में जैसे संगम एक फिल्म थी जिसके लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। उस फिल्म में भी महेंद्र कुमार ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और फिल्म को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।

एक फिल्म और थी जिसमें राजेंद्र कुमार ने डबल रोल किया था। जी हाँ, सही पहचाना आपने, वो फिल्म थी गोरा और काला। इसमें करण सिंह और काली सिंह के नाम से आपने दो अदाकार किरदारों को आपने दिया था, यानी दो किरदार अदा किए थे और दोनों को यादगार बना दिया था। उस फिल्म के नगमे आज भी हमारे दिलों को ताजगी बख्शते हैं।

सारी सुरंग के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे राजेंद्र कुमार की अदाकारी से सजी फिल्मों के कुछ नगमे, उनके

0: پیدائش کے موقع پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس پیش خدمت ہے ریڈیو ڈاکٹر.
1: آکاشوانی پرستت کرتا ہے وشیش فون-ان کاریکرم ریڈیو ڈاکٹر.
2: नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है. आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा. आज का हमारा टॉपिक है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है. और इस खास विषय पर आज हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता, एलर्जी स्पेशलिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में. डॉक्टर साहब, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे एलर्जी होती है, मुझे एलर्जी है, और आज ये इतनी आम क्यों हो गई है, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही है.
3: धन्यवाद पूजा जी. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एलर्जी क्या चीज है ये हमें समझना है. जब भी कभी कोई भी चीज के संपर्क में हमारा शरीर आता है, चाहे वो कोई कीटाणु है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, या बाहरी कोई कण है, तो ऐसे शरीर में, ऐसे स्वरूप में हमारे शरीर से कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं. ये रिएक्शंस अक्सर हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारे को बचाता है वो करता है. अगर ये इम्यून सिस्टम बाहरी चीज को पसंद नहीं करता, उसको समझ नहीं आता, तो वो उसके खिलाफ रिएक्शन करता है. अगर वो इन्फेक्शन है तो उसके खिलाफ इन्फेक्शन का रिएक्शन करता है. अगर वो साधारण कण है, जैसे धूल मिट्टी के कण हो गए, खाने पीने की चीजें हो गई, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये शरीर एनर्जी के कुछ लक्षण प्रोड्यूस करता है. तो एक तरीके से देखा जाए तो एनर्जी जो है वो साधारण चीजें, जिन चीजों को नॉर्मल व्यक्ति को रिएक्शन नहीं करना चाहिए, उसको भी इम्यून सिस्टम गलत समझ के उसके खिलाफ रिएक्शन करता है, अधिक प्रतिक्रिया करता है, और जिसकी वजह से एलर्जी होती है.
2: जी डॉक्टर साहब, अगर हम आपसे जानना चाहें कि एलर्जी के कारण और प्रकार क्या है, और कोई कब और कैसे उसको पता चले कि वो एलर्जी का शिकार हो गया है.
3: जी जी, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि एलर्जी जो है वो एक कई सारे लक्षणों के साथ में प्रेजेंट कर सकती है. जैसे कि अगर हम बात करें तो आंखों की एलर्जी के अंदर, जिसके अंदर आंख के अंदर खुजली होना, लालीपन होना, पानी आना, नाक की एलर्जी जिसमें आपने अक्सर कहते सुना होगा लोगों को कि छींके आते हैं, ज्यादातर मॉर्निंग के अंदर आती हैं, उसके बाद में फिर नाक बहना, नाक बंद होना, कई बार कुछ लोग मुंह खोल के सोते हैं, खराटा लेते हैं, तो ये सभी चीजें एलर्जी की संभावनाएं हैं. इससे कई बार नींद भी प्रभावित होती है, रात को नींद नहीं आ पाती है, दिन के अंदर कई बार स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस के अंदर नींद जो है वो आती है, तो ये सभी एलर्जी के लक्षणों की वजह से उनके प्रभाव है. फिर सांस फूलना, जिसके अंदर काफी लोग इनहेलर, नेबुलाइजर की दवाइयां यूज करना, आपने अक्सर देखा होगा दिवाली के समय पे पॉल्यूशन एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है. और दिल्ली के अंदर तो सबसे ज्यादा कहा जाता है कि पॉल्यूशन, मतलब पूरी दुनिया के अंदर सबसे अधिक पॉल्यूशन काउंट किया जाता है दिल्ली के अंदर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो एलर्जी के लक्षणों को बढ़ा देता है. इसी के अलावा खाने पीने की चीजें, बच्चों में कुछ अलग कारण होते हैं खाने पीने की चीजों के जो एलर्जी के रूप में प्रेजेंट कर सकती है. कभी कभी पेट की समस्याएं, कभी कभी चमड़ी की समस्याएं, जैसे उभरे हुए छत के आ जाना, फफोले से, या कभी कभी एक्जिमा की तकलीफें हो जाना, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये एलर्जी
2: आती है. डॉक्टर गुप्ता, कई लोग किसी खास तरह की सुगंध या किसी चीज के संपर्क में आने से ना छींकना शुरू कर देते हैं, क्या एलर्जी सिर्फ छींक आने या नाक बहने तक सीमित है, या ये शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है?
3: सो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका. इसमें एक्चुअली दो प्रश्न छिपे हुए हैं. पहला प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ ये नाक को प्रभावित करती है? तो हम कहते हैं कि एलर्जी की एक बीमारी जो है पूरे शरीर को, और सिर्फ पूरे शरीर को नहीं, पूरे परिवार को प्रभावित करती है. कैसे? कि जो लक्षण है वो लक्षण जो है एलर्जी के किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं. वो नाक में भी आ सकते हैं, आंखों में भी आ सकते हैं, कई बार कान में बार बार दर्द होना, कान बहना, वो भी एलर्जी की वजह से हो सकता है. फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चों को कई बार कहा जाता है कि टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, तो वो भी एलर्जी की वजह से हो सकता है. बच्चों को नेबुलाइजर, इन्हेलर की जरूरत पड़ना, छाती से सीटी जैसी आवाजें आना, ये सब भी छाती एलर्जी की वजह से हो सकता है. शरीर पे दाने चकते होना, खुजली होना, और कभी कभी एलर्जी जानलेवा भी साबित हो सकती है. और इसी के साथ जैसे मैंने आपको कहा कि आपके प्रश्न के अंदर दूसरा प्रश्न जो है वो ये कि ये जो स्मेल है, ये स्मेल जो है इससे जैसे परफ्यूम हो गया, यही चीजें हो गई जो स्मेल की चीजें, स्ट्रॉन्ग स्मेल की चीजें हैं, अक्सर ये एलर्जी करती नहीं है, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी है उन लोगों की समस्याओं को बढ़ा देती है. तो ये ट्रिगर्स है, बट ये खुद अपने आप में एलर्जी नहीं करती.
2: तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को किसी तरह की स्मेल से एलर्जी है तो उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है?
3: बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब भी कभी कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, डेली बेसिस पे छींकें आ रही है, आपको बार बार दवा लेने की जरूरत पड़ रही है, आपका काम प्रभावित हो रहा है, नींद प्रभावित हो रही है, आपको उसके लिए चिंता करनी पड़ रही है। इसका मतलब ये सही समय है कि जिसके अंदर एक एनर्जी के एक्सपर्ट को आपको जरूर मिलना चाहिए और जरूर दिखाना चाहिए।
2: डॉक्टर सर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, ले लेते हैं इनको कॉल। हेलो।
4: हेलो
2: जी।
4: हाँ, पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को नमस्कार।
2: नमस्कार,
4: मेरा नाम राजेंद्र है और मैं कामपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
2: जी जी।
4: तो मेरी उम्र 48 वर्ष है और व्हाइट मेरी स्किन से कॉलर होता है, ऐसे मेरी स्किन है।
2: जी जी।
4: तो मेरा सवाल है कि मुझे ना स्वर्ण एलर्जी है, अब जो भी खुशबू या मैक से मुताबिक चीजें हैं उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो बदबू या स्मेल के मुताबिक चीजें हैं उससे मुझे मतलब एक दिमाग में भी वो प्रॉब्लम पैदा आती है और पेट में भी, सांस लेने में जो है वो दम सा घुटता है
2: जी।
4: और कुछ हद तक मुझे स्किन एलर्जी भी है, तो इसके लिए मैं घरेलू स्तर पर मैं क्या करूँ, या अगर आपके पास आते हैं तो वहाँ मतलब मेडिसिन से इलाज हो जाएगा कि?
2: पहला
4: सवाल मेरा ये है। मेरा सवाल कि मेरी माता जी को वो स्किन से मुताबिक एलर्जी है, उनकी उम्र 73 वर्ष है, तो वो क्या करें घरेलू स्तर पर, और आपके पास आते हैं आप क्या करें? तीसरा, मेरी सिस्टर है उनकी उम्र 47 साल है और उनको जो है नाक से मुताबिक एलर्जी है, तो ये तीन सवाल है, इनका जवाब दें बड़ी मेहरबानी।
3: धन्यवाद आपके प्रश्न का। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपके तीनों प्रश्न एक दूसरे के साथ संबंधित ही हैं, और जो मैं समझ पा रहा हूं कि तीनों जो सदस्य घर के हैं जो ब्लड रिलेटेड हैं, तो ये ब्लड रिलेटेड तीनों सदस्यों को एलर्जी की समस्या है। और जो सांस की नली से संबंधित, तो सांस की नली हमारी नाक से शुरू होती है और फेफड़ों तक जाती है, तो जिसको हम रेस्पिरेटरी एलर्जी कहते हैं। और आपको अगर देखा जाए तो किसी एक सदस्य को नाक के लक्षण ज्यादा है, किसी दूसरे सदस्य को शायद सांस के लक्षण ज्यादा है, पर ये एक कॉमन एलर्जी ही है। अब ये हमें समझना है कि दो तरीके के कण जो है वो मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। एक तरीके का कण है जिससे वाकई में एलर्जी होती है, जैसे फूलों के परागकण हुए, या जैसे मौसम बदलाव के साथ में अलग अलग तरीके के परागकण आते हैं, कभी कभी कुछ तरीके के डस्ट माइट, कॉकरोच, पेट डंडस, घर के अंदर पालतू जानवर, इनके जो डंडस होते हैं, उन सभी चीजों से जो एलर्जी हो सकती है वो ट्रू एलर्जी है। लेकिन जिस व्यक्ति को एलर्जी की शिकायत है, ऐसी स्थिति में उनकी जो नाक की त्वचा है अंदर से, या सांस लेने की जो त्वचा है अंदर से, वो अधिक सेंसिटिव हो जाती है, अधिक संवेदनशील हो जाती है। ऐसी स्थिति में बाकी चीजों को भी रिएक्ट करती है, जैसे कोई स्मेल आ गई तो उसको भी रिएक्ट करती है, लेकिन एक्चुअल में वाकई उसे एलर्जी नहीं होती, पर क्योंकि त्वचा पहले से ही संवेदनशील है जिसकी वजह से वो रिएक्शन करती है और आपको लक्षण आते हैं। रही बात बचाव की, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है, एक विशेषज्ञ से मिलकर उनकी सलाह के साथ में ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके और उनको दूर करने की कोशिश करना है कि किस तरीके से उसका बचाव किया जा सके। और कुछ ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जिन ट्रिगर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक दवाइयां जिनको भी दिया जा सकता है और उसे बेहतर कर सकते हैं। साथ ही सांस की नली में और नाक के अंदर जो संवेदनशीलता है उसको थोड़ा कम करने के लिए कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिससे बार बार वो रिएक्शंस ना हो। ओवरऑल जो आपको चीजें तकलीफ करती हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करती हैं, उसको बेहतर किया जा सकता है।
2: जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे स्मेल से होने वाली एलर्जी की, तो बहुत से लोग एलर्जी और सामान्य सर्दी जुकाम में अंतर कभी नहीं कर पाते। आम व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि उसे एलर्जी है या सिर्फ वायरल संक्रमण?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर देखें तो जैसे आपने नाम लिया वायरल संक्रमण, वायरल संक्रमण जो है वो एक तरीके का इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें या वायरस जो है वो ज्यादातर बुखार के साथ आपको मिलेगा। एक बार जब भी कभी आएगा तो बुखार आएगा, बुखार के साथ में 5 से 7 दिन की वो प्रतिक्रिया रहेगी जिसके अंदर शुरू के 3-4 दिन के लिए बुखार रहेगा, नाक बहेगी और अक्सर जो है वो छींके मतलब लगातार आना, लगातार नाक से पानी बहना, और ये चीजें अचानक शुरू हो जाएंगी और उसके बाद वो दवाओं को 1 दिन 2 दिन के अंदर 3 दिन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगी। एक और बड़ा अच्छा मिलेगा आपको वायरल के अंदर कि एक से अधिक लोगों को एक ही समय के आसपास में वायरल घर के अंदर मिलेगा, तो आप हमेशा पूछ सकते हैं घर के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को भी सर्दी जुकाम चल रहा है क्या, तो उसकी वजह से शायद ये वायरल ज्यादा है। लेकिन अगर ये सिंपल एलर्जी है तो उसमें बुखार नहीं आएगा, बदन दर्द नहीं होगा, शरीर में थकावट नहीं होगी, लेकिन सुबह उठते के साथ ही अर्ली मॉर्निंग छींके आएंगी, सर्द गर्म के समय के ऊपर भी छींके वगैरह ज्यादा परेशान करेंगी, नाक ब्लॉक करेगी, तो इसका मतलब हम एलर्जी की वजह से ज्यादा परेशान हैं।
2: डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ सबसे अधिक एलर्जी किन वजहों से होती है? क्या धूल प्रदूषण, परागकण और कुछ खाद्य पदार्थ इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं?
3: जी, तो हमें ये समझना है कि एलर्जी को अगर मोटे तौर पर माने तो 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जो किसी खाने पीने की वजह से होती है, एक है जो सांस लेने की वजह से होती है। अगर खाने पीने के अंदर बात करें तो सबसे अधिक जो मुख्य कारण है वो जैसे छोटे बच्चों के अंदर स्पेशली दूध के बाद में जो अगला कारण है वो अंडा, फिर मूंगफली, कभी कभी किसी कुछ लोगों को गेहूं की एलर्जी भी होती है, और फिर उसके बाद में जो लोग नॉन वेजिटेरियन चीजें खाते हैं, सी फूड खाते हैं, तो उनसे भी कभी कभी एलर्जी हो सकती है। तो ये कॉमन कारण है खाने पीने की एलर्जी के। लेकिन हमने देखा कि भारतवर्ष के अंदर कुछ नए तरीके के कारण जो शायद विदेशों में नहीं मिलते, जैसे ब्रिंजल, बैंगन की एलर्जी होना, भिंडी की एलर्जी होना, तो ये भी हमारे पास कुछ केसेस हैं जो कि पाए जाते हैं।

0: जो लोग साफ स्वच्छ वातावरण में ज्यादा रहते हैं, साबुन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर कहीं अधिक पाई जाएगी। जबकि उसी के मुकाबले अगर आप देखेंगे गांव के माहौल के अंदर, जहां पे के लोग मिट्टी के साथ में पल बढ़ रहे हैं, वहां पे एलर्जी की समस्या कम होती है। जैसे जैसे हमारा वेस्टर्नाइजेशन, हम एक नवीनीकरण की तरफ बढ़ते जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते जाते हैं, नेचुरल चीजों से दूर होते जाते हैं, आर्टिफिशियल चीजों की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा शरीर जो है वो नेचुरल चीजों को भूलता जाता है। और फिर वही नेचुरल चीजें जब हमारे संपर्क में आती हैं बाद में 2 साल बाद 3 साल बाद, तो हमारे शरीर को समझ नहीं आता कि इनको कैसे रिएक्ट करना है, और ऐसी स्थिति में वो अननेचुरल प्रतिक्रिया करते हैं जिसको हम एनर्जी कहते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात कर रहे थे फूड एलर्जी की, उसी के साथ में रेस्पिरेटरी एलर्जी, सांस लेने की एलर्जी। अब इसके घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर अलग कारण है, चार दीवारी के बाहर अलग कारण है। चार दीवारी के अंदर जो कारण है वो अक्सर बोलते हैं डस्ट माइट। डस्ट माइट जो है इसके अंदर ये छोटा कीड़ा होता है जो हमारे बिस्तर में, चादर में, सोफे में, गद्दों में पाया जाता है। ये बहुत महीन कीड़ा है जो हम आंख से नहीं देख सकते, और ये कीड़ा कुछ केमिकल बनाता है। ये केमिकल जो होते हैं जब रात को जब हम सोने के लिए गए और ये केमिकल जो है नाक के जरिए अंदर जाते हैं, और फिर उसके बाद आपने देखा होगा रात को 12 बजे 1 बजे इनहेलर की जरूरत पड़ना, नेबुलाइजर की जरूरत पड़ना, घुटन होना,
1: एकदम
0: सुबह सुबह उठते के साथ ही उनको छींके आना। कुछ लोगों को लगता है मुझे टूथपेस्ट एलर्जी है, कुछ लोगों को लगता है मुझे साबुन से एलर्जी है, पर एक्चुअल में डस्ट माइट की एलर्जी होती है, और ये डस्ट माइट के जो कण है उनको परेशान करते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है इंडोर में वो है कॉकरोच। आजकल हम सभी लोग कहते हैं कि कॉकरोच जो है वो हमारे घर में है नहीं, लेकिन कॉकरोच एक्चुअली सभी के घर में है। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड होने की वजह से हमें दिखते नहीं, और ये कॉकरोच के जो कण है वो काफी दूरी तक 70 मीटर 75 मीटर 100 मीटर दूरी तक भी क्रॉस कर सकते हैं हवा में, तो ये कॉमन कारण है।
1: और ये क्या परेशानी पैदा करते हैं सर?
0: वंस अगेन फिर से नाक के अंदर जाएंगे तो नाक के अंदर से नजले की दिक्कत करेंगे, सांस के अंदर जाएंगे तो सांस के अंदर दिक्कत करेंगे। और ये माना जाता है कि अस्थमा, दमा के मरीजों में जिनको कॉकरोच की एलर्जी है वो काफी हानिकारक मानी जाती है, और माना जाता है कि वो काफी लंबे समय तक परेशान रहेंगे, वो बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से फंगस, कभी कभी हम घरों के अंदर पेड़ पौधे लगा लेते हैं, दीवारों में सीलन आती है, तो ये फंगस जो है ये परेशान करता है।
1: ये एक मुख्य कारण होता है।
0: और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे कल आजकल देखने आ रहा है पेट्स, कुत्ते और जो कैट्स और जो डॉग्स और जो घर के अंदर रखते हैं, ये चीजें।
1: सर इस पर मैं आपसे विस्तार में बात करूंगी, उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो
2: हेलो मैडम, मेरी आंखें लाल रहती हैं।
1: जी जी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैडम मेरा नाम रोशन सिंह है
1: जी।
2: मैं वैसे रहने वाला तो उत्तराखंड काशीपुर का हूँ, दिल्ली में हूँ इस समय।
1: ओके।
2: मेरी आंखें काफी लाल रहती हैं, ऐसी रहती है जैसे कोई नशा कर रखा है, जब भी नशा कोई नहीं किया है। पानी अगर सवेरे उठता हूँ, पानी से नहाता हूँ, मैं साबुन भी नहीं लगाता तो भी मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, और मुंह धोता हूँ तो भी आंखें लाल हो जाती हैं, काफी लाल हो जाती हैं। डॉक्टर को दिखाया था, एकदम 15-20 साल से लगातार लाल है, तो बहुत दिखाया तो डॉक्टर ने आंखें चेक करके बताया कि मैं कोई आपको परेशानी नहीं है, मुझे कोई इसकी जलन या खुजली से नहीं, लेकिन देखने वाला सामने कहता लाल है, लेकिन डॉक्टर कह रहे तो जो कोई परेशानी नहीं तो फिर मत जाना, लेकिन देखने वाला परेशान हो जाता है, लेकिन यही कहता है कि तुम कोई नशा कैसे आया है या कुछ है।
0: जो आंखों का लाल पला है जैसे आपने बताया, तो ज्यादातर आंखों की जो एलर्जी है वो खुजली के साथ आती है, और खुजली के साथ में लालीपना होना, खुजली के साथ में आंखों से पानी चलना, तो लेकिन अगर आपने जैसे बताया कि सर लालीपना है लेकिन खुजली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एलर्जी के चांसेस कम है, क्योंकि एलर्जी के लक्षण ज्यादातर खुजली के साथ में आएंगे, बिना खुजली के चांसेस काफी कम है।
1: उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों डॉक्टर साहब आगे बढ़े उससे पहले एक कॉलर है, कॉल लाइन भी ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो
3: हेलो, यस मैम, गुड आफ्टरनून आप दोनों को। मैम मैं शीशो बोल रहा हूँ, कटिहार बिहार से
1: जी।
3: मैम अभी जितनी सारी एलर्जी को लेकर बात हो रही है ना, वो ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीज मेरे लिए है, तो मैं अपना स्पेसिफिकली बताता हूँ। जैसे है ना कि जैसे मैं सोया हुआ हूँ, उठा, फैन ऑन है, मैं सो के उठा और जैसे उठा तो फिर जो हवा लगती है ना ठीक होने लगती है, फिर अगर तुरंत मैं पानी पी लिया तो उससे होने लगती है, या फिर जैसे अभी मौसम खराब है, हवा चलने लगी, धूल उड़ गया तो थोड़ा सा उससे हो जाएगा, कहीं पे गंदा जमा हुआ है उसको अगर थोड़ा साफ कर दिया, झाड़ू लगा दिया तो उससे होने लगती है, तो कुछ कुछ ऐसे सही सिम्टम्स हैं। जैसे अभी मैं जा रहा था, वहाँ थोड़ी ज्यादा गर्मी है, अगर थोड़ा सा घर गाँव की तरफ चला गया तो वहाँ सुबह की हवा लगती है उससे हो जाती है, और ठीक आती है, नाक से पानी जाता है कुछ इस तरह।
1: इन सभी सवालों के जवाब डॉक्टर साहब आप दे चुके हैं, लेकिन फिर भी
0: जैसे हमने आपको बताया, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, जैसे हमने आपको बताया कि क्योंकि आपकी नाक की जो त्वचा है वो

0: से काफी संवेदनशील हो गई है, सेंसिटिव हो गई है, जिसकी वजह से जो भी मौसम में बदलाव होते हैं, हवा धूल के कारण, ये सभी आपको परेशान करते हैं। मैं एक बहुत सरल से एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। हम सभी लोग जैसे जब महिलाएं घर में खाना बनाती हैं और वो हाथ से नमक मिर्च कोई भी चीज डालती है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी कारण से अगर हाथ में छोटा कट लग जाए और वो नमक को हाथ लगाए तो नमक जलाएगा, तो नमक नहीं जला रहा है, नमक तो पहले भी नहीं जला रहा था, वो कट है जिसकी वजह से नमक त्वचा के संपर्क में आया तो जलन महसूस हुई। इसी तरीके से अगर नाक आपका ठीक है, संवेदनशील नहीं है, तो यही चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी, लेकिन अगर नाक को एलर्जी है और नाक आपका संवेदनशील है तो यही चीजें आपको महसूस करेंगी और जलाएंगी। तो उसके लिए मैं यही राय दूंगा आपको कि एक बार एक आप निकट के किसी एलर्जी विशेषज्ञ से मिलकर अपनी जांच कराएं, वो आपको जरूर मदद करेंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, हमें वेस्ट बंगाल से सागर लिख रहे हैं कि मेरे को बहुत तेज खर्राटे आते हैं और इसकी वजह से इनके परिवार वालों को भी काफी दिक्कत होती है।
0: जी तो हमें समझना है कि खर्राटा क्यों आता है। खर्राटा जो है वो अक्सर इस वजह से आता है कि नाक के पीछे का जो हमारा सांस लेने का रास्ता है, अगर वो रास्ता किसी कारण से थोड़ा पतला हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें खर्राटा आता है। अभी कई कारण हो सकते हैं जिसके अंदर से छोटे बच्चों के अंदर अक्सर ये एलर्जी होती है, नाक की एलर्जी, जिसमें पीछे के रास्ते के अंदर जो टॉन्सिल है वो टॉन्सिल बढ़ जाता है, एडेनॉइड बढ़ जाता है, वो रास्ते पे दबाव डालते हैं तो रास्ता पतला हो जाता है तो खर्राटा आता है। यही चीजें 40-45-50 की उम्र के बाद में जो सांस के पीछे का जो रास्ता है उसकी दीवारें थोड़ी कमजोर हो जाती है, जब वो कमजोर हो जाती है या मोटे लोगों के अंदर, ओबीज लोगों के अंदर, तो वो दीवारें थोड़ी कमजोर हो जाती है फैट डिपोजिशन की वजह से, तो रास्ता पतला हो जाता है, उसकी वजह से भी खर्राटे आते हैं। तो हर खर्राटा एलर्जी नहीं है, पर हाँ कुछ खर्राटों में एलर्जी कारण हो सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, रोहिणी से राज लिख रहे हैं कि इनकी वाइफ को नोज पर निशान है और डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने हर्पिस की बीमारी बताई है, निशान अभी भी है, क्या हम आपके पास आ सकते हैं और ये क्या है प्रॉब्लम?
0: जो हर्पीज है, हर्पीज हमें समझना है कि हर्पीज एक वायरस का इन्फेक्शन है और वायरस का इन्फेक्शन जो है या हर्पीज जो है वो एलर्जी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोगों में, बच्चों में या बड़ों में कभी कभी नाक के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल क्रीज होती है जिसको हम एलर्जिक सैल्यूट बोलते हैं। सैल्यूट का मतलब क्या है कि जैसे किसी को नाक बह रही है और बार बार वो हाथ से नाक को रगड़ते हुए ऊपर की तरफ पहुंचता है तो नाक पे एक हॉरिजॉन्टल क्रीज बन जाती है, एक निशान आ जाता है जो परमानेंटली नजर आता है, तो उसको वो एलर्जी की वजह से हो सकता है।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, नरेंद्र सिंह चौहान हमें उत्तराखंड से लिख रहे हैं कि नागरिक ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि खासकर दिल्ली के पर्यावरण को वो शुद्ध करने में सहायक साबित हो सके।
0: एक बहुत अच्छी सोच है और एक बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये सिर्फ एलर्जी को ही नहीं, ये तो बहुत सारी चीजों को प्रभाव कर होगी। सबसे पहले जो हमें समझना है कि सबसे पहले खुद को बदलाव करना है, सबसे पहले खुद ये करना है कि हमें किसी किस्म का पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, ये सबसे पहले जरूरी है। फिर उसके बाद अपने आसपास के माहौल को थोड़ा बेहतर करना है और उसके बाद आगे जाना है। तो एजुकेशन, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप चारों लोगों को बताएं कि पॉल्यूशन, स्मोकिंग कितना हानिकारक है। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपके घरों के अंदर अगर अगरबत्ती धूपबत्ती यूज होती है, आप आज से ही उसको बंद कर दीजिए, ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि एक अगरबत्ती को जब जलाते हैं तो 75 सिगरेट के बराबर धुआं देती है, एक धूपबत्ती 130 सिगरेट के बराबर धुआं देती है। तो आप समझिए कि अगरबत्ती धूपबत्ती आप जला रहे हैं लेकिन कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा, लेकिन कितनी सारी सिगरेट के धुएं के बराबर तो आप ऑलरेडी अपने फेफड़ों में लेके जा रही है। तो सबसे पहले हम अपने घर से शुरू करें तो मुझे लगता है वहीं से ही बदलाव की शुरुआत हो जाएगी।
1: जी मनदीप जज्जर से लिख रहे हैं कि इनकी राइट साइड की तरफ फूड पाइप में घर घर की आवाज आती है और छाती में ऐसे खाली खाली लगते हैं, राइट साइड में होता है ऐसा, क्या करें?
0: देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये सभी लक्षण हैं। लक्षण जो है जैसे सांस की नली के अंदर दबाव की वजह से, सांस की नली में बलगम की वजह से, सूजन की वजह से, तो सबसे पहले आपको एक चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाकर उनसे सबसे पहले जांचना है, कराना है, पीएफटी कराना है, ऑसिलोमेट्री कराना है और जानना है कि ये क्या सांस की नली में सूजन है कि नहीं। दूसरा प्रश्न है कि अगर ये सांस की नली में सूजन है तो क्या एलर्जी है कि नहीं। अगर ये एलर्जी का लक्षण लगता है, डॉक्टर कहते हैं कि एलर्जी की वजह से हो सकता है, फिर एक एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाके उसकी यथासंभव जांच कराना।
1: सब एक कॉलर है, कॉल लाइन ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो,
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी,
2: शाम को नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार, आप सवाल पूछिए अपना।
2: मैं आरडी जिला राजस्थान से बोल रहा हूँ, आशीरा मेरा नाम।
1: जी जी,
2: नाक में बहुत परेशानी रहती, पानी बहता रहता है
1: जी,
2: नाक बंद हो जाता है, पानी अंदर गले में गिरता है
1: जी,
2: सीटें बहुत आती है
1: जी,
2: को तक वो करता हूँ तो बहुत बड़ी जाती है। एक परेशानी तो ये है और एक जो कभी कभी जैसे कुछ खाया तो रात को 1-2 बजे सांस की बहुत परेशानी हो जाती है और मैं ठीक होगा
1: जी।
0: धन्यवाद आपके प्रश्न का। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि जो सबसे कॉमन समस्या है वो रेस्पिरेटरी एलर्जी, सांस की एलर्जी है, जिसमें नाक की समस्या, सांस की समस्या जो अक्सर रात में या अर्ली मॉर्निंग के अंदर आती है, बिल्कुल वैसे ही लक्षण आपने बताए। तो इसके लिए जो आपके आसपास बगल में अच्छे एलर्जी स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर से मिलकर उनसे नाक की जांच, सांस की जांच कराएं, उसके बाद वो आपको वो दवाई लिख के देंगे, नाक का स्प्रे, इनहेलर की कुछ दवाई लिख के देंगे, कुछ जांचें करेंगे, कारण बताएंगे क्यों है, और साथ में उनके निदान को भी बताएंगे कि कैसे बचना है इस एलर्जी से।
1: डॉक्टर साहब, हमें सुकांता बालो जोधपुर राजस्थान से लिख रहे हैं कि इनको एक परेशानी है कि इनके नाक पर पिंपल आ गए हैं और जब ये सनलाइट से घर आते हैं तो इनको एलर्जी फील होती है, और इन्होंने डॉक्टर को दिखाया लेकिन उन्होंने कुछ क्रीम वगैरह दी जिससे इनको अभी राहत नहीं मिली, तो ये क्या करें?
0: ज्यादातर स्थिति के अंदर जो पिंपल्स होते हैं वो हार्मोन्स की वजह से या फैट की वजह से होते हैं, पर आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी कभी गर्म से सर्द में या सर्द से गर्म में कभी जाएंगे और लक्षण अगर बढ़ जाते हैं, इसका मतलब आपके नाक की त्वचा अंदर से संवेदनशील है। अगर वो अंदर से संवेदनशील है तो उसका कारण जानने की जरूरत है कि क्या ये एलर्जी है या ये एलर्जी नहीं है, तो वो जांच करके पता चलेगा। कुछ एलर्जी के टेस्ट होते हैं जिनसे जाना जा सकता है कि क्या आप वाकई में एलर्जी से ग्रसित हैं कि नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, हम बात कर लेते हैं बच्चों की, बच्चों में एलर्जी होने का कारण क्या रहता है और इनको कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं कि बच्चों को एलर्जी से बचाया जा सके?
0: जी, तो सबसे पहली चीज ये है कि जैसे हमने बात किया जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब ये कि अनुवांशिक, अगर मम्मी पापा के अंदर, दादा दादी में, नाना नानी में, कहीं पे भी ब्लड रिलेटेड किसी तरीके की एलर्जी रही है तो उनके अंदर बच्चों के होने के चांसेस
1: ज्यादा है।
0: सेकेंड, अगर मदर या इवन ग्रैंड मदर ने कभी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान में स्मोकिंग किया है तो वो स्मोकिंग जो है वो जो बच्चा बॉर्न नहीं हुआ है उनको भी आगे एलर्जी की तरफ धकेल देता है। फिर उसके बाद आ जाता है डिलीवरीज, डिलीवरी के अंदर जो बच्चे वेजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए हैं उनको एलर्जीज कम होती है, जो सीजर इन्फेक्शन से बॉर्न हुए हैं उनको अधिक होती है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत के पहले 6 महीने मां का दूध सर्वोपरि है, जो होना चाहिए, जरूरी है, एलर्जी से बचाता है। फिर उसके बाद ऊपर का खान पान जो हमारे एलर्जी करने के जो कारण है, जैसे मैंने आपको बताया दूध, अंडा, पीनट, जो हर तरीके के जो फूड आइटम्स हैं, जनरली कहते हैं 6 महीने से 12 महीने के बीच में बच्चे के डाइट में इंट्रोड्यूस हो जाने चाहिए। तो वीनिंग जो है वो टाइमली शुरू होनी चाहिए, अगर हम वीनिंग टाइमली नहीं करते, डिले करते हैं तो एलर्जी हमारे होने के चांसेस अधिक होते हैं। घर में अगर दूसरे तीसरे साल के अंदर कोई पेट्स को लेकर आए हैं, कुत्ता बिल्ली को लेकर आए हैं, तो वो एलर्जी के कारण बन सकते हैं। तो कभी अगर मान लीजिए किसी बच्चे की त्वचा अच्छी नहीं है, उसकी स्किन जो है उसको एक्जिमा है, तो उसमें एलर्जी के होने के चांसेस अधिक होते हैं। और अगर इन्हीं चीजों को तरीके से बचाव किया जाए तो यही एलर्जी को बचाव भी कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, स्कूल में किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं ताकि बच्चों को एलर्जी से बचाया जा सके, क्योंकि बच्चे ना रोज एक लंबा समय स्कूल में बिताते हैं?
0: ये बहुत अहम प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि जितने भी स्कूल के अध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये इसको बहुत गौर करें इस चीज के लिए कि हमारे बच्चे जो है वो एक बहुत लंबा समय जो है स्कूल में बिताते हैं, और स्कूल के अंदर बच्चे खाना भी खाते हैं, शेयर भी करते हैं एक दूसरे के साथ, बर्थडे पार्टी हो रही है तो केक भी खाते हैं, और कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को मान लीजिए कोई दूध की, अंडे की एलर्जी है, लेकिन उसको बिना जाने अगर उसको एक्सपोजर हो जाए केक का या किसी दूसरे की फूड शेयरिंग का, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले स्कूल अवेयरनेस, तो हमने एक प्रोग्राम चालू किया है जिसको बोलते हैं एलर्जी स्कूल। इस एलर्जी स्कूल के अंदर हम स्कूल्स में जाके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में उनको अवेयर करते हैं, सभी को बताते हैं कि क्या क्या एलर्जीज हो सकती है। खाना जो है वो हम कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को इस तरीके की तकलीफ है तो उसको खाना शेयरिंग के लिए फोर्स न किया जाए, बल्कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके, उनके नीड्स को आइडेंटिफाई करके, और उस तरीके की टेबल्स बनाई जाए सेपरेटली कि ये पर्टिकुलर टेबल मिल्क एलर्जिक बच्चों के लिए है, ये पर्टिकुलर टेबल एग एलर्जिक बच्चों के लिए है। इसी तरीके से जो स्कूल्स की कैंटीन्स हैं, कैंटीन्स के अंदर बहुत कॉमन जगह है जहां पे कि फूड की मिक्सिंग हो सकती है, कि किसी बच्चे को एक चीज से और दूसरी चीज से एलर्जी है और वो आपस में मिक्स हो गई और बच्चे को पता भी नहीं चला कि उसने कब कंज्यूम कर लिया और उसको तकलीफ हो गई। तो स्कूल का जो स्टाफ है, जो स्कूल के अंदर जो नर्सेज होते हैं, वो इक्विप होने चाहिए कि अगर किसी को एलर्जी की समस्या आती है तो उसको किस तरीके से डील करना है, कब उसको नेबुलाइजर देना है, कब इनहेलर देना है, और जानलेवा अगर तकलीफ हो सकती है तो उसके लिए क्या इंजेक्शन जो लगाना है और तुरंत लगाना है और डॉक्टर के पास जाना है। तो अवेयरनेस जो है, जानकारी, ये बहुत बड़ी चीज है, और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे इस मुहिम के साथ, एलर्जी स्कूल के मुहिम के साथ जरूर जुड़े और इस जानकारी को हर स्कूल, हर बच्चे तक जरूर पहुंचाएं।
1: जी सर, आपने अभी जानलेवा की बात की, तो क्या कभी एलर्जी जानलेवा भी हो सकती है? यदि किसी व्यक्ति को अचानक गंभीर एलर्जी हो जाए तो परिवार को तुरंत क्या करना चाहिए?
0: बिल्कुल हो सकती है, एलर्जी जानलेवा हो सकती है। एलर्जी के अंदर सांस की नली के अंदर घुटन आ सकती है, सांस की नली बंद हो सकती है, चोक हो सकती है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंसान का गिर सकता है, और जिस तकलीफ को हम एनाफाइलेक्सिस कहते हैं, तो एनाफाइलेक्सिस अगर किसी को भी होता है तो उस समय के ऊपर एक इंजेक्शन होता है जिसको एड्रेनालिन कहा जाता है, वो इमीडिएटली तुरंत मरीज के लिए जान को बचाता है जो उसके लिए देना जरूरी है। और अगर कभी भी किसी को इस तरीके का एनाफिलेक्सिस हुआ है तो एनाफिलेक्सिस को मैनेज करने के बाद उसको एलर्जी स्पेशलिस्ट से सलाह करना चाहिए, कारण जानने चाहिए, जिससे भविष्य के अंदर उस एनाफिलेक्सिस को बचाया जा सके। और आगे कुछ इंजेक्शन आते हैं जिनको

0: लाइफ को बचाने के लिए उनको अपने पास रखा जा सके प्रिवेंशन के तौर पे।
1: डॉक्टर साहब, क्या कुछ हिडन एलर्जीज भी होती हैं जो किसी खास परिस्थिति में उभरती हैं?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बार ऐसा होता है, कई सारे कारण है। जैसे एक है इम्प्रॉपर लेबलिंग ऑफ फूड्स। बहुत बार आपने देखा है कि खाने पीने के अंदर जो लेबल्स हैं तो होते ही नहीं है, लेबल लगे होते हैं तो उसमें आधी अधूरी चीजें लिखी होती हैं, पूरी तरीके से चीजें नहीं लिखी होती, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारी की सारी चीजें जो है वो नहीं बताते कि इसमें क्या चीजें हैं। कभी कभी फूड की मिक्सिंग होती है, आप एक ही रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहीं पर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब कुछ एक ही शेफ जो है वो बना रहा है, परोस रहा है, और कभी कभी सेम ग्लव्स के साथ इधर और उधर मिक्सिंग होती है। तो ये जो सारे कारण है ये हिडन एलर्जेंस होते हैं। आजकल हम लोग वीट नहीं खाते, आजकल हम लोग जो होते हैं बड़े मिक्स फूड खाते हैं, जैसे पिज्जा पास्ता। ये जो पिज्जा पास्ता है क्या है, ये सब एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट का, जिसके अंदर आपको पता भी नहीं चलता कि कभी किसी को नट की एलर्जी है, किसी को वीट की एलर्जी है, और वो उभर के एकदम से सामने आ सकती है। और इसी तरीके से कभी कभी कुछ लोगों को पार्शियल एलर्जी होती है, जैसे वीट से थोड़ी एलर्जी है और उसी के साथ कोई दूसरा ट्रिगर जैसे पेन किलर की मेडिसिन खा लिया, एक्सरसाइज कर लिया, जिसको हम बोलते हैं फूड डिपेंडेंट एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनाफिलैक्सिस। या हमें दो या तीन ट्रिगर डिफरेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन में चाहिए होते हैं, तब जाके मरीज को उस एलर्जी के लक्षण आते हैं, लेकिन एक ट्रिगर से वो एलर्जी के लक्षण नहीं दिखाई देते।
1: डॉक्टर साहब, एलर्जी अवेयरनेस के लिए विभिन्न जो गतिविधियां की जाती हैं थोड़ा उसके बारे में बताइए।
0: देखिए, एलर्जी अवेयरनेस के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं वो काफी जोरों शोरों से काफी गतिविधियां कर रहे हैं। जैसे मैं आज अगर देखें तो एफएम एयर का काफी शुक्रगुजार हूं इस मौके को देने के लिए, आप सभी से बात करने के लिए। इस तरीके की एक्टिविटीज हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर करते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक मात्रा में हम सभी से जुड़े और हम उस अवेयरनेस के लिए हम उन सबसे बात करते रहे।
1: जी जी जी। डॉक्टर साहब, एलर्जी को लेकर ना समाज में की भ्रांतियां हैं कि बच्चों को जो एलर्जी अपने आप ठीक हो जाती है, आप इन मिथकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और एलर्जीज का इलाज नहीं है, कई ऐसे मिथक
0: जी जी जी। काफी लोग कहते हैं कि एलर्जी तो जन्म के साथ आई है तो वो मरने के साथ ही जाएगी, वो नहीं जाएगी, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि एलर्जी को हमें समझना जरूरी है कि एलर्जी क्यों हो रही है, हमारा शरीर की प्रतिक्रिया किसी दूसरी चीज को क्यों रिएक्ट कर रही है, और फिर उसके बाद एक बार वो समझ में आए तो उसके बाद में उसका यथासंभव टेस्ट और यथासंभव इलाज किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया इम्यूनोथेरेपी। दूसरी चीज जो है बचाव एक बहुत जरूरी है। ये एलर्जी जो है ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है। अगर आप बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग गांव में रहते थे, जो लोग पुराने लाइफस्टाइल के साथ जीते थे, उनमें एलर्जीज कम मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम विदेशीकरण की तरफ बढ़ते हैं, हम बहुत हाइजीन की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कहीं ना कहीं अपने जो पुराने जो मिट्टी और जो बाकी चीजें हैं उनको छोड़ते चले जाते हैं, और शायद उसी वजह से हमारा शरीर कभी सीख नहीं पाता कि इन चीजों से, बाहरी चीजों से कैसे रिएक्ट करना है, और फिर जब एकदम से किसी चीज के संपर्क में आता है तो फिर वो अबनॉर्मली रिएक्ट करता है। तो ये एक लाइफ स्टाइल को हमें सुधारना है।
1: सादा जीवन, सरल जीवन ही
0: सबसे अच्छा है, वो बहुत जरूरी है, जो हमें समझना जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब, आज हमने बहुत सी जानकारियां इस विषय पर प्राप्त किया, तो चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और कौन सी बातें जिन्हें हर व्यक्ति को एलर्जी के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें समझना है कि एलर्जी जो है एक बहुत ही कॉमन चीज है। अगर देखें प्रैक्टिकली तो हर एक व्यक्ति जो है किसी न किसी एलर्जी से सफर कर चुका है, गुजर चुका है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको छींके ना आई हो, सांस न फूला हो, तो हर एक व्यक्ति जो है उसको सफर कर चुका है। तो एक बहुत कॉमन चीज है, और अगर इसको तरीके से अप्रोच किया जाए तो हाँ, ये एलर्जी का इलाज किया जा सकता है। दूसरा, हमें ये समझना है कि एलर्जी को अगर न ढंग से किया जाए तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं, अगर आज एक बच्चा है जिसको सांस फूल रहा है, जो अपना बच्चा रात को सो नहीं पा रहा, स्कूल नहीं जा पा रहा, तो उसके पेरेंट्स भी बेचैन हैं, वो पेरेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रभावित है, वो भी अपना काम नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात हमें समझना है कि ऐसा नहीं है कि एलर्जी का इलाज नहीं किया जा सकता। समय रहते अगर एलर्जी के कारणों को पकड़ा जाए, उनको दूर किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से अगर उनका इलाज किया जाए, तो उसको बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है, व्यक्ति अपनी साधारण लाइफ जी सकता है, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: तो आज हमने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में बात की, एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है, और इस पर हमें खास जानकारी दी डॉक्टर नीरज गुप्ता ने, जो है एलर्जी स्पेशलिस्ट सर्वगंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे इस शो में आए और हमें इतनी खास जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आज के लिए मुझे यानी अपने दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: सदन में आप सुन रहे थे रेडियो डॉक्टर, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन के 12 बजे हैं, अब खबरें नशर होंगी।

कलाम आप सुन रहे थे गीता दत्त के साथ, इस नरमे में आवाज दी थी मन्ना डे ने, मौसीकार थे एस डी वर्मन। और समय मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम के लिए पेशकश गीता दत्त के साथ मोहम्मद रफी की आवाज में चित्रगुप्त की मौसीकी से जयनामा फिल्म है तेल मालिश बूट पॉलिश।

वाला सबसे आलीशान वाला आना आना ले जाना है सस्ते वाला लो आया जापान।

दोनों इधर यहाँ हर सौदा आला लौटाया जवान वाला सबसे आलीशान वाला आना आना ले जाना।

0: कान हलाया असली चाकू बोला अंधार से
1: मिलती

आशा भोसले के साथ आप सुन रहे थे गीता दत्त को फिल्म थी सुजाता। नवनिगा थी मजनू, मौसीकार एस जी बर्मन। आज की मिली सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त के साथ गाए दीगर गुरुकारों की कुछ फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की अगली पेशकश मिस्टर एंड मिसेस 55 का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है ओपन ईयर ने। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी।

फैशन फिल्म का नाम आप सुन रहे थे। गीता दत्त के साथ आवाज दी थी लता मंगेशकर ने, नगमा गाए थे भरत व्यास, मौसीकार हेमंत कुमार। और सामने आप सुनिए गीता दत्त के साथ प्रोग्राम की अगली पेशकश उषा मंगेशकर को, फिल्म है कल्याण, मौसीकार है चित्रगुप्त।

नवादार फिल्म के रंग में आप सुन रहे थे सुधा मल्होत्रा के साथ गीता दत्त की आवाज में। नगमानी गाते शैलेन्द्र, मौसीकार थे एस डी बर्मन। प्रोग्राम की अगली पेशकश गीता दत्त के साथ सुनिए मुकेश को, फिल्म है बावरी नैन। नगमानी गार केदार शर्मा, मौसीकार रोशन।

0: सामने सुनने मेरे साथी, आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के उभरते हुए स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध।

0: श्रा
1: नमस्कार श्रोताओं, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज एक नए परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसरो के दशकों की उपलब्धियों के साथ अब प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स भी अंतरिक्ष क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही हैं। हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम 1 प्रक्षेपण ने भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमताओं को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। ऐसे में ये समझना महत्वपूर्ण है कि भारत का स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम देश की अर्थव्यवस्था, नवाचार और आत्मनिर्भरता को किस दिशा में ले जा रहा है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद काले। डॉक्टर काले, आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की टीम से जुड़कर उन्हें बधाई दी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
3: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। स्काईरूट ने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को हमने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल बन गया।
1: डॉक्टर काले, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम होता क्या है और पिछले कुछ वर्षों में भारत में इसके तेजी से उभरने की प्रमुख वजह क्या है।
2: जब से इसरो ने काम चालू किया था तो उसे ये देखा था कि सभी काम जो है उसकी जो संस्था है, जो सेंटर्स है, तो वहां नहीं हो सकता है। कुछ तो काम जो है जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरी लगती है, वो सब जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां होना चाहिए। और इसी से लेकर हमारे जो रॉकेट्स है, लॉन्च व्हीकल्स है, उसके जो बड़े जो सामान होते हैं वो सब इंडस्ट्री में ही बनते हैं। और ये जब अपने इंडस्ट्री में बनते थे तो वो भी देखा था कि बहुत सारे उसके लिए जो कंपोनेंट्स लगते हैं, सिस्टम्स लगते हैं, मैकेनिकल जो होता है, वो सब काम इंडस्ट्री में तो होता ही है, मगर छोटी छोटी इंडस्ट्री ने भी इसमें हाथ भर लगाने के लिए प्रयत्न किए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा लॉन्च व्हीकल जो है वो एक प्राइवेट इंडस्ट्री स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया और उसका कल प्रक्षेपण बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है और वो अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में जाकर सिद्ध हुआ है। तो पूरे लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए जो भी कुछ इंडस्ट्री लगती है, जो भी कुछ टेस्टिंग करना पड़ता है, वो सभी काम ये प्राइवेट इंडस्ट्री ने किया है। और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इकोसिस्टम यानी पहले से लेकर अंत तक सब जो काम है वो बाहर हो सके। और मुझे खात्री है कि ये काम इस तरीके से करने के लिए सिर्फ मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे नहीं, मगर बाकी सब इंडस्ट्री जो है इसके लिए काम करने वाली उसका भी उसमें आधार होता है और इसको ही हम स्पेस स्टार्टअप की इकोसिस्टम कह सकते हैं।
1: जी, आपने अभी स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम 1 प्रक्षेपण का उल्लेख किया है और ये अभी भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या इस सफलता को हम मान सकते हैं कि इससे भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स को एक नई ऊर्जा मिलेगी?
2: ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है और इसे प्रेरणा लेकर और भी बहुत सारे लोग इसमें काम कर सकते हैं। मुझे खातरी है कि आजकल जो विद्यार्थी है वो भी इसमें आगे जाकर भाग ले सकते हैं। एक बहुत पहले मैंने यहाँ देखा था कि पुणे में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वहां के सब विद्यार्थियों ने मिलकर एक उपग्रह भी बनाया था। ऐसे जो उपक्रम होते हैं उससे हमें प्रेरणा मिलती है और खातरी मिलती है कि जो काम चालू किया था वो आगे भी अच्छी तरह से चालू रह सकेगा।
1: जी, और हमने देखा है जैसे पिछले कुछ समय में जो हमारी अंतरिक्ष नीति है देश की, उसमें कई तरह के सुधार आए हैं जिनसे स्टार्टअप्स के लिए ये वातावरण तैयार हुआ है और वो अच्छा काम भी करके दिखा रहे हैं। क्या जो इस तरह के सुधार हैं, जो नीतिगत सुधार हैं, वो हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़े रहने में सहायक साबित होंगे?
2: इस तरीके की जो नीति है उसे हम आगे जाकर अगर जो हमारे देश के लिए नहीं लेकिन और भी देशों के लिए उपग्रह बना सकते हैं, उनके लिए रॉकेट्स बना सकते हैं, उनके उपग्रह जो वो बनाते हैं वो हम अपने यहाँ के लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके उनको अंतरिक्ष में भी भेज सकते हैं। मुझे खातरी है कि अभी जो प्रेरणा मिलेगी लोगों को, तो आगे जाकर बहुत ही अच्छा काम कर सकेंगे।

0: आज भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स जो है लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट निर्माण पृथ्वी अवलोकन संचार डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं आपको इनमें सबसे अधिक संभावनाएं किस क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं
1: एक तो मुझे लगता है कि जो इसरो ने चालू किया था कि पहले एसएलवी तैयार किया उसके बाद में एएसएलवी तैयार किया पीएसएलवी तैयार किया मतलब ये सब एक एक करके बहुत बड़े बड़े लॉन्च व्हीकल हो गए तो उसके बाद अगर जो कोई छोटा उपग्रह है उसके जो लॉन्च करना है तो उसके लिए एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बनाया है इसरो ने और ऐसे लॉन्च व्हीकल जो है जो छोटे लॉन्च व्हीकल है जिनका उपयोग बहुत जल्दी से हो सकता है ऐसे लॉन्च व्हीकल हम अपने देश के लिए नहीं लेकिन बाकी सब देशों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी बना सकते हैं और उसमें ही मुझे लगता है कि हमें और प्रगति होगी
0: जी और इसके अलावा अगर हम देखें तो अब तक जैसा भी हमारे यहाँ चल रहा था अगर कुछ साल पहले तक अंतरिक्ष के सभी कार्यक्रम या उससे जुड़ा हुआ जो कुछ क्रियाकलाप था वो इसरो तक सीमित था अभी जैसा हम बात कर रहे हैं कि अब निजी कंपनियां हैं स्टार्टअप्स हैं सब इसमें शामिल हैं सबके लिए रास्ते खुल गए हैं हम अगर भविष्य की बात करें निकट भविष्य की अगर एक दशक की या उससे कुछ अधिक तो इस बदलाव से जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम है क्या उनको गति मिलेगी उनको तेजी मिलेगी
1: प्राइवेट इंडस्ट्री ने अभी जो करके दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है लेकिन इससे आगे जाकर जो भी कुछ सामान बना सकते हैं उसका टेस्टिंग करना जो है उसके लिए अभी भी इसरो की मदद लगती है मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो भी कुछ टेस्टिंग करना है वो भी अगर जो कोई प्राइवेट इंडस्ट्री आगे जाकर कर सकेगी तो इसमें बहुत ही ज्यादा सुधार होगा और ऐसी टेस्टिंग के लिए जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री दोनों मिलकर जो कर सकेंगे तो और भी अच्छा होगा
0: जी और अक्सर कहा जाता है कि आने वाले समय में स्पेस डेटा एक नई अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा तो अगर हम कुछ क्षेत्रों पर गौर करें जैसे कृषि क्षेत्र है या डिजास्टर मैनेजमेंट है या शहरों की योजना बनाने शहरी नियोजन है और राष्ट्रीय सुरक्षा है इनमें ये जो चार क्षेत्र है इनमें स्पेस डेटा से कैसे हमें सहायता मिल सकती है
1: डिजास्टर मैनेजमेंट की जब हम जो बात करें तो जब भी चाहे तब अगर जो उपग्रह को जो लॉन्च करना होगा इसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्री का ये छोटा उपग्रह बहुत ही अच्छा रहेगा और इसमें बहुत आगे जाकर बहुत ही काम कर सकते हैं अगर जो शहरी व्यवस्था है उसकी जो व्यवस्थापना करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे उपग्रह जो मिल सके तो ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकेंगे
0: जी और बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे यहाँ कृषि भी तो क्या खेतीबाड़ी में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है
1: हो सकता है जो रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स है ऐसे सैटेलाइट्स जो हम बना सकेंगे और भी ज्यादा तो उसका उपयोग हम अच्छी तरह से कर सकेंगे क्योंकि हर रोज अगर जो कोई हमें जो इमेज मिल सके कोई भी खेती क्षेत्र की तो उससे हमें ज्यादा जानकारी मिल सकती है और वो जानकारी जो है वो सब अपने जो एग्रीकल्चरिस्ट है उन तक जो पहुंच सके तो बहुत अच्छा होता है तो ये पहुंचने के लिए जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जरूरत है वो भी अच्छी तरह से आगे जाकर बना सकते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री और उसका उपयोग करना जो है वो भी वो कर सकते हैं
0: जी डॉक्टर काले पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है जो अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां रही हैं भू राजनीतिक कई जगह तनाव रहे हैं कई जगह सैनिक कार्रवाई चल रही है पूरी दुनिया में ऐसे में सैटेलाइट्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी इसकी भूमिका पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे
1: ऐसे जो सैटेलाइट्स है जो हमें इसके लिए काम में ला सकते हैं तो ये सैटेलाइट्स जो है वो डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे सैटेलाइट्स छोटे जो सैटेलाइट्स है बड़े भी सैटेलाइट्स है ऐसे हम बना सकते हैं और प्राइवेट इंडस्ट्री का जो सहभाग आगे लेकर जो कर सके तो वो ये बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि सिर्फ सैटेलाइट्स बड़े बनाने से ये काम नहीं हो सकता है उसके लिए बहुत ही सारे और भी तरीके के उपग्रह की जरूरत होती है और ये उपग्रह लॉन्च भी करना जल्दी से होता है तो इसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्री जो है उसका बहुत ही सहभाग होगा
0: जी और भारत अभी वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य लेकर आगे की ओर अग्रसर है भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में स्टार्टअप्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी और हमारे सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं
1: इसके लिए जो सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए क्योंकि सबको भी पता है कि भारत ये कर सकता है, लेकिन उनको जो जल्दी से कुछ करना होगा तो हम कर सकेंगे कि नहीं, इस पर ये लोगों का विश्वास नहीं है। तो वो विश्वास प्राप्त करना बहुत ही जरूरी होगा। जो भी कुछ काम कर सकते हैं वो अच्छा करना है, टाइम पे करना है, और जो उसके लिए जो कुछ फंडिंग लगेगा वो भी हम मिला सकते हैं। अगर इसके लिए अच्छी तरह से ये काम करना होगा और जो टाइम से करना होगा।
0: जी, हम जानते हैं कि स्पेस सेक्टर में नवाचार यानी इनोवेशन के लिए सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि निवेश की भी जरूरत होती है, अनुसंधान भी चाहिए और उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग भी जरूरी है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो भारत को अभी और क्या कदम उठाने चाहिए?
1: एक तो मैंने भी इतने सालों से देखा है कि रिसर्च के लिए जो फंडिंग लगता है वो फंडिंग कमती हो रहा है, जो अपने यहाँ के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी तक जाकर पहुंचना चाहिए। अगर जो वहां तक जो ये पहुंच सके अच्छी तरह से तो ये इनोवेशन का काम और भी अच्छी तरह से आगे चल सकेगा।
0: जी,
1: इसके लिए जो भी कुछ रिसर्च फंडिंग है इसरो की है, दूसरे डिपार्टमेंट की भी है, डिफेंस की भी है, तो उन्हें अपने यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज है उनके यहाँ जाकर अच्छी तरह से काम, यूनिवर्सिटी में जो हो सके तो उसके लिए विद्यार्थी भी मिल सकते हैं, काम करने के लिए लोग भी मिल सकते हैं, और ये लोगों को जो प्रेरणा मिले तो वो आगे जाकर ये जो स्पेस इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत ही हाथ भार लगा सकते हैं।
0: जी, और दुनिया में हम लगातार देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में गतिविधियां तो काफी बढ़ गई हैं, कई देश इसमें बहुत सक्रिय हैं। इसके साथ साथ अंतरिक्ष में भी नई चुनौतियां दिख रही हैं, स्पेस में जैसे कचरा बढ़ गया है, साइबर सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियां आ रही हैं और रेगुलेशन से जुड़े हुए भी कई चैलेंजेस हैं। तो अगर हम भारतीय स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो उनके लिए ये मुद्दे कितने महत्वपूर्ण होंगे आने वाले दिनों में?
1: उनके लिए एक तो आगे जाकर जो देखना है कि हमें जो दूसरे के देशों के लिए हम कुछ बना सकते हैं तो वो अच्छी तरह से बनाना है, ये तो सही है, मगर उनके रूल्स और रेगुलेशंस को का भी पूरा पालन होना चाहिए। जैसे हम मानते हैं कि अपने देश के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसका तो पालन नहीं करेंगे ही, लेकिन वहां के जो रूल्स रेगुलेशन है उनका अच्छी तरह से समझ पहुंचना चाहिए। और इसके लिए अगर जो यूनिवर्सिटीज जो है वहां जो ऐसे कुछ प्रोग्राम हो कि कौन से देश में कौन से तरीके रूल्स एंड रेगुलेशन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिसे कह सकते हैं उसका उपयोग करके हमारे स्टार्टअप्स और भी ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकेंगे।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप भारत के स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम की कैसी तस्वीर देखते हैं? क्या भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक स्पेस इनोवेशन हब के रूप में उभर सकता है?
1: बन सकता है, मैंने भी जैसे कहा, तो ये इसके लिए जो भी कुछ करना है काम उसके लिए रिसर्च लेबोरेटरीज चाहिए और जगह चाहिए, और ये जगह जो है वो एक आइसोलेटेड नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे यूनिवर्सिटीज तक जो पहुंच सके तो अच्छी तरह से काम आगे हो सकता है।
0: श्रोताओं, जैसा कि आपने अभी सुना, भारत का उभरता स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है बल्कि विकसित भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। डॉक्टर प्रमोद काले जी, इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत के उभरते हुए स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन का एक बजा है, बालमी खबरें नशर होंगी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से आलमी खबरें सुनिए। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू हो गया। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा पार्लियामेंट के कामकाज को खुश उसूल जारी रखने के लिए ताउन करें। सूबे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शिनचुंग में वाल्डोवा के अपने मनसब माया साधु से वक्त की सतह की बातचीत करेंगी। امریکہ نے ایران پر فضائی حملے کیے ہیں، حملوں کی نوی رات ہے جس کی وجہ سے آپ نے ہرمز سے متعلق کشیدگی میں مزید شدت آ گئی ہے۔ بھارت نے ایران میں عدم استحکام اور تنازع کی حال شدت کے پیش نظر اپنے شہریوں کو مشورہ دیا کہ ایران کے سفر کو ملتوی کریں، اور اسپین نے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کو اضافی وقت میں 1-0 سے ہرا کر سن 2026 کا فیفا

0: वॉल्यूम भी 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। एक नजर इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज शुरू हो गया है। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वह पार्लियामेंट के काम को खुश उसलूबी से जारी रखने के लिए तावुन करें। सऊदी मुल्क द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मालडोवा की अपनी मनसब मिया सांडू से वफ्द सतह की बातचीत करेंगी। अमरीका ने ईरान पर फिजाई हमले किए हैं। हमलों की नवी रात है जिसकी वजह से आबनाए हुरमुज से मुतालिक कशीदगी में मजीद शिद्दत आ गई है। भारत ने ईरान में अदम इस्तेहकाम और तनाजे की हाली शिद्दत के पेश नजर अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वह ईरान के सफर को मुलतवी करें। और स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को इजाफी वक्त में 1-0 से हराकर 2026 का फीफा आलमी कप जीत लिया है। इतनी इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम में 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन के 1:15 हुआ चाहते हैं, यहां हमारी आज की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती है। अब से कुछ ही देर बाद यानी 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
1: आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं जितने रिलीज के टाइम पे।

श्रोताओं, इस फिल्म का निर्देशन अमित सक्सेना ने किया था। निर्माण पूजा भट्ट और सुजीत कुमार सिंह द्वारा किया गया था। कहानी लिखी थी महेश भट्ट ने, डायलॉग लिखा था निरंजन अयंगर ने और ये फिल्म 1981 की हॉलीवुड फिल्म बॉडी हीट से प्रेरित थी। तो चलिए आज की सफर की शुरुआत करते हैं इसी फिल्म के साथ। फिल्म जिसमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु। जॉन अब्राहम बॉलीवुड के लिए भले ही नए थे लेकिन उस वक्त मॉडलिंग की दुनिया में काफी मशहूर थे। वहीं दूसरी तरफ बिपाशा बसु, दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में कई लोगों ने उन्हें सलाह दी थी कि इस फिल्म को करने से बचें, क्योंकि उस समय इस तरह की फिल्म को काफी बड़ा जोखिम माना जाता था। लेकिन बिपाशा ने दूसरों की राय से ज्यादा कहानी और अपने किरदार पर भरोसा किया। बाद में उन्होंने माना भी कि जिस्म करना उनके करियर की सबसे अच्छे फैसलों में से एक था और जब फिल्म पर्दे पर आई तो जॉन और बिपाशा की जोड़ी ने दर्शकों का दिल ही जीत लिया। क्या आप जानते हैं, फिल्म के क्रेडिट्स के मुताबिक जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु दोनों के लिए डबिंग आर्टिस्ट का इस्तेमाल किया गया था। जॉन के लिए विराज आधव और बिपाशा के लिए मोना शेट्टी ने अपनी आवाज दी थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस जॉन अब्राहम की पहली फिल्म में उनकी अपनी आवाज नहीं थी, वही आगे चलकर बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सितारों में शामिल हो गए। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है वो है जिस्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म की कहानी की। कहानी एक वकील कबीर लाल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी में एक अमीर शादीशुदा महिला सोनिया खन्ना की एंट्री होती है। पहले मुलाकात होती है, फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रिश्तों, भावनाओं और धोखे का ऐसा खेल शुरू होता है जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य सामने आता है, और यहीं से फिल्म दर्शकों को अंत तक अपने साथ बांधे रखती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसके गाने भी ब्लॉकबस्टर साबित हुए। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 9 साल बाद साल 2012 में इसका सीक्वल जिस्म 2 भी बनाया गया। हालांकि पहली फिल्म जैसी सफलता तो उसे नहीं मिली, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट फिल्म मानी गई। लेकिन जिस्म की कहानी सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं थी, कैमरे के पीछे भी कुछ ऐसे ही किस्से बन रहे थे। फिल्म जिस्म की शूटिंग गोवा के अलग अलग खूबसूरत लोकेशन पर हुई, और इसी शूटिंग के दौरान जॉन अब्राहम और बिपाशा के एक दूसरे के काफी करीब आ गए। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री धीरे धीरे रियल लाइफ में भी नजर आने लगी। फिल्म खत्म हुई लेकिन उनकी दोस्ती एक लंबे रिलेशनशिप में बदल गई, जिसके बारे में उस दौर में हर मैगजीन और एंटरटेनमेंट पेज में चर्चा होती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इस फिल्म का सबसे बेहद और खूबसूरत गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी और आज की जो फिल्म है वो है जिस्म। अब बात करते हैं इस फिल्म के संगीत की। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था एमएम किरवानी ने, जिन्हें हम एमएम करीम के नाम से भी जानते हैं। वहीं गीतों को शब्द दिए थे नीलेश मिश्रा और सईद कादरी ने। गानों को अपनी आवाज से सजाया था श्रेया घोषाल, रूपकुमार राठौर, उदित नारायण, के और खुद एमएम करीम ने। उस दौर में इस साउंडट्रैक की लगभग 15 लाख कॉपियां बिकी थी, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। तो चलिए इसी खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं और फिल्म के अगले गीत के साथ और संगीत, एक शानदार संगीत आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बताते हैं इस फिल्म के अवार्ड्स के बारे में भी। फिल्म फेयर अवार्ड्स में श्रेया घोषाल को उनके यादगार गीत जादू है नशा है के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का सम्मान मिला। वहीं इस फिल्म ने कलाकारों के करियर को भी नई उड़ान दी। जॉन अब्राहम को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जबकि बिपाशा बसु को उनके दमदार और बोल्ड अंदाज के लिए बेस्ट नेगेटिव रोल फीमेल का पुरस्कार भी दिया गया। तो चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है जिस्म। और हमारे प्यारे श्रोताओं के मेल भी हमारे पास पहुंच चुके हैं, तो हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ पलियारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा जी ने लिखा है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस निर्मला और विशाल जी लिखते हैं, बहुत ही शानदार प्रस्तुतिकरण के साथ साथ बेहतरीन गीत सुनने को मिल रहा है और साथ ही उम्दा जानकारी भी मिली, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिस फिल्म के गाने और स्टोरी सुन रहे हैं पसंद आ रहा है, इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम और चंपा देवगन जी का। कोई भी गीत सुनवा दें, ये लिख रहे हैं ये एक ही फिल्म से है, इसलिए कोई भी गीत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही फिल्म से जिस्म के गीत ही आपको सुनने को मिलेंगे। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास और आशा देवी जी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। फिल्म जिस्म के बारे में बेहतरीन बातें बताई, रोचक किस्सा सुनाया, कहानी और नगमे भी सुनवाए, बेहतरीन प्रस्तुति रही, हमें भी कार्यक्रम सुनकर बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया नमन और अपार है। आगे बढ़ते हैं, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से हैं और ये हैं, लिखते हैं कि आज आप चर्चा कर रहे हैं सन 2003 की फिल्म जिस्म की। जी हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र छिपा जी, हम इसी की चर्चा कर रहे हैं और ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और ये है शांति नगर सोनीपत से, और ये हैं स्वर्णजीत, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलार और विराज ठाकुरावाला से, और ये है आरजे साहब, प्यार भरा नमस्कार आदाब अर्ज है गुरनौर से आदिल कमर और अली मुजफ्फर अली। ये है लिखते हैं, नमस्कार राखी बहन, आपका हार्दिक अभिनंदन, फिल्म जिस्म की खूबसूरत जानकारी और गीत सुन रहे हैं। नौहरा राजस्थान से नरेंद्र सुथार और मनोज जी का, और ये हैं सुदर्शन रेडियो से आज की फिल्म जिस्म, बिल्कुल सही बात है। और ये है दंतरेगी से भागवत वर्मा, शांति वर्मा और लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा जी का। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन से मोहम्मद इस्फाक और मोहम्मद अस्फाक, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर, फातिमा, आफरीन, कौसर और खतीजा जी का। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, फिल्म के आखिरी पड़ाव पे चलते हैं और बात करते हैं, फिल्म ये जो फिल्म थी जॉन अब्राहम के लिए एक बड़ी शुरुआत साबित हुई, बिपाशा को एक नई पहचान दी और बॉलीवुड को ये दिखाया कि थ्रिलर रोमांस और इमोशन का एक नया अंदाज में भी पेश किया जा सकता है। इस फिल्म की सबसे खास बात सिर्फ इसकी बोल्ड इमेज नहीं थी बल्कि उसकी कहानी, उसका बैकग्राउंड स्कोर और उसके गाने भी थे जिन्हें आज भी उतने ही मोहब्बत से गुनगुनाया जाता है। तो चलिए कार्यक्रम का आखिरी गीत भी हम साथ साथ मोहब्बत से गुनगुनाते हैं।

हमारे कुछ श्रोताओं का मेल और आ गया है, उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। आज आप बहुत अच्छी चर्चा करके कर रही हैं दीदी जी। राम राम। मॉडल टाउन से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, संदीप और जगमोहन और प्रतिभा किरण ठाकुर लिखते हैं। और ये हम आगे बढ़ते हैं, अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक, आजाद अली अनवर, रिजवान परवीन, अब्दुल्ला आजाद और जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन, रोजी पर और विलिस, और ये ताज मोहम्मद अंसारी, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से।

हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी, और ये है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत भारत और कमल सहानी पिंगावाला चौक जालंधर से। और ये है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन से मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, इनका हमने पहले ही पढ़ लिया है। और यह कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीत, राहुल और गुरशब्द सिंह। तो दोस्तों हमारा जो ये सफर है इसको यही हम विराम देते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे दोपहर के 3 बजे मैटिनी मेलोडीज के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्ते।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 1:40 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: उर्दू खबर सुनोगे?
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। संसद दा मानसून अजलास अज तो शुरू होया। 25 दिनां दे इस अजलास विच 19 बैठकां होणगियां। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, मानसून होवे जां मानसून अजलास, दोवें सरगर्म होण तां बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुंदे ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शिचनाओ च मोलदोवा दे राष्ट्रपति माया संधु नाल वफद पद्धरी गल्लबात कर रहे नें।

0: ICSSR ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਖੋਜ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਰਿਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੁਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਤੂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੁਮਸ ਭਰੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੁਬਿਆਂ ਚ ਮੌਜੁਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਐ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਚ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਜਲਾਸ ਚ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਚ ਹੋਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਾਈਟੈਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। 7 ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਤੇ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास शुरू हो गया है। अपोजिशन की हंगामाराई के तनाजुर में दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई बार मुलतवी करना पड़ी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास को मुफीद बनाए जाने पर जोर दिया है और कहा है कि इससे मुल्क की बहबूद की राह हमवार होगी। सुप्रीम कोर्ट में उन दरखास्तों की समाअत होने वाली है जिनमें राम मंदिर चढ़ावे में खुर्द बुर्द के जाने के केस की तहकीकात की अपील की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की अपने हमनसब के साथ वफू सतह की बातचीत करने वाली हैं और आबनाए हुरमुस के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास शुरू हो गया है। लोकसभा की कार्रवाई जब दिन में 11 बजे शुरू हुई तो ऐवान के उन 6 साबिक अरकान को खिराज अकीदत पेश किया गया जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। इनमें एन भास्कर राव, ओमवती देवी, सुधांशु सील, मेजर जनरल रिटायर्ड भवन चंद्र खंडूरी और केपी धनापालन और प्यारेलाल संखवार शामिल हैं। ऐवान में कतर के अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल सानी को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा आल सानी ने भारत कतर ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा किया था। जनाब बिरला ने कहा कि कतर के अमीर के वालिद 18 साल तक इस ओहदे पर फायज रहे और जदीद कतर की बुनियाद रखी।
2: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: स्पीकर मौसूफ ने जब सवालों के वक्फे की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अपोजिशन अरकान ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने का मामला उठाया। जनाब ओम बिरला ने अपोजिशन पर जोर दिया कि वह ऐवान का कामकाज चलाने में ताउन करें और ऐवान का वकार बरकरार रखें, लेकिन अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा और लोकसभा की कार्रवाई दिन में 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो शोरगुल जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई 12:30 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्रवाई नए मुंतखब और दोबारा मुंतखब किए गए अरकान की हलफबरदारी के साथ शुरू हुई। बाद में ऐवान के उन साबिक अरकान को खिराज अकीदत पेश किया गया जिनका पिछले इजलास के बाद इंतकाल हुआ है। अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने का मामला उठाने की कोशिश की, अलबत्ता शोरगुल के तनाजुर में राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने ऐवान की कार्रवाई दिन में 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान ने नीट इम्तिहान मामले पर नारेबाजी शुरू कर दी और एहतियात जारी रहने पर सदर नशी ने कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खा मानसून हो या मानसून इजलास, अगर ये दोनों सरगर्म रहते हैं तो ये इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने से कबल मीडिया से बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब दोनों ही समर आवर होते हैं तो इसके नतीजे में मुल्क की बहबूद और सभी जानदारों की भलाई की राह हमवार होती है। वजीर आजम ने कहा कि ये एक मजबूत पैगाम है कि मुल्क के नौजवानों की सलाहियत और उनकी उमंगें उतनी ही लामहदूद हैं जितना कि खुद खला है।
3: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि सिर्फ एक महीने के अरसे में मुल्क ने कई संगे मील और कई कामयाबियां हासिल की हैं जिससे हर शहरी फख्र से सरशार हो जाता है। वजीर आजम ने कहा कि खा ये कौमी मंजरनामा हो, बैन अलावामी प्लेटफॉर्म हो और अब हत्ता के खला में भी भारत के लिए वाकई बड़े फख्र के लम्हात रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मुख्तलिफ खित्तों में पूरी दुनिया को लगातार जंग के खतरे से तशवीश लाहक है। उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया में महाज आराई से भारत जैसे मुल्कों को बड़े बहरान का सामना है जो तवानाई के लिए दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार करते हैं।
3: पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए यूरोप पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए, उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कानून और इंसाफ महकमे के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया। इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक 1956 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है ताकि अदालत आलिया के जजों की तादाद मौजूदा के 33 से बढ़ाकर 37 की जा सके, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस शामिल नहीं हैं। इस साल मई में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के सिलसिले में एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से तश्कील दी गई खसूसी जांच टीम एसआईटी ने राम मंदिर में मुबैना चढ़ावा चोरी केस में अपनी कार्रवाई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। ये रिपोर्ट एक मुहरबंद लिफाफे में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली 3 जजों की बेंच को पेश की गई। अदालत आलिया आज इस मामले की समाअत करने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चीसी नाव में मालदोवा की अपनी हमनसब माइया सांडो के साथ वफ सतह की बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया मालदोवा की पार्लियामेंट के सद इगोर गोरोसू से भी मुलाकात करेंगी और मालदोवा भारत पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से बातचीत करेंगी। इसके अलावा वो एक तजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अरकान से मिलेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का मालदोवा का यह पहला दौरा है। सदर जमहूरिया 3 मुल्कों मालदोवा, शिमाली मकदूनिया और रूमानिया के सरकारी दौरे पर हैं। मालदोवा के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया दूसरे मरहले में कल शिमाली मकदूनिया पहुंचेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का भी यह पहला दौरा है। माहौलिया जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक अक्वाम मुत्तहदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन मिस्टिल से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब यादव ने कहा कि मुलाकात के दौरान आबोहवा की तब्दीली की रोकथाम के तरीकेकार को अपनाने, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, माहौलिया से मुतालिक मालियात जैसे मौजूदात पर तवज्जो मरकूज की गई। ईरान और अमरीका ने लगातार 90 दिन एक दूसरे पर हमले किए हैं। कलीदी अहमियत की हामिल आबनाए हुरमुस के मामले पर कशीदगी में इजाफा हो रहा है। अमरीका ने जुनूब मगरबी ईरान में हॉर्मुज कस्बे को निशाना बनाया, जबकि उर्दुन, कुवैत और बहरीन में फिर से ईरान के हमले होने की इत्तला मिली है। ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी ने एक मकामी अहलकार के हवाले से बताया है कि अमरीकी हमले की वजह से बूशहर सूबे

नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत

0: करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: To put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: I appeal to members across all sides of the House to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the House.
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक

0: दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के तीन बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440 करोड़ 42 लाख रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई तीन मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ

0: यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु, तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसला

0: 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम जिसका नाम है एक ही कलाकार, जो होता है सदाबहार सितारों के नाम। जी हाँ, आज जिस अभिनेता की हम बात करेंगे उन्हें पूरी फिल्म इंडस्ट्री प्यार से जुबली कुमार कहती थी। एक ऐसा सितारा जिनके रोमांटिक अंदाज ने प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी। तो इस आधे घंटे के फिल्मी सफर में मेरे साथ यानी रैना तंवर के साथ जुड़े रहिए। वो कैसे? वो ऐसे कि जल्दी से फोन उठाएं और हमें बताएं कि आज हम किस अभिनेता के दिलचस्प किस्सों, उनकी यादों और सदाबहार गीतों को लेकर आज के इस कार्यक्रम को खास बनाने चले हैं। तो आपको बस इतना करना है, अपने जवाब को हम तक भेजना है। वो कैसे? हमारे ईमेल आईडी के जरिए। जी हाँ, हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो सबसे

जी हाँ, आप भी सबको छोड़कर हमारे पास आ जाइए। हम जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं और जिन्होंने हमें सबसे पहले मैसेज करके सही जवाब दिया है वो हैं दिग दर्शन और कविता गौर जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आज के फेवरेट श्रोता का खिताब पाने के लिए। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये कार्यक्रम आज समर्पित है राजेंद्र कुमार जी को। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और इनका जो जन्म है आज ही के दिन यानी कि 20 जुलाई आज ही की तारीख पर यानी कि आज के दिन सन 1929 को सियालकोट जो कि आज पाकिस्तान में हुआ करता है, विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष किया। और हमारे पास इसी तरीके से बहुत सारे मैसेज आए और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले सही जवाब जिन्होंने दिया था हमने बता दिया है, लेकिन उनके साथ साथ स्वर्ण सिंह जी ने हमें मैसेज किया, नितेश देवांगन जी ने हमें मैसेज किया है और नितेश कुमार देवांगन जी और इस तरीके से स्वर्ण दलदीत राजदीप गुरनूर गुरनाल अविराज जी ने हमें मैसेज किया और नितेश जी ने दुर्गा प्रसाद पराग पुना और कृष्णा देवांगन जी ने और फिर हमें तनुजा जी ने किया मैसेज, शांत लखनलाल सावित्रीबाई नीतीश कुमार तनुजा जी और इसी तरह से यासीन मोहम्मद।

जी हाँ, किस किस के होश उड़ गए हैं, अभी भी पुराने दिन याद आ जाते हैं ना ये गाने सुनकर। अपना वो दिन जब हम भी किसी को याद किया करते थे, खत लिखा करते थे। कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार साहब शुरू से ही गांव और अपने गांव की उस मिट्टी से जुड़े एक सादगी भरे इंसान थे। बचपन से ही उन्हें कला से प्रेम। जहाँ वो गांव के बच्चे गुल्ली डंडा चोर सिपाही खेला करते थे, वो राजेंद्र कुमार जी थे जो अपने गांव के स्कूल में स्टेज पर कविताएं और किस्से नाटक कर लोगों को प्रभावित करते थे। ये अदाकारी देखकर गांव के सभी लोग कहते थे कि ये लड़का एक दिन तो कुछ करके दिखाएगा। और उनकी माँ का भी यही दृढ़ विश्वास था और आशीर्वाद था जो आज उनको हमारे बीच इस बखूबी नगीने की तरह हम प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त कर पा रहे हैं। और हमारे पास इसी तरीके से बहुत बड़े हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो भी हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं, अपने मैसेज करके हमें एक हौसला अफजाई करते हैं। तो ये हमारे पास अमर रमेश जी का भी मैसेज आया है, जिन्होंने टेलर मास्टर किशन लाल खत्री, अमर रमेश कुमार, जफर सादिक और शंकर गुल, इनको हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। गुरमीत सिंह जी ने हमें साउथ एक्सटेंशन से मैसेज करके भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हमें तुलसी मस्कीन जी ने गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हमें मैसेज किया है और सबके जवाब एकदम सही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धर्मेंद्र छिप्पा जी ने भी हमें मैसेज किया है, कपिल और पूजा परिहार जी ने, और उसी तरह से निसार अली और नौशाद सलमानी टेलीवाना उत्तराखंड से, सुदर्शन मुखी जी, अनीता सिमरन हमें शांतिनगर सोनीपत से मैसेज कर रही हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, गुड आफ्टरनून। और इसी तरीके से हमें मैसेज करते रहिए। हरजिंदर सिंह छिंदा जी ने हमें मैसेज किया है, जसवीर जस्सी सीता गीता गांव नथाना पंजाब से, क्या बात है। और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम में और बताइए कि आपको और क्या क्या हमें हम सुधार कर सकते हैं। वैसे तो आप बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसी तरह से जुड़े रहिए और इस कार्यक्रम का मजा लेते रहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले इस नगमे के साथ।

जी हाँ, जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली इंद्रप्रस्थ चैनल पर रैना तंवर के साथ आपके अपने कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज है हमारे कलाकार राजेंद्र कुमार की यादों के साथ। जी हाँ, राजेंद्र कुमार जी का फिल्मी सफर शुरू हुआ मदर इंडिया से, लेकिन असली स्टारडम मिला 1960 के दशक में, जब उनकी एक के बाद एक फिल्में लगातार सिल्वर जुलवी बनाने लगी। जी हाँ, लगातार सिनेमा घरों में 25 हफ्तों तक चलती थी, तभी तो सिल्वर जुबली के नाम से ये जाने जाने लगे। हालांकि उनका असली नाम राजेंद्र कुमार तुली था, लेकिन कहते हैं ना, कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करे सलाम, बस यही उनके जीवन की असली है पहचान। और हम गुरमीत जी से कहना चाहेंगे कि हमने आपका मैसेज शामिल किया है, तो आप हमारा ये मेरा प्रेम पत्र, मतलब आपके इतने अच्छे जो पत्र हम पढ़ रहे हैं, आपका हम मैसेज ले चुके हैं, तो इसलिए नाराज बिल्कुल ना हुए। और इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, तुलसी मस्कीन जी का भी आया है और आर कुमार जी का मैसेज आया है, वर्डिंग खेड़ा पंजाब, मिंटू पिंकी सभी, आरती अरोड़ा और धर्मेंद्र छिपा जी का हम बता चुके हैं। उसी तरीके से हमारे पास मसरूर हसन जी का सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम, अदीम परिवार वाले सभी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। संदीप मक्कर जी ने हमें, ज्योति मक्कर जी, मन्नत मक्कर, भारत और शाहनी सभी ने हमें मैसेज किया है। और इस तरीके से हमें आप अपना प्रेम भेजते रहें, हम आपका जितना समय होगा, जितना हमसे होगा, हम सभी के मैसेज शामिल करेंगे, तो नाराज बिल्कुल मत होइएगा। अगला नगमा, हम बढ़ते हैं इस अगले नगमे की, और अभी आपने जो सुना था वो मोहम्मद रफी की आवाज संगम फिल्म का ये मेरा प्रेम पत्र था, और अगला ये जो नगमा है वो क्या है, आप सुनिए रफी जी की आवाज का।

देखा जी, पत्र भी दे दिया, अब इजहार हाल भी कर दिया। कितने सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि पिछले कार्यक्रम में मैंने जो पेश किया था वो था कुमार गौरव जी के बारे में, और आज मौका मिला है उन्हीं के पिता, और आज मजा आ रहा है कार्यक्रम में जुड़े रहने का। और पिछली जो याद थी, जो गीत थे, उनको सुनकर एक श्रोता ने एक मैसेज किया था जिन्हें मैं शामिल नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मैं करना चाहूंगी कि उन्होंने गीत सुनकर अपनी संवेदनाएं, अपने दिल की भावनाएं हम तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने एक श्रोता थे फारूक अली खान जी, जिन्होंने लिखा ये गीत सुनकर उन्हें बेटे की याद आ गई जो विदेश में है। देखिए, जो विदेश में है, अपने बच्चे उनके दूर हैं, और उनसे मैं यही कहूंगी कि अपने पिता को रोज मैसेज करें, उनसे बात करें, उनका दिल रखें। और आजकल तो बहुत कुछ आसान है, हम बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं आसानी से। वहीं अनिल मोहन जी ने भी हमें एक फिल्म से जुड़ी एक याद को बताया कि उस समय कैसेट का जमाना था और उनकी कजन की शादी में उन्होंने सारे गीत वही उसी फिल्म के उसी कलाकार के बजाए थे, और उन्होंने अपने ऊपर ये पूरी शादी का समारोह बस उसी फिल्म के गीत प्ले कर किया था। क्या बात है। और हमारे पास इसी तरह के सुधांकर यादव जी का मैसेज आया, सभी के नाम हम नहीं ले पाते हैं तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। स्वर्ण सिंह जी ने हमें भेजा है मैसेज, और इसी तरह इब्राहिम सिंह जी ने हमें भेजा है, संजय ढिंगिया जी ने हमें भेजा है मैसेज, गुरमीत सिंह जी ने हमें मैसेज कर दिया है, अनिल मोहन जी ने बहुत बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद कमर जी ने हमें मैसेज किया है, और मस्किन दादा जी ने हमें मैसेज किया है, और उन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से तुलसी मस्किन जी ने हमें मैसेज किए हैं, इशाक मोहम्मद जी ने छत्तीसगढ़ से हमें, मोहम्मद इशाक जी ने मैसेज किया है, और पीएस नावस्कर जी ने हमें मैसेज किया है, और इसी तरीके से हमारे पास महाराष्ट्र से इन्होंने मैसेज किया है, नारायण सोपान, आशीष, निर्मला, विशाल, पीएस नाहस्कर, और प्रकाश वर्मा जी का, प्रिंस वर्मा, निखिल यशस्वी वर्मा जी का मैसेज आया है, और इसी तरीके से हाँ, हम सभी को लेना चाह रहे हैं एक ही कलाकार के इसमें, मोहम्मद कमर जी ने हमें मैसेज किया, और वो कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन्हें कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और इसी तरीके से हमें मैसेज करते रहिएगा। स्वर्ण सिंह जी ने भी हमें मैसेज किया है, रोजी डे कास्ट्रो ने हमें मैसेज किया है, पर्ल और विलिस और जॉन हमें मैसेज कर रहे हैं, जॉन साहब भी, और इस तरीके से उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सभी का मैसेज ले, तो इसलिए बुरा ना माने। और हम अब बात कर रहे हैं राजेंद्र साहब जी की, जो कि उन्होंने कहते हैं ना कि भारतीय सिनेमा में एक बेहतरीन योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1969 में पद्मश्री पर सम्मानित किया गया था। कैंसर बीमारी शिकार होने के कारण 12 जुलाई 1999 को इस महान अभिनेता का निधन हो गया। 1950 में फिल्म जोगन से एक छोटी सी भूमिका से शुरुआत करने वाले उस महान अभिनेता ने आज बड़े पर्दे पर जो कर दिखाया, वो हम सबके दिलों में अपनी छाप छोड़ दी, उनको हम शत शत नमन करते हैं। तो सुनते हैं ये वाला नगमा।

तो भाई मुझे यानी रैना तंवर को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और नए अभिनेता की यादों के साथ। बस याद रखिए, कुछ करो ऐसा जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कान और आपको दे सुकून। नेक और अच्छे नागरिक बने। सुनते रहे आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर, और समय की स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय होने चला है 3 बजे और अब हम सुनेंगे।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिज पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मुदम्मर से खबरें सुनिए। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू हो गया है। अपोजिशन की हंगामा आरई के तनाजर में दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई बार मुलतवी करना पड़ी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को मुफीद बनाए जाने पर जोर दिया है और कहा है कि इससे मुल्क की बहबूद की राह हमवार होगी। सुप्रीम कोर्ट में उन दरखास्तों की समाअत होने वाली है जिनमें राम मंदिर चढ़ावे में खुद बुर्द किए जाने के केस की तहकीकात की अपील की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की अपनी हम मनसब के साथ वर्फ सतह की बातचीत की और आमनाए हुरमुस के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू हो गया है। लोकसभा की कार्रवाई जब दिन में 11 बजे शुरू हुई तो ऐवान के उन 6 साबिक अरकान को खिराज अकीदत पेश किया गया जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। इनमें एन भास्कर राव, ओमवती देवी, सुधांशु सील, मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद्र खंडोरी, केपी धर्मपालन और प्यारे लाल शंखवार शामिल हैं। ऐवान में कतर के अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल सानी को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा आल सानी ने भारत कतर ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा किया था। जनाब बिरला ने कहा कि कतर के अमीर के वालिद 18 साल तक इस ओहदे पर फायज रहे और जदीद कतर की बुनियाद रखी। स्पीकर मौसूफ ने जब सवालों के वक्फे की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अपोजिशन अकार ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन पर जोर दिया कि वह ऐवान का कामकाज चलाने में ताउन करें और ऐवान का वकार बरकरार रखें, लेकिन अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा और इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई कई बार मुलतवी करना पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्रवाई नए मुंतखब और दोबारा मुंतखब किए गए अरकान की हलफबरदारी के साथ शुरू हुई। बाद में ऐवान के उन साबिक अरकान को खिराज अकीदत पेश किया गया जिनका पिछले इजलास के बाद इंतकाल हुआ है। अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने का मामला उठाने की कोशिश की, अलबत्ता शोरगुल के तनाजर में सदनशी को कार्रवाई मुलतवी करना पड़ी। वज़ीर आज़म ने मोदी ने कहा है कि खा मानसून हो या मानसून इजलास, अगर ये दोनों सरगर्म रहते हैं तो ये इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने से कबल

0: मुकेश की आवाज में नौमा था प्यार का सागर फिल्म से। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद का ये शुमारा यही खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है प्रोग्राम कहकशा। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे गजल फिल्म की कहानी और नगमे। कहानी को तरतीब दिया है जनाब मसूद अल्तमश ने।
1: घर

याद आ रहा चुम्बन के पास एजाज साहब को बुलाती है और सब लड़कियां खूब बुरा भला कहती हैं। जोश में आकर नाज चुम्बन के बाहर आ जाती है और एजाज उसको देखकर बहुत मुतासर होते हैं। एजाज जल्दबाजी में पानी से भरे हौज में गिर जाते हैं और

20 कदम पीछे हटकर गोली चलाएंगे और जो नौजवान बच जाएगा उससे नाजारा की शादी कर दी जाएगी। एजाज फौरन ये शर्त कबूल कर लेता है मगर अख्तर नवाब आनाकानी करते हैं। नवाब साहब गोली चलाने के लिए तैयार होते हैं, वो एक दो तीन कहते हैं तभी अख्तर नवाब उनको रोक देते हैं और इस मुकाबले से अलग हो जाते हैं। नवाब साहब एजाज की बहादुरी की तारीफ करते हैं और नाजारा से उसकी शादी की मंजूरी दे देते हैं। घर जाकर एजाज फौरन टेलीफोन करके नाज को यह खबर सुनाता है और टेलीफोन पर ही उस गजल को सुनाने की फरमाइश करता है मगर नाज कुछ बोल नहीं पाती। एजाज अपनी कसम दिलाते हैं तब नाज टेलीफोन रख देती है और एजाज के ख्यालों में खो जाती है। हुजरा उरूसी में नाजारा मुंतजिर बैठी है और दूल्हा की शक्ल में एजाज उसके करीब आकर कहता है कि वही गजल एक बार फिर सुना दो। नाज बोलने की कोशिश कर रही है मगर अल्फाज उसके गले में फंस कर रह जाते हैं। एजाज उसको गूंगा समझकर हुजरा उरूसी छोड़कर चला जाता है। ख्वाब से घबरा कर नाज बेचैन हो जाती है और दिल में सोचती है कि गूंगी बनकर एजाज की दुल्हन बनने से बेहतर है मर जाना। अगले रोज एजाज मंगनी की रस्म के तौर पर एक तोहफा लाकर नवाब साहब से कहता है कि वो ये कबूल फरमाए। नवाब साहब खुश होकर खुद ही नाज के कमरे में तोहफा लेकर जाते हैं और उसे खुशी खुशी तोहफा दिखाते हैं। नाज एक पर्चा लिखा हुआ अपने बाप नवाब साहब को देती है। इस पर्चे में उसके बचपन से इस तरह के दौरे पड़ने की बात कही थी। नाज ने आगे लिखा था कि वो चीफ कर इस वक्त एजाज की जिंदगी की भीख मांगना चाहती है। नवाब साहब उसको गोली मारने जा रहे थे और तभी उसकी आवाज उसके हलक में अटक गई और अब वो गूंगी बनकर एजाज की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती और वो एजाज के लिए मर चुकी है। नवाब साहब एजाज को बताते हैं कि नाज उससे शादी करना नहीं चाहती। एजाज को बहुत दुख होता है और हैरानी भी। नवाब साहब बेचैनी के आलम में बाहर चले जाते हैं और एजाज नाज के कमरे में ऊपर पहुंच जाता है मगर राह में ही नाज का पर्चा उसको दिया जाता है जिसमें शादी करने से माजरत की बात लिखी हुई है। एजाज आगे बढ़कर नाज के कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाता है और नाज से कहता है कि सिर्फ अपनी जुबान से ये बता दीजिए कि इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों दी जा रही है। वो उसी आवाज में ये बात सुनना चाहता है जिस आवाज में पहली बार उसने गजल सुनी थी मगर नाज कुछ नहीं बोल पाती और एजाज वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अख्तर नवाब वहां आते हैं और चलते चलते नाज के कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वहां अख्तर नवाब को नाज का लिखा हुआ वो पर्चा मिलता है जो एजाज के हाथ से छूटकर वहीं गिर गया था। ये लटकाए एजाज घर में दाखिल होता है और सबको बताता है कि अब ये शादी नहीं होगी क्योंकि नवाबजादी नाजारा उससे शादी करना नहीं चाहती। सब परेशान हो जाते हैं। कौशल जाकर डॉक्टर महमूद से मिलती है और इस शादी से इनकार की वजह मालूम करना चाहती है। वहां धोखे से डॉक्टर महमूद के मुंह से ये बात निकल जाती है कि नाज गूंगी हो चुकी है इसलिए शादी से इनकार कर रही है। तब नवाब साहब बताते हैं कि उन्होंने नाज के बचपन में एक बार उसकी माँ से बहुत चीख कर गुस्से में बात की थी और नाज को भी डांट दिया था। तब उसकी माँ की आवाज बंद हुई थी। डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है सिर्फ ये कि किसी हादसे की वजह से नाज की आवाज दोबारा अपने आप खुल सकती है। नवाब साहब अख्तर नवाब को घर बुलाते हैं और बंदूक हाथों में लेकर अख्तर नवाब की तरफ से दिए गए शादी के पैगाम को इस शर्त पर मंजूर कर लेते हैं कि उनकी अगली बात सुनने के बाद अख्तर नवाब ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो वो अख्तर नवाब को

लता मंगेशकर की आवाज में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से ये नगमा भी आपने सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम को सुनिए, फिल्म है अंधा कानून।

महेंद्र कपूर, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा था संगम फिल्म से। अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में प्रोग्राम की अगली पेशकश। ये नगमा हमने लिया है शरीफ बदमाश फिल्म से।

अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो को अभी आप सुन रहे थे सात रंग के सपने फिल्म में। अब सुनिए आशा भोसले को, फिल्म का नाम है खुशबू।

मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये नगमा आपने आक्रमण फिल्म से सुना। हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश है आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम है खिलाड़ी।

खिलाड़ी फिल्म का नगमा भी अब सुन रहे थे आशा भोसले और कुमार सानू का गाया हुआ। इसके साथ ही फिल्मी नगमों का आज का ये प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।

आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को मुफीद बनाए जाने पर जोर दिया और कहा कि इससे मुल्क की बहबूद की रामवार होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज चिशिनाव में मालडोवा के अपने मनसब के साथ वफूद के सतह की बातचीत की। ईरान और अमरीका ने लगातार नवे दिन एक दूसरे पर हमले किए हैं। जमहूरिया कांगो में इबोला बीमारी से कम अज कम 930 अफराद की मौत हो चुकी है और भारतीय महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू हो गया। लोकसभा की कार्रवाई जब दिन में 11 बजे शुरू हुई तो ऐवान के उन 6 साबिक अरकान को खिराज अकीदत पेश किया जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। इनमें एन भास्कर राव, ओमवती देवी, सुधांशु सैल, मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद्र खंडूरी, के पी धन्नापलान और प्यारे लाल सोखवा शामिल हैं। ऐवान में कतर के अमीर के वालिद शेख हम्माद बिन खलीफा सानी को भी खराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि शेख हम्माद बिन खलीफा सानी ने भारत कतर ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा किया था। जनाब बिरला ने कहा कतर के अमीर के वालिद 18 साल तक इस ओहदे पर फायज रहे और जदीद कतर की बुनियाद रखी। उन्हें राज्यसभा की कार्रवाई नए मुंतखब और दोबारा मुंतखब किए गए अरकान की अलबरदारी का साथ शुरू हुई। बाद में ऐवान के उन साबिक अरकान को खिराज अकीदत पेश किया जिनका पिछले इजलास के बाद इंतकाल हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ख्वाह मानसून हो या मानसून इजलास, अगर ये दोनों सरगर्म रहते हैं तो इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने से कबल मीडिया से बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अब दोनों ही समारावर होते हैं तो इसके नतीजे में मुल्क की बहबूद और सभी जानदारों की भलाई की रामवार हो जाती है। वजीर आजम ने कहा कि एक मजबूत पैगाम है कि मुल्क के नौजवानों की सलाहियत और उनकी उमंगें इतनी ही लामहदूद है जितना खुद खला है। जनाब मोदी ने कहा कि सिर्फ एक महीने के अरसे में मुल्क ने कई संगी मील और कई कामयाबी हासिल की है जिससे हर शहरी फख्र से सरशार हो जाता है। वजीर आजम ने कहा ख्वाह यह कौमी मंजरनामा हो, बैन अलावा प्लेटफार्म हो और हत्ता के खला में भी भारत के लिए वाकई बड़े फख्र के लम्हात रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मुख्तलिफ खित्तों में पूरी दुनिया को लगातार जंग के खतरे से तशवीश लाहक है। उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया महाजराई से भारत जैसे मुल्कों के लिए बड़े बहरान की कैफियत पैदा हो गई है जो तवानाई के लिए दूसरे मुल्कों पर इन्हसार करते हैं। वजीर आजम ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कीमियावी खाद और केमिकल के ताल्लुक से कई तरह के रुकावटें और बहरान पैदा हुए। जनाब मोदी ने कहा कि इसके बावजूद भारत ने दुनिया में सबसे तेज रफ्तार बड़ी मईशत के तौर पर उभरते हुए 7.7% की शरह तरक्की बरकरार रखी है। सुप्रीम जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वाल्डोवा के

हैं, भारत और मालडोवा ने भारत बाहमी मफाद के मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। इसमें ज़राअत, लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा, सेहत, दवा साजी, काबिल तस्दीक तवानाई, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचा, मौसमी ज़हानत और इख्तरा शामिल है। मालडोवा के अपने मनसब मियां साहू के साथ दो तरफा बातचीत के बाद मीडिया से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दोनों मुल्कों ने हालिया बरसों में की गई पेशरफ का जायजा लिया और उन शोबों में ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने से इतफाक किया जो दोनों मुल्कों के आवाम की तरक्की, खुशहाली, बहबूद के लिए अहमियत के हामिल है। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इकतसादी इश्तराक भारत मालडोवा साझेदारी का अहम सुतून है। इससे कबल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहल में मालडोवा में चिशिनाव हवाई अड्डे पहुंची, जहां मालडोवा के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा माही पोस्वई ने गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया। चिशिनाव में सदारती महल में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और मालडोवा के सदर मियां सांदू ने पुरतबाक अंदाज से उनका खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया मालडोवा की पार्लियामेंट के सदर आइगोर ग्रोसो से भी मुलाकात करेंगे। मालडोवा भारत पार्लियामेंट दोस्ती ग्रुप के अरकान से बातचीत भी करेंगी। इसके अलावा एक कारोबारी फोरम से खिताब करेंगे, भारतीय बिरादरी के अरकान से मिलेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का मालडोवा का पहला दौरा है। सदर जमहूरिया तीन मुल्कों मालडोवा, शुमाली मकदूनिया, रोमानिया के सरकारी दौरे पर है। खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जमहूरिया कांगो में इबोला बीमारी से कम 930 अफराद की मौत हो चुकी है। वहां की वजारत सेहत ने बताया कि हफ्ते के रोज तक 2344 मुसलिका केसों की इत्तला मिली थी। पिछले 24 घंटे के दौरान ही इस बीमारी से 37 अफराद की मौत हुई है, जो बीमारी शुरू होने के बाद से एक ही दिन में होने वाली सबसे ज्यादा अमवात है। ईरान और अमरीका ने लगातार 90 दिन एक दूसरे पर हमले किए हैं। कलीदी अहमियत के आमिल आबनाए हुरमुस के मामले पर कशीदगी में इजाफा हो रहा है। अमरीका ने जुनूब मगरबी ईरान में हॉर्मुज कस्बे को निशाना बनाया, जबकि उर्दन, कुवैत और बहरीन में फिर से ईरान के हमले होने की इत्तला मिली है। ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी ने एक मकामी एहलकार के हवाले से बताया कि अमरीकी हमले की वजह से मुशहर सूबे में दाश्ती काउंटी के इंतजामी मरकज हॉर्मुज के कुछ हिस्सों में बिजली की सप्लाई मुकता हो गई। इत्तलात के मुताबिक जिन इलाकों को निशाना बनाया गया उन्हें पासदारान इंकलाब की बहरी फोर्सेज से वाबस्ता फौजी ठिकाने शामिल हैं। उधर उर्दून के सरकारी नशरियाती इदारे ने कहा है कि मुल्क के फजाई दिफाई निजाम के जरिए ईरान से दाखिल गए तीन मिजाइलों को बीच में ही मार गिराया गया, जबकि चौथा मिजाइल जनूबी उर्दून के दूरदराज के इलाके में आकर गिरा। अलबत्त जानो माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मीडिया की इत्तलात के मुताबिक ये मिजाइल जनूबी उर्दून के साहिली शहर अकाबा में अमरीकी फौज के तैयारों को निशाना बनाकर दागे गए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 58वें बैन अल-अक़वामी केमिस्ट्री ओलंपियाड में सोने के चार तमगे जीतने में भारतीय टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा है कि इस पुरवकार आलमी मुकाबले में भारत की बेहतरीन कारकर्दगी थी। उन्होंने कहा कि साइंस के तहत भारतीय टीम की कारकर्दगी, लगन, सलाहियत और जोश जज्बे से पूरा मुल्क का नाम फख्र से बुलंद हुआ है। जनाब मोदी ने लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में मुनक़िदा 37वें बैन अल-अक़वामी बायोलॉजी ओलंपियाड में सोने के तमगे समेत कई तमगे जीतने पर भी भारतीय टीम के सभी अरकान को मुबारकबाद दी है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन स्टेल्क से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब यादव ने कहा कि मुलाकात के दौरान आबोहवा की तब्दीली की रोकथाम के तरीकाकार को अपनाने, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, माहौलियात से मुतालिक माहौलियात, आलमी सतह पर जायजा, टेक्नोलॉजी की मसावियाना मुंतकली जैसे मौजूद पर तवज्जो मरकूज की गई। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बारिश से वाबस्ता वाकयात में दो बच्चों समेत कम अज कम 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। इमदादी एहलकारों के मुताबिक कल रात खैबर जिले के लांडी कोटल इलाके में अचानक सैलाब आने से एक मुसाफिर वैगन पानी में बह गई। इस वाकये में 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि 9 जख्मी हुए। इधर मरदान जिले में एक मकान पर बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई अफराद जख्मी हुए। बिजली गिरने से मकान की छत गिर गई थी। भारतीय महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश

0: और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने आंध्र प्रदेश, लद्दाख, शुमाली कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशगोई भी की है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को मुफीद बनाए जाने पर जोर दिया और कहा कि इससे मुल्क की बहबूद की रामवार होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज चिशुनाव में मालडोवा के अपने हमनसब के साथ वफूद की सतह की बातचीत की। ईरान और अमरीका ने लगातार 90 दिन एक दूसरे पर हमले किए हैं। जमहूरिया कांगो में इबोला बीमारी से कम अज कम 930 अफराद की मौत हो चुकी है। और भारतीय महकमा मौसमियात में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरिया। शाम के 5 बजने को है दूसरी मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। रात 9:15 पर उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। रात 9:15 पर उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिंदी ए पंजाबी सेवा है। शाम दे 5 बजे ने हुन साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत च सब तो पहला समात फरमाओ सराय की प्रोग्राम झोंक माहिती।

सरायकी सुनण वाले सारे भेण भीरावां को नमस्कार। अज ही कार्यक्रम विच तुसा सुन सो सब तो पहले गीता कटारिया जी कोलो राष्ट्र कवि भूषण दे बारे विच, ते हुंदे बाद सरायकी गीत संगीत दा कार्यक्रम थी सी। आओ सब कोलो पहले सुनते हां राष्ट्र कवि भूषण ते वार्ताकार हैं गीता कटारिया। कवि भूषण जी दा जन्म 1613 ईस्वी विच उत्तर प्रदेश दे तिकवामपुर जिले विच थिया है। इना दे पिता जी दा नां पंडित रत्नाकर त्रिपाठी है। हिंदी दे प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी ते मती राम हिना दे भिरा हन। चित्रकूट दे राजा रुद्रदेव ने हिना दी काव्य प्रतिभा कोलो खुश थी के हिना को कवि भूषण दी उपाधि दित्ती है। छत्रपति महाराज शिवाजी ते बुंदेला दे राजा छत्रसाल हिना दे आश्रयदाता राजा हन। 1714 ईस्वी विच भूषण जी का स्वर्गवास थी गई। जडन होना ने काव्य रचना करन शुरू किती है। हू वेले जितने कवि हन ओ शिंगार रस्ते कविता करेंदे हन, पर भूषण जी अपनी ओजस्वी वाणी दे नाल राष्ट्र विच राष्ट्रीयता दा सिंहनाद करेंदे हन ते लोगां दे अंदर देश प्रेम दी भावना जगेंदे हन। घोर विलासिता दे युग विच लोगां दे मन दे अंदर सुती हुई राष्ट्रीयता दी भावना को जगा के वीरता दे भाव को भरेंदे हन। ही वास्ते ही हुना को बहु प्रशंसा मिलती है ते ही वास्ते हुना को राष्ट्र कवि आख्या वेंदे कि भूषण जी दा काज भी थी गई, लेकिन वो हाली कोई काम काज न करेंदे हन। हुना दे वड्डे भीरा दी कमाई दे नाल ही घर दा खर्चा चलदा पई। एक जवार रोटी खांदे हुए भूषण जी ने अपनी भरजाई को लून मंगया ते हुना दी भरजाई ने ताना मरेंदे वे आख्या कि कम कार करके जेडे तुसा लून दे बोरियां भर के रखे न, मैं हुना विचो लून आन देंदियां। ए गाल भूषण जी दे दिल च लगी ते ओ घरों निकल गए। सब कोलो पहले ओ दिल्ली विच औरंगजेब दे दरबार विच गए। हुंदे बाद ओ चित्रकूट दे राजा रुद्रदेव दे दरबार गए, जिथे हुना को रचनावां सुन के

राजा इतने खुश थे कि हुना को कवि भूषण दी उपाधि दिती गई। हुन दे बाद ये शिवाजी महाराज जी दे दरबार विच पहुंचे। वो ते आखिर विच महाराजा छत्रसाल दे दरबार विच हुना काम किता। आख्या वेंदे कि शिवाजी महाराज और महाराजा छत्रसाल दे बहु वड्डे प्रशंसक हन। भूषण जी इवें ही किसी की प्रशंसा कहना करेंदे हन, लेकिन शिवाजी महाराज ते महाराजा छत्रसाल को दिल तो ही बहु सम्मान देंदे हन। हुना ने एक जगह ते लिखे कि सब राजा और राव राजा एक मन में ना ल्याऊं अब साहू को सराहू के सराहू छत्रसाल को। इना मतलब है कि कवि राजभूषण अखेंदन कि मैं कई बे राजा को अपने दिल विच जगह नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ता सिर्फ शिवाजी महाराज ते छत्रसाल महाराज जी दी ही सराहना करेंदा। हुना को ही योग्य समझदा और हुना दा ही गुणगान गासा। जड्डा ने शिवाजी महाराज दे आश्रय विच हन ता इन्हां ने शिवराज भूषण ते शिवा बावनी ग्रंथ लिखे हन, ते छत्रसाल दे महाराज जी दे आश्रय विच छत्रसाल दशक ग्रंथ लिखा है। इन्हां ग्रंथ विच शिवाजी महाराज ते छत्रसाल महाराज जी दी वीरता दा बहु सोहणे तरीके दे नाल उन्हां ने उन्हां दा विख्यान कीते। भूषण जी ने अपने काव्य दी रचना ब्रिज भाषा विच कीती है, जिंदे विच अरबी फारसी प्राकृत बुंदेलखंडी ते खड़ी बोली दे शब्दां दा प्रयोग कीता है। हिना दे काव्य विच औज पूर्ण वर्णन शैली है, जिंदे विच वीर रस है। ही वास्ते हिना दी शैली को वीर रस दी औज पूर्ण शैली आख्या वेंदे। भूषण जी ने शिंगार रस विच भी कुछ कविता लिखे हन, पर हुना दा चाव वीर रस विच ज्यादा रिगदे। वीर रस दे नाल नाल रोद्र भयानक विभत्स रस दी भी हुना ने रचनावां लिखे हन। हुना दे छंद रस विच अनुकूल हन, दोहा कवित सवैया छपए हिना दे छंद हन। हिना दे काव्य विच ज्यादातर सारे अलंकार मिलदे, पर अर्थ अलंकार दी जगह ते शब्द अलंकार ज्यादा देखण को मिलदे। जदों शिवाजी महाराज अपनी सेना लश्कर घिन के चलदे हन तां ओह क्या क्या थींदा है। सजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरे जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नद विहद नागारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक के गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। तारा सुतरनी धूरी धारा में लगत जिमी। ही कविता विच कवि भूषण जी ने वीर रस दर्शाए। ओ अखेंदन कि शिवाजी महाराज जेड़े वेले अपनी सजी हुई चतुरंगणी सेना यानी रथ घोड़े हाथी ते पैदल सैनिकां दे नाल सजे हुए जंग जीतन वास्ते मैदान विच निकलदे हन, तां कवि भूषण अखेंदे कि नगाड़ियां दी आवाज इतनी तेज है कि हाथियां दे चलण दे नाल धरती हिलदी है और नदियां भी मद विच आ वेंदियां। शिवाजी दी विशाल सेना चारो तरफ फैल वेंदी है ते हुंदे करके गली गली विच खलबली मच वेंदी है। हाथियां दे चलण नाल धूल उड़दी है, पहाड़ टुट टुट के लहंदे हन। इतनी धूल उड़न दे कारण आसमान विच चमकदा हुआ सूरज भी इवें लगदा है जिवें तारा होवे। समुद्र इवें हिलण लगदा है जिवें थाली विच रख्या पारा हिलण लगदे, उवें समुद्र हिलण लगदा है। बाने फहराने घराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के। नगर बहराने ग्राम नगर पुराने सुनी, बाजत निशाने सी विराज जु नरेस के। हाथी ने के होदा उक साने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लट केस के। दल के दरारे हुते कमठ करारे फुटे, केस के से पात बिगराने फन सेस के। इथा कवि भूषण जी अखे दिन कि झंडे लहरांदे बयान हाथियां दे गले विच बद्दी घंटियां आवाज करेंदे बयान। किसी भी देश दे राजा शिवाजी दे अगू रुक नहीं सकदे हन। ए शिवाजी दे नगाड़ियां दी आवाज सुन के पहाड़ भी ढहंदे वेंदे हन। हाथियां दे उत्ते जेड़ी बावण दी जगह हुंदी है ओ इतना हिलदी डुलदी पई है जिवें घड़ा होवे। शिवाजी दी सेना को देख के दुश्मन दी सेना ते त्रेमता इवें बजदे पए हन, ते उन्हां दे वाल खुल खुल के लट्टां इवें उड़दे पए हन जिवें आसमान विच भंवरे उड़दे पे होवन। सेना दे चलन दी आवाज नाल दरारा थी गयन। अखेंदन कि धरती सेस नाग दे फन ते टिकी हुई है।
ਤੇ ਉਹ ਸੇਸ ਨਾਗ ਦੇ ਫਨ ਵੀ

ਹੌਕੇ ਲੈ ਲੈ ਰੋਂਦੇ ਵੀਰੇ, ਹੌਕੇ ਲੈ ਲੈ ਰੋਂਦੇ ਵੀਰੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ

0: ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਮਾਲ ਹਾਈ ਬੀਟਲ, ਇੱਕ ਭੂੰਡੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭੂੰਡੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਸੁੰਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਤਾਂ ਛੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਝਾੜ ਲਓ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨਵੀ। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कर कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे 5वीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनोव में स्टेफन सेल मारी सी सेफेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रपति नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के साथ काम करने की बड़ी संभावना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनोव में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक है, क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की ये यात्रा पहली राजकीय यात्रा है। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक ब्रिक्स में आर्थिक विकास को समर्थन देने वाले स्थिर, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित ढांचे को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नव निर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम भी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:05 हो चुके हैं। आइए सुन, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम। वंदना बहन
1: जी,
0: हम हाजिर हैं बहुत सारी जानकारियों के साथ, योजना के बारे में बताएंगे और मनोरंजन भी कराएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरा गांव मेरा गौरव योजना के बारे में।
1: बिल्कुल।
0: इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि वैज्ञानिकों को गांव से जोड़ना। इसके तहत वैज्ञानिक किसानों को तकनीकी जानकारी और उन्नत कृषि विधियों से सीधे उनके खेत में प्रदान करते हैं ताकि पैदावार बढ़ सके।
1: बिल्कुल। और उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सीधा संवाद स्थापित करके जो किसानों के बीच जो फासले और वैज्ञानिकों के बीच में जो फासले होते हैं उनको कम करना, सीधे किसानों से बातचीत करना है।
0: बिल्कुल। वंदना बहन, ये कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से चलाया जाता है और कृषि अनुसंधान के नए निष्कर्षों और तकनीकों को प्रयोगशालाओं से निकालकर सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाता है।
1: बिल्कुल। और कृषि के क्षेत्र में होने वाले शोध, उन्नत किस्मों के बीज, आधुनिक कृषि उपकरणों और उर्वरक प्रबंधन तकनीकों को सीधे किसानों से खेतों तक पहुंचाना है।
0: जी वंदना बहन, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है, किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरकों के उपयोग और आधुनिक खेतों के तौर तरीकों के बारे में जागरूक किया जाता है।
1: जी हाँ, मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में तो बताया ही जाता है और साथ ही साथ उनको बीमा और PM किसान योजनाओं के बारे में, जो योजनाएं किस सरकार ने चला रखी है हमारे किसान भाइयों को, सब्सिडी की, बैंक सब्सिडी के बारे में भी जागरूक करना।
0: बिल्कुल
1: है।
0: और वैज्ञानिक जो टीमें होती हैं गांवों को गोद लेती हैं और किसानों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करती है।
1: जी हाँ, समस्याओं के साथ किसानों को खेतों में आने वाले रोग, कीटों और मिट्टी की समस्याओं की पहचान करवा के वैज्ञानिक उसका समाधान भी निकालते हैं।
0: बिल्कुल। तो इतनी सारी बातें होती हैं और तभी तो मेरा गांव मेरा गौरव कहलाता है।
1: जी बिल्कुल, हमारे किसान भाई इसमें पूरा सहयोग करते हैं और वैज्ञानिकों से अपनी समस्याओं का सीधा संवाद भी करते हैं, बातचीत करते हैं और उसका हल निकालने के बाद उसका प्रयोग भी करते हैं।
0: बिल्कुल। तो आइए हम अब आपको जानकारी सुनवाते हैं मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के उपाय। डॉक्टर मोहन सिंह, मृदा वैज्ञानिक, KVK गौतम बुद्ध नगर से। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ कैसे बढ़ाएं और कार्बनिक पदार्थ का फसलों के उत्पादन में क्या महत्व है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहन सिंह मीना जी, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू सर।
2: और डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये कार्बनिक पदार्थ क्या है।
3: ये कार्बन पदार्थ जो होता है एक कसर भूमि की जान होती है। जिस मिट्टी के अंदर कार्बन पदार्थ कम होता है तो वो मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है, फर्टाइल सोल नहीं कहा जाता और उत्पादन उसके अंदर बहुत कम होता है।
2: यानी जो फसलों के उत्पादन में इनका बहुत बड़ा योगदान है।
3: जी जी।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसे कार्बनिक पदार्थ पहले तो हमारे खेतों में बहुत हुआ करते थे।
3: जी जी।
2: लेकिन इसको बढ़ाने की क्यों आवश्यकता पड़ी?
3: देखिए सर, क्या होता है, पहले जो कार्बन पदार्थ इसलिए बहुत होते थे कि हमारे किसान भाई देसी खाद का प्रयोग करते थे।
2: जी।
3: हरी खाद का प्रयोग करते थे और जैविक खादों का प्रयोग करते थे। अब क्या होता है कि अब रासायनिक खादों का बहुत प्रयोग करते हैं और फसली खेती नहीं करते हैं, मतलब उसमें फसल चक्र प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए कार्बन पदार्थ काफी हमारी मिट्टी के अंदर कम होता जा रहा है और इसी कारण से हमारी भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ रही है और हमारा उत्पादन भी काफी घटता जा रहा है।
2: तो इसका ये कोई मात्रा है कि ये कम से कम कितना होना चाहिए?
3: हाँ, बहुत अच्छा वाला सर। ऐसा देखिए, मिट्टी के अंदर जब हमारे किसान भाई यदि अपने खेती मिट्टी की जांच कराते हैं
2: जी,
3: तो यदि 0.25 से लेकर के 0.45 तक होगा तो वो कम माना जाएगा उसे।
2: जी।
3: और ये मान ले 0.5 से लेकर के 0.75 तक होगा तो हमारा गोरन कार्बन को मीडियम माना जाएगा, उसमें हर फसल हो सकती है। और हमारा 7.5 से एवं होगा तो हमारा उच्च माना जाएगा, मतलब हाई माना जाएगा, इसलिए उसको हम बढ़ा सकते हैं। और ओरन कार्बन को बढ़ाने के लिए काफी उपाय हमारे किसान भाई बता सकते हैं कि भाई ओरन कार्बन हमारे मिट्टी में कैसे बढ़ाया जाए और उसके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए।
2: जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हम मृदा में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाने के लिए उपायों पर बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से उपाय हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं
3: कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाने के लिए मिट्टी में? सबसे पहले तो हमको जो फसल के अवशेष होते हैं, किसान क्या करते हैं कि जो फसल अवशेष होते हैं, जैसे धान की हम पराली की बात करें या गन्ने के पत्ते की बात करें या किसी डंठल की बात करें, अधिकांश किसान भाई खेत में जला देते हैं और जलाने से हमें काफी नुकसान होते हैं। जो हमारे मित्र कीट होते हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है, वो हमारे जल के नष्ट हो जाते हैं, जो भूमि को अंदर अवशेषों को जलाने गलाने में काम करते हैं, वहां मित्र कीट जल जाते हैं। पहली बात तो मेरे किसान भाई से अनुरोध ये है कि जो फसल के अवशेष हैं उनको कभी ना जलाया जाए, खेत में ही उनको पलटा जाए, खेत में सड़ाया गलाया जाए, जिससे कि जीवांश कार्बन हमारी बढ़ोतरी की तरफ रहता है। और जो किसान भाई जीवांश कार्बन बढ़ाने के लिए फसल के अवशेष जैसे गन्ने की पत्ती, धान का पुआल और डंठल आदि को खेत में ही सड़ा दे गला दे, तो हमारा जीवांश कार्बन बढ़ोतरी की तरफ रहता है। अगले पॉइंट ये कह सकते हैं जीवांश कार्बन बढ़ाने के लिए, एक फसल अवशेष की बात हुई, दूसरा पहले किसान भाई हरी खाद का प्रयोग करते थे, जिसमें हरी खाद में ढेंचा, सनई और मूंग लोबिया। अब ऐसा स्तर बदल गया है सर, देखिए कि आप किसान भाई फसल को लगातार करते रहते हैं, वो फसल चक्र प्रयोग नहीं करते और ढेंचा प्रयोग नहीं करते। जैसे हमारे गेहूं कटा था रबी में, किसान भाई यदि ढेंचा बो देते उसमें या सनई बो देते 40 दिन की अवस्था में जो फूल आने से पहले, उसको हम खेत में पलटाई कर दें, तो हमारा जीवांश कार्बन बहुत अच्छा बढ़ेगा, ऑर्गेनिक परसेंट बहुत अच्छा पड़ जाएगा। जिस मिट्टी का ऑर्गेनिक परसेंट 0.25 है, हमने मिट्टी चेक कराया, फिर उसके बाद पलटाई के बाद सारी मिट्टी चेक कराते हैं, तो हमारा पक्का 0.57 तक हमारा ऑर्गेनिक कार्बन पहुंच सकता है केवल ढेंचा और सनई से ही।
2: जी ये तो बात हरी खाद की रही, जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट है और केचुआ खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इसका क्या योग है?
3: देखिए क्या है कि किसान भाई अब हमारे देसी खाद से बहुत अलग होते जा रहे हैं। कोई कहते हैं कि जी पशुपालन कम है, इसको कहां से कोई देसी खाद आएगा, और केचुआ खाद में ये है। वर्मी कम्पोस्ट एक ऐसा कम्पोस्ट है कि जो यार वर्मी होते हैं, वो जो भूमि के जो खाद के अंदर एक इस प्रकार का उसको कूटे कबाड़े गला करके इस प्रकार का बना लेते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं कि उसके नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। मैंने अपना सोयल टेस्ट में लेबोरेटरी टेस्ट किया था वर्मी कम्पोस्ट को, तो उसमें 1.5 से लेकर के 2% तक नाइट्रोजन था और 1.5% फास्फोरस और करीब 1.25 उसके अंदर पोटास और माइक्रोन्यूट्रेंट काफी थे उसके अंदर। तो वर्मी कम्पोस्ट ये है, और देसी खाद जो फार्मी और मैनोर FIM कहते हैं, उसको भी सड़ी हुई खाद बरसात के बाद 6 महीने के बाद जैसे बरसात निकल जाए उसके बाद एकदम खेत में डालते हैं, तो जीवांश कार्बन सर अपने आप ही बढ़ता जाता है। मैं किसान में ये अनुरोध करूंगा कि जीवांश कार्बन को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फसल में आप कम से कम नहीं तो देसी भाषा में बात करें एक टोली पर बीघा अधिक हमारे किसान भाई डाल के चले तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन रबी की फसल में डालें, बरसात के बाद से धान है पवन डाल करके उसमें डालें रबी वाली फसल में जैसे गेहूं में डालें,
2: उसका क्या फायदा?
3: उसका सर ये फायदा है, जैसे भी बरसात हुई आपने देखा होगा बरसात हो रही है
2: जी।
3: अभी हम जुलाई के महीने में डाल देंगे देसी खाद या वर्मी कम्पोस्ट ऑयल के अंदर, तो जो बरसात का जो पानी आ रहा है भयंकर बारिश, आपने देखा अभी बरसात काफी हुई है नेक्स्ट वीक में, तो उस बरसात के पानी से जो हमारा देसी खाद के जो न्यूट्रिएंट है उसके अंदर वो घुल जाएंगे, उसमें सॉल्वेंट हो जाएंगे और जो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा तो ओवरफ्लो पानी होकर के बह करके और उसके साथ हमारे जो
2: पोषक तत्व
3: हैं वो बेहतर असर चले जाएंगे और हमारी मिट्टी को नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमारा जीवांश कार्बन बढ़ नहीं पाएगा और हमारे फसल को मिल नहीं पाएगा।
2: यानी जो हमारी देसी खाद है उसको लगाने का सही समय जो हमारी रबी वाली फसलें हैं
3: सर्दियों में अक्टूबर वाली, जो अक्टूबर में फसल बोते हैं जैसे गेहूं बोते हैं, सरसों बोते हैं, आलू बोते हैं, उसमें लगाया जाए तो वो हमारा पूरे साल के लिए हमारी न्यूट्रिएंट विद्यमान रहे, उसमें हमारा कोई ओवरफ्लो पानी नहीं होता है और टेम्परेचर भी सर नहीं होता है। आपने देखा होगा

0: अधिक टेम्परेचर से भी उसकी जो नाइट्रोजन होती है फर्टिलाइजर में से देसी खाद में से वो बास्पिकल उड़ करके और वायु में चली जाती है जो हमारे पौधों को नहीं मिल पाते। टेम्परेचर 45-46 हो जाता है उससे भी नाइट्रोजन हमारी बास्पिकल हो जाती है और सर्दियों में टेम्परेचर नहीं होता तो हमारे पौधों को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन और सारे पोषक तत्व फास्फोरस पोटास उस खाद से मिल जाती है और हमारे जीवांश कारण बढ़ने की तरफ रहता है।
1: जैसे आपने डॉक्टर साहब जिक्र किया कि किसान भाई खेत को आराम नहीं करने देते, लगातार एक न एक फसल लेते रहते हैं, अगर उसमें फसल चक्र अपनाए कार्बनिक पदार्थ बढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है। एक तो फसल चक्र अपनाए और फसल चक्र सिद्धांत अपनाए।
1: सिद्धांत क्या?
0: सिद्धांत चक्र ये कहते हैं, फसल चक्र ये कहते हैं कि हमने इस समय हमने धान बोया
1: जी,
0: तो अगली बार हम धान के सीजन में धान न बो करके दूसरी फसल जैसे मक्का बोए,
1: कोई दलहनी फसल बोए
0: या दलहनी फसल बोए, ठीक है, फसल चक्र को उसी खेत में आने वाली फसल बदल बदल के बोए। उसे फसल चक्र सिद्धांत कहते हैं कि आज हमने धान बो रखा है
1: जी,
0: अधिक पानी चाहने वाली फसल बो रखी है, तो अगली फसल धान के बाद बोएंगे तो कम पानी चाहने वाली कम खाद चाहने वाली फसल बोनी चाहिए। एक तो ये पॉइंट, दूसरा अधिक जुताई वाली अधिक खाद चाहने वाली फसल बो रखी है तो हम कम जुताई वाली कम खाद चाहने वाली फसल बो, जैसे दलहनी फसल सरसों, इस प्रकार हम फसल बोएंगे तो हमारे जीवांश कार्बन अपने आप ही एवं रहता है। इसको हम बोलते फसल चक्र के सिद्धांत।
1: जैसे आपने दलहनी फसल का
0: जी सर,
1: तो दलहनी फसलों द्वारा किस तरीके से कार्बनिक पदार्थ बढ़ाया जाता है?
0: हाँ, दलहनी फसलों के अंदर नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए स्थिर करने के लिए राजू नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण उपस्थिति वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच करके हमारी जमीन की पल्स ग्रोथ की जड़ों में फिक्सेशन कर देते हैं और उससे हमारा जब नाइट्रोजन बढ़ जाता है तो खेत में हमारा नाइट्रोजन पूर्ति हो जाती है। और दूसरा सर, उसके अंदर नेडू जो होते हैं उसकी जो जड़ होती है और पत्तियां होती है उनको जो हमारे भूमि के अंदर मित्र कीट है वो उनकी पत्तियों को और जड़ को गला सड़ा करके डिकम्बोज कर देते हैं। अपनी पत्तियों को जड़ को गला करके बैक्टीरिया एक ह्यूमस का निर्माण करते हैं, ह्यूमस एज ए ऑर्गेनिक कार्बन। जिस भूमि के अंदर ह्यूमस होगा अच्छा तो ब्लैक कलर की सोल होगी, काले कलर की होगी, कॉटन सोल होगी, तो समझ लो जो ब्लैक कलर की सोल है उसमें हमारे ह्यूमस का अच्छा पर्याप्त मात्रा है। जो ह्यूमस है तो ह्यूमस है जो ऑर्गेनिक कार्बन।
1: तो जैसे बहुत लोग जिक्र करते हैं जैविक खेती प्राकृतिक खेती, क्या इसके द्वारा भी कार्बनिक पदार्थ बढ़ाए जाते
0: हैं? जैविक खेती प्राकृतिक खेती क्या होता है, जीवों के अंश से बनी हुई खाद को जैविक खेती कहते हैं और जैविक खेती जो जीवों के जैसे गोबर है जीवों के अंश से बना हुआ है, ढेंचा है वो जीवों के अंश से बना हुआ है, बर्मी कंपोस्ट जीवों के अंश से बनी खाद जैविक खेती, तो उसके प्रयोग करेंगे उससे जीवांश कार्बन बढ़ेगा हमारा। जैसे प्राकृतिक खेती बात करते हैं, प्राकृतिक खेती में जीवामृत घनीवामृत ये क्या प्राकृतिक अवयवों से बनाए जाते हैं, जैसे देसी गाय का गोबर और गाय का मूत्र पेशाब इसको यूज करते हैं। यदि खेत में हम देसी गाय का गोबर डालेंगे तो देसी गाय के गोबर में काफी मित्र कीट होते हैं, काफी लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं गोबर के अंदर और भूमि में जाकर के वो उन कीटों को और बढ़ावा देते हैं जो हमारे मित्र कीट है। जैसे जीवामृत डालें और जीवामृत को यदि हम पानी में मिला करके सिंचाई के साथ यदि प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर काफी लाभदायक बैक्टीरिया हो जाते हैं और लाभदायक बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया पर जाकर के और बढ़ा देते हैं अपने बैक्टीरिया को, अपने परिवार को बढ़ा लेते हैं जमीन में। जब परिवार को बढ़ा लेते हैं तो हमारे बैक्टीरिया और जो हमारे जो फसल अवशेष उनको डिकम्बोज कर देते हैं गला सड़ा करके बैक्टीरिया जीवांश कार्बन बढ़ाने में सक्रिय हो जाते हैं और हमारी मिट्टी उत्पादन करने के लिए सक्रिय हो जाती है उत्पादन बढ़ाने में। यदि हम इस जीवामृत घनीवामृत डालते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भूमि के अंदर जो छिद्र होते हैं उनको सोखने की क्षमता, भूमि के अंदर पानी रोकने क्षमता भी सर बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी मिट्टी को पार्टिकल्स और पार्टिकल भी मजबूत हो जाते हैं जो हमारी मिट्टी अच्छी हो जाती है और हमारी फसल करने का उत्पादन देती है और मिट्टी हमारी ऊसर की तरफ से लेकर के एसिड की तरफ बढ़ती है, हमारी मिट्टी अम्लता और क्षारीयता को छोड़कर नॉर्मल मिट्टी हो जाती है।
1: जी, जैसे मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए सरकार भी काफी प्रयास कर रही है, जैसे सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड चलाया है तो जिसके द्वारा किसानों को पता चलता है कि हमारी मिट्टी में कार्बन की मात्रा कितनी है, अन्य पदार्थों की कितनी मात्रा है जो हमें फसल उत्पादन के लिए जरूरत है। तो सरकार द्वारा कोई ऐसी और भी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके द्वारा मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जा सके?
0: सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चला रखी है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मतलब है कि किसान भाई अपनी मिट्टी को लेकर के किसी नजदीकी प्रयोगशाला में जाकर चेक करा। जैसे आजकल में आप देख रहे हो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, प्रत्येक जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र है और वहां पर मिट्टी जांच करने प्रयोगशाला है। उस प्रयोगशाला में किट रहती है जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व और बड़े पोषक तत्व जांच करती है, उसमें ये पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी में कितना जीवांश कार्बन मौजूद है, कितने हमारे पीएच मान हमारी मिट्टी का, कितनी हमारी मिट्टी की विद्युत चालकता है, कितनी हमारी मिट्टी के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे बोरान है, क्लोरीन है, जिंक है, जस्ता है, फेरस है, कितना है। यदि किसान भाई इस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का फायदा उठाए और कृषि विज्ञान केंद्र की लेबोरेटरी में या हमारे प्रत्येक जनपद में कृषि विभाग की तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला होती है, वहां जांच कराने, तो उसमें वहां के जो प्रभारी लिखेंगे कि जीवांश कार्बन कितनी परसेंट है। यदि हमारी मिट्टी के अंदर जो सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा उस पर यदि हमारा 0.57% विवरण कार्बन है, तो सर ये कहने का मतलब ये किसान वैसे कहना चाहूंगा कि उसमें हम प्रत्येक फसल को बो सकते हैं।
1: जी
0: 0.57 यदि परसेंट हमारा ऑर्गन कार्बन है, जीवांश पदार्थ यदि कोई वहां प्रवाह लिखते हैं मिट्टी में, तो प्रत्येक फसल हो सकती है। और यदि 0.25 है ये तो उसमें बढ़ाने के लिए हम काफी मात्रा में, नहीं बताया, हरी खाद प्रयोग करें, सनी ढांचा प्रयोग करें और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, फसल अवशेष को ना गलाएं उसी में गलाएं सड़ाएं, और मल्चिंग का भी बहुत अच्छा स्कोप होता है सर। और एक जीवांश कार्बन एक और होता है कि मैं किसान भाई कर कम जुताई करें,
1: उससे कैसे
0: कम जुताई से क्या होता है, किसान भाई आपने देखा बहुत सारी जुताई करते रहते हैं
1: जी।
0: तो जो भूमि के अंदर विद्यमान नाइट्रोजन है या तत्व है वो अधिक पलटाई करते रहेंगे तो वो ऊपर आती रहती है नाइट्रोजन, ठीक है, तो हमारे बेनिफिट वेक्टर तो मर जाते हैं और नाइट्रोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो बेस्ट हो जाते हैं, उड़ चली जाती है, जो हमारी भूमि से निकल जाती है। एक मैं टेक्निक किसान भाई कहना चाहूंगा कि बहुत कम जुताई करें, जहां में 4 जुताई आ सकता है वहां पर 2 जुताई,
1: मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ना करें,
0: और लास्ट में अनुरोध यही करूँ किसान भाइयों से
1: जी
0: कि फसल के अवशेष ना जला, तो यही सर किसान भाई से मेरा अनुरोध था।
1: जी डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने काफी विस्तार से बताया और किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि वो मृदा में जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं उसको बढ़ाने के लिए सारे प्रयास करें और उसके साथ साथ जो उनके अवशेष हैं फसलों के उनको जलाएं नहीं, उनकी आप कंपोस्ट खाद बना लें, उनको सड़ा गला के मृदा में पुनः अपने खेत में मिला दें, आपके मृदा का कार्बन पदार्थ बढ़ेगा और आप जो भी फसल लगाएंगे उससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा
0: जी।
1: डॉक्टर मोहन सिंह जी आप हमारे स्टूडियो में आए और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे भाई सुन रहे थे जानकारी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के उपाय, डॉक्टर मोहन सिंह जो मृदा वैज्ञानिक हैं गौतम बुद्ध नगर में, उनसे बातचीत कर रहे थे शिव नंदन लाल।
3: तो वंदना बहन अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं तेजवीर विधुड़ी से ये उपदेश।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे ये उपदेश तेज वीर विदुर की आवाज में। और देखिए, जैसे कि कुसुम बहन, हम सबको पता है कि वही जुलाई माह में जो हमारी फसलें होती हैं उनकी भी हमें देखभाल करनी होती है। और तो खेतों में जो जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें और समय समय पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार हटाते रहें, और बारिश का तुरंत बाद कीटों को रोगों की निगरानी करते रहें, और साथ ही साथ यूरिया को एक साथ न डालने के बजाय किस्तों में डालें, थोड़ा थोड़ा डालें। तो इस तरह आप अपनी फसलों का ध्यान रख सकते हैं। और अगर जैसे मानसून की सक्रिय फसलें हैं, जो लोग खरीफ फसलें हैं जैसे धान, मक्का, सोयाबीन और सब्जियां, ये बहुत ही अहम होती हैं, और इनकी अपनी फसलों को स्वस्थ सुरक्षित रखने के लिए, बम्पर पैदावार पाने के लिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखें।
1: बिल्कुल, ये तो हुई जानकारी। तो जैसा कि हम आपका मनोरंजन करा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ना कि वंदना बहन, ये जिंदगी बहुत छोटी होती है, जितना भी
0: जी
1: हमें अच्छा कर्म करता करते रहना चाहिए ताकि उसका फल हमें मिले।
0: बिल्कुल
1: तो ऐसा ही कुछ उपदेश है, थोड़ी सी जिंदगानी जगत मुसाफिर, सुनते हैं सोमपाल सिंह से।
0: जी।

अभी हमारे भाई सुन रहे थे सोमपाल सिंह की आवाज में ये उपदेश, और इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार पारासर और संयोजक शिव नंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गजल कव्वाली।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

अकबर एंथोनी में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों को बहुत ही खूबसूरत कव्वाली के साथ। और ये जो इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल कव्वाली, तो इसमें एक गजल हम आपको और सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में, जो हमने लिया है फिल्म नाम से। गायक कलाकार हैं पंकज उदास और साथी, गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।

0: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, जैसे UPI से।
1: अच्छा
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी वो दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: हम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
0: हर लेन देन अब है आसान।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री नड्डा ने कहा बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधोड़ी ने संसद में ओजोन का मामला उठाकर सरकार से दिल्ली की 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांवों को ओजोन से हटाने का अनुरोध किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को मंजूरी दी और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर नालों की सफाई की स्थिति की समीक्षा की गई। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा।
4: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
3: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
5: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
3: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया था और सुबह 11:50 से इस पर चर्चा जारी है। श्री नड्डा ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रारंभिक चर्चा विस्तार से हुई। प्रदर्शनकारियों ने शाम करीब 4 बजे सरकार को एक लिखित याचिका सौंपी।

0: श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों या कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं या अपुष्ट सामग्री पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने आज संसद में ओजोन का मामला उठाकर सरकार से दिल्ली के 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांवों को ओजोन से हटाने का अनुरोध किया, जिससे 15 लाख लोगों को राहत मिल सके। श्री बिधोड़ी ने कहा कि वर्ष 2010 में जिन क्षेत्रों को ओजोन में डाला गया उनमें दिल्ली सचिवालय, अक्षरधाम मंदिर, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज और डीडीए द्वारा नियोजित ढंग से बनाई गई मदनपुर खादर पुनर्वास कॉलोनी शामिल है। इसके अलावा 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांव को भी ओजोन क्षेत्र में डाला गया। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2013 में केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों को ओजोन से हटाने की मसौदा अधिसूचना भी जारी कर दी थी। श्री बिधोड़ी ने सरकार से अनुरोध किया कि इस सभी क्षेत्रों को ओजोन से हटाया जाए, जिससे उन्हें नियमित किया जा सके और लोगों को राहत दी जा सके। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को राजधानी में लागू करने और उसका समर्थन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार ये योजना पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को हटाकर उनकी जगह BS6 कड़े प्रदूषण मानकों वाले या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिससे परिवहन से होने वाले वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम किया जा सके।
1: मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत यदि कोई वाहन मालिक अपना BS4 या उससे नीचे का हल्का मालवाहक वाहन को स्क्रैप करा के वैसा ही नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे सरकार की ओर से 10 वर्षों के लिए 100% मोटर वाहन कर में छूट और 100% पंजीकरण शुल्क माफी दी जाएगी। इसके साथ ही ब्याज में 5% की सब्सिडी, वाहन निर्माता की ओर से 8% की छूट और ईंधन वाउचर के रियायती मूल्य के बराबर एकमुश्त लाभ भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि यदि नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की बजाय पुराना इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा जाता है तो लाभार्थी को 10 वर्षों के लिए 50% मोटर वाहन कर में छूट, ब्याज में 5% की सब्सिडी और ईंधन वाउचर के रियायती मूल्य के बराबर एकमुश्त लाभ दिया जाएगा। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना में पुरानी BS4 या उससे नीचे की बसों को भी शामिल किया गया है। इन बसों को भी मालवाहक वाहनों के समान सभी लाभ उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत स्क्रैप किए जाने वाले पात्र वाहनों को एक वर्ष से अधिक समय से लंबित रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी की देनदारियों में भी राहत दी जाएगी। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मॉनसून के लिए राजधानी की तैयारियों और शहरी बाढ़ से निपटने के उपायों की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने पानी जमा होने वाले चिन्हित हॉटस्पॉट पर क्षमता तुरंत बढ़ाने और दिल्ली में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही मोबाइल हैवी ड्यूटी पंपों को हर समय चालू रखने, लोगों की प्रतिक्रिया और जमीनी हालात की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने की जरूरत पर भी बल दिया। श्री संधू ने जानकारी दी कि पानी जमा होने वाले चिन्हित स्थानों की संख्या वर्ष 2024 में 194 से घटकर वर्ष 2026 में 34 रह गई है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास सभी संबंधित विभागों की लगातार प्लानिंग, तालमेल के साथ काम करने और निरंतर मॉनिटरिंग के असर को दर्शाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली नगर निगम के उप महापौर डॉ मोनिका पंत ने आज आनंद विहार के अंतर्गत योजना विहार में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। निगम ने कहा कि यह विकास कार्य क्षेत्र में बेहतर सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि यह विकास कार्य स्थानीय नागरिकों के लिए

सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि हाल ही में बिछाई गई 900 मिलीमीटर व्यास वाली ख्याला मेन लाइन को दो जगहों पर जोड़ने के काम के कारण पंजाबी बाग, नारायणा, इंद्रपुरी और मोतीनगर के आसपास के क्षेत्रों में बृहस्पतिवार से शुक्रवार तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। आपातकाल स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली भाजपा ने आज प्रदेश के नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अनुमति और विचार विमर्श के बाद जारी सूची में उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई है। श्री मल्होत्रा ने बताया कि प्रदेश संगठन में 10 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। श्रीमती गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित ये संगठन केंद्र और दिल्ली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएगी तथा विकसित दिल्ली और विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने आज स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां, जांच सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। दिल्ली नगर निगम ने आज जवाहर नगर क्षेत्र में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। निगम ने कहा कि ये केंद्र क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा, साथ ही स्थानीय लोगों को समयबद्ध और नागरिक केंद्रित स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराएगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए एक ट्रैफिक पाठशाला आयोजित की। यह कार्यक्रम सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को कम करने और छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा आज मादक पदार्थ नष्ट करने के 10वें कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 1450 किलो के से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किए गए, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 897 करोड़ रुपए है। यह कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त एचजीएस धालीवाल की उपस्थिति में आयोजित किया गया। पुलिस ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ड्रग फ्री भारत को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित करने और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति तय करने के बाद शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सेंट्रल असेंबली में ऐतिहासिक बम विस्फोट कर ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने वाले बटुकेश्वर दत्त का अद्वितीय साहस, सर्वोच्च बलिदान और राष्ट्रभक्ति हर देशवासी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री नड्डा ने कहा, बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने संसद में ओजोन का मामला उठाकर सरकार से दिल्ली की 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांवों को ओजोन से हटाने का अनुरोध किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को मंजूरी दी और उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर रात्रि के 8 बजे चुके हैं। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म का नाम है लोफर और इसे स्वरों से सजाया है मोहम्मद रफी साहब ने। तो आइए सुनते हैं अपने समय का बहुत ही खूबसूरत गीत।

फिल्म तेरे नाम में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक को। गीत रचना थी समीर की और संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी साहब को फिल्म आरजू में, और ये जो गीत रचना है सागर आर्ट कॉरपोरेशन की और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: इंद्र प्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं गीत मालिका कार्यक्रम, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथी। गीत रचना है देव कोहली की और संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

जी दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गाना। फिल्म का नाम है सूरज, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी, गीत रचना है वीनस पिक्चर्स की और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर, और इसको आवाज दी है मुकेश ने। गीत रचना है हजरत जयपुरी की और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म पड़ोसन में।
1: अरे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं मुकेश और कंचन को फिल्म धर्मात्मा में। गीत रचना है इंदिवर की और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

और फिर कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में ये सुनते हैं सिलसिला फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथी संगीत से सवारा है शिव हरि ने।

0: सिलसिला फिल्म के इसी गीत के साथ ये आज का गीत मालिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं?

0: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनो में स्टेफान सेल मारिसिस फ्रेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनो में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
3: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध

0: साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवेर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
1: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की

0: घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
1: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से आवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

की खिदमत में अदाबर्ज, ये आकाशवाणी है और उर्दू सर्विस की आज की तीसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है। हमारी नशरियात मीडियम वेव 1070 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटी फ्री डिश पर सुन रहे हैं।

फ्रांसिस्को 30 मिनट पर फरमाइशी फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम होगा तामिल इरशाद। ये प्रोग्राम 11:30 मिनट तक जारी रहेगा। दौरान प्रोग्राम रात 11 बजे आप सुनेंगे खबरें पर सगीर से। 11:30 मिनट पर सुर्खियों में प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 11:42 मिनट पर कवालियां नशर की जाएंगी। आज के फनकार हैं सईद साबरी कवाल और हमनवा। सब के 12 बजे आलमी खबरें पेश की जाएंगी। 12:10 पर क्लासिकी मौसीकी का प्रोग्राम होगा। उस्ताद अब्दुल लतीफ खान का सारंगी पर बजाया राग ललित आप सुनेंगे। सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिर शब 12:30 पर नशर किया जाएगा। बारह के 50 मिनट पर एक बार फिर आप खबरें सुन सकेंगे। रात 1 बजे उर्दू सर्विस की आज की तीसरी मजलिस की नशरियात का इख्तिताम होगा। 1 थी हमारे यहाँ से आज रात 1 बजे तक नशर होने वाले प्रोग्रामों की झलकियाँ। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। लिए जमीन अब पेश है गैर फिल्मी गजलों पर मुश्तमिल प्रोग्राम एक फनकार। आज के फनकार है अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन।

0: इसकी बजाय उस एसआईटी पर भरोसा किया जा सकता है जो एफआईआर दर्ज होने से पहले इस पूरे मामले की जांच कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को इस मामले की अगली समाअत करेगी, जब उत्तर प्रदेश हुकूमत इस मामले में एसआईटी जांच के बारे में इतला देगी। हुकूमत ने आज कहा है कि पेट्रोल में 20% से ज्यादा इथेनॉल शामिल किए जाने के सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया गया है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोल और कुदरती गैस के वजीर मुमलिकत सुरेश गोपी ने कहा कि इथेनॉल की आमेजिश में इजाफे के सिलसिले में कोई भी फैसला तफसीली साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतालका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि E20 कोई नया ईंधन नहीं है और उन्होंने मजीद कहा कि इथेनॉल एक सदी से ज्यादा दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता आ रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के दरमियान गहरी मुआशी मसरूफियात की बात की है और कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आला नमूने के कई शोबों में इश्तराक को उसत देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। आज चेसिनो में भारत मोल्दोवा कारोबारी फोरम से खिताब कर रही थी। विकसित भारत 2047 का हवाला देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत एतमाद और मुश्तरका खुशहाली पर मबनी इश्तराक का खाहां है। वहीं मोल्दोवा का स्ट्रेटेजिक महल वकू और हुनरमंद अफरादी कुवत भारतीय कारोबार के लिए उम्मीद अफजा इम्कानात की पेशकश है। सदर जमहूरिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजी, मस्नूई जहानत, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे, ज़राअत, फार्मास्यूटिकल्स और सेहत देखभाल को मुस्तकबिल के इश्तराक के कलीदी मैदान करार दिया। इससे पहले सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की अपनी हम मनसब माइया संधु के साथ वक्त की सतह की बातचीत की। जम्मू कश्मीर में आज जम्मू डिवीजन में बारिश से वाबस्ता वाकयात में मजीद 4 लोगों की जान चली गई, जिससे पिछले 2 दिनों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई। सैलाब से मुतासरा राजौरी और पुंछ अजला में मुसलसल बारिश के सबब बचाव और राहत कार्रवाईयों में रुकावट पैदा होने से कम अज कम 7 अफराद अब भी लापता हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश, अचानक सैलाब और चट्टानों के टुकड़े गिरने के पेश नजर सूरत हाल का जायजा लिया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ 2 सरहदी अजला में बारिश से मुतालिक वाकयात में जान गंवाने वालों के हर कुनबे को 6-6 लाख रूपये की नकद इमदाद का ऐलान किया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरक हिस्सों में भी अगले 2 दिन तक भारी बारिश की पेशगोई की गई है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शोरगुल के साथ शुरू हुआ। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलात पर शोर शराबे की वजह से बार बार मुलतवी करना पड़ी। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में मुजाहिरीन के साथ बातचीत की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के दरमियान मजबूत इकतसादी शराकत दारी और आला तरक्की वाले शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर जोर दिया है। जम्मू डिवीजन में शदीद बारिश से मजीद 4 लोगों की जान चली गई है। कल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की अशरियात। रेशावीन अब पेश है हेल्थ टिप्स प्रोग्राम के तहत कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से। सामीन, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सब्जियां हो गई, फल हुए और दीगर मेवाजात का भी इस्तेमाल हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। इसी तरह से مسالہ

0: phone. My name is Nishit Kumar and it is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotao, har somvar ki tarah aaj bhi hum aapke prashnon ko seedhe karyakram mein shamil karenge. Vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn poochne ke liye aap dial kijiye 2331-0481 और 2371-7106 पर दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का स्टडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है अर्थव्यवस्था पर विशेष पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: आइए श्रोताओं, एक नजर डालें आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 450 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,239. इंडियाज कोर इंडस्ट्रीज रजिस्टर ग्रोथ ऑफ 5% इन जून दिस ईयर एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स 400 अंकों से अधिक बढ़ा, निफ्टी 24,239 पर बंद हुआ. भारत के प्रमुख उद्योगों में इस साल जून माह में 5% की वृद्धि दर्ज की गई और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई.

0: Before we proceed, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking an investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, अब आइए रुक करते हैं कि और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे घरेलू शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 443 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक लुढ़ककर 77,709 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 96 अंक यानी लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,239 पर आ गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में आधे प्रतिशत से अधिक और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.2% की बढ़ोतरी हुई।
0: Benchmark domestic equity indices ended on a negative note today after a choppy trading session. The Sensex shed 443 points or 0.6% to close at 77,709. The Nifty lost 96 points or 0.4% to settle at 24,239. However, in the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose 0.6% and the small-cap 100 index added nearly 0.2%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयर्स में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर्स में सबसे पहला नाम ट्रेंट 3%, पावरग्रिड 1.8% और एनटीपीसी तथा भारतीय एयरटेल 1.5% से अधिक बढ़े। खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो एक्सिस बैंक 5.5%, एचडीएफसी बैंक 5% से अधिक और मारुति के शेयर्स में 2% से अधिक की गिरावट आई।
0: Bombay Stock Exchange, 15 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, PSU banks jumped 3%, utilities rose 1.7%, and power added 1.5%. In contrast, private banks dropped 2.1%, top 10 bank index flipped 1.9%, and financial services lost 1%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, with shares of 2,226 advanced, 2,039 companies declined and 249 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 96.45 रुपए पर बंद हुआ। शशिर, हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने आज मार्केट में एक निराशा ला दी है और मार्केट अंततः ग्रीन जोन में बंद हुआ।
2: बाजार में देखिए, जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बैंक है, उनके शेयरों में उछाल देखने को मिला। निजी बैंक जो थे उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिली। ये बहुत ही कहते हैं कि रेयर सिचुएशन होते हैं जब ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग तरीके के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। सरकारी बैंकों के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। अगर हम बीते कुछ दिनों में जो प्रमुख बैंकों की बात करें, उन सभी में हमने दोहरे अंकों में मुनाफा बढ़ते हुए देखा है और सालाना आधार पर एक बैंक का जो मुनाफा था वो लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। तो ऐसी सूरत में सरकारी बैंकों में एक उम्मीद बंधी है कि वहां पे नए सिरे से जो है वो खरीदारी की जा सकती है। निजी बैंकों के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस तरीके की नहीं हुई है जो हमने सरकारी बैंकों में देखा। तो शायद एक ही कारण हो सकता है कि हमने एक तरफ सरकारी बैंक में बढ़ोतरी देखी, लेकिन निजी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज जो थी उनमें हमने गिरावट देखी। और पूरा बाजार अगर आप देखेंगे, 400 पॉइंट के ऊपर जो गिरा, सेंसेक्स गिरा, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो आप तेल, कच्चे तेल को लेकर के जो स्थिति है उसका योगदान सबसे ज्यादा है। एक अनिश्चितता से बनी हुई है कि वहां पर क्या रहेगा। तो ये आज के बाजार में। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण हमने देखा कि दवा कंपनियों के शेयरों में भी आज अच्छी तेजी आई, और ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि चूंकि वो एक तरीके से डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है, तो वहां पर हमने बढ़ोतरी देखी। तीसरा जो हमने चलन आज देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो आमतौर पर कहते हैं इसमें बहुत तेजी भी आती है, बहुत गिरावट भी आती है, आज की गिरावट के दौर में भी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों आगे बढ़े।
0: राइट शशिर जी, यू टॉकिंग ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स, PSU banks and private banks, almost 5% of a difference. If you look at the PSU banks, jumped 3% and the private banks dropped 2.1%, almost a 5% contrast. What accounts for that?
2: Yeah, the most important reason is the result. I mean, if you go by the financial performance of Q1, that's April to June period, where we have seen all the public sector banks have recorded double digit or even more than double digit growth in the net profit. Even their net interest profit, the net interest income has also gone up. Of course, the net interest margin is slightly on the lower side, but hopes are really good for the public sector bank, and that is why we are seeing this kind of increase in there. On the contrary, the private sector banks, we are not seeing the kind of growth in the net product profit. And at the same time, one of the big private sector bank is also riddled in the controversy. That is also giving some kind of negative impression about the private sector banks. And that is why you are seeing a difference of 5% between the public sector bank and the private sector bank.
3: Another point, Shishirji, you know, given the situation in West Asia, you know, now on, and before we discuss, here is the first caller from Delhi, Premjit.
4: Ji. Ji, namaskar, Sitir sahab.
3: Namaskar.
4: आप सिन्हा साहब, आपने पिछली बार मुझे बताया था और मैंने पूरी वर्ल्ड घूमकर जब मैं आया तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया. सर मेरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न इस बार कि सर ये जो रोबोटिक सिस्टम है वर्ल्ड वाइड या जिसको आप AI कहते हैं, क्या ये हम पर हावी होगा, हमारे इंडियन यूथ जो इंटेलिजेंट है, या हम उन पर हावी रहेंगे? सर बड़ा छोटा सा प्रश्न है सर, विस्तार आप दे सकते हैं?
2: रंजीत जी, प्रश्न छोटा नहीं है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है. और आज के दौर में कहें कि चाहे वो शेयर बाजार की बात करें या पूरे अर्थव्यवस्था की बात करें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसको लेकर के बहुत चर्चा चल रही है. और ये मुद्दा, ये दो मुद्दे प्रमुख रूप से छाए हुए हैं. पहला कि क्या लोगों की नौकरियां जाएंगी, और दूसरा जो पारंपरिक सूचना तकनीक कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर्स की जो कन्वेंशनल कंपनीज है, उनका क्या होगा? तो पहले प्रश्न का जवाब मेरे हिसाब से यह है, जो हमने 1991 में देखा था, जब कंप्यूटर आया था तो लोगों ने कहा कि नौकरियां जाएंगी क्योंकि अब कंप्यूटर आ गया है. लेकिन जिन लोगों ने कंप्यूटर के साथ चलना शुरू किया, उनके लिए कौशल्य बढ़ा और उनके लिए मौके ज्यादा बने. यही पक्ष जो है वो आप AI के लिए भी कह सकते हैं कि AI के साथ अगर हम चले तो हमारा कौशल्य बढ़ता, हमारे लिए मौके बनते हैं. आपका ये है कि कौन हावी होगा, हम हावी होंगे या AI हावी होगा? हम अगर हावी होने देंगे तो AI हम पर हावी होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि तकनीक को हम अपना मददगार बनाए, तकनीक को अपना मालिक ना बनाए. तो अगर मददगार अगर आप बनाते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा. और दूसरा जो प्रश्न जो मैंने खुद ही किया कि जो पारंपरिक आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उनका क्या होगा, तो अभी मैं दो जो बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं आईटी सेक्टर के, जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं नंदन निलेकनी या एन विद्या के जो CEO हैं, दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि पारंपरिक कंपनियों का महत्व बना रहेगा. तो मुझे लगता है कि AI को लेकर के डरने की जरूरत नहीं.

0: एआई को 7 दिन की जरूरत है, इससे हमारा आपका कौशल बढ़ेगा और हम बाजार में एक बेहतर योगी कह सकते हैं, आप गंभीर कह सकते हैं, उसके तौर पर हम आएंगे।
1: बिल्कुल श्रोताओं, जिस तरीके से प्रेमजीत ने हमसे सवाल पूछा, आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। आपके सवालों के जवाब लेकर के हमारे साथ शिशिर सिन्हा मौजूद है। और ये देखिए कोलकाता से इस बीच हमारे पास कॉल आ रही है आर आचार्य की।
2: हाँ
1: जी, क्या सवाल पूछे महोदय?
2: हाँ सर, मैं मैडम, मेरा एनपीएस में कुछ पैसा लगा है, ठीक है, तो बीच में जो लड़ाई चल रहा था इसमें मेरे फंड के डाउन हो गया, इसमें पैसा लगाना ठीक होगा? और
0: देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो थोड़े समय की कोई बचत योजना नहीं है, वो आपके लिए एक भविष्य की सुरक्षा, एक सामाजिक सुरक्षा है। जब आप सेवानिवृत्त होंगे वहां पर आपके लिए उससे जो भी पैसे आप जमा करेंगे उससे आपको एक पेंशन मिलेगा। आप यदि निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत मददगार होगा। सरकारी क्षेत्र में भी 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सरकारी क्षेत्र में आए हैं उनके लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। तो मुझे लगता है कि आपको ना ये रोज रोज के उतार चढ़ाव को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। एक जब आपकी मेच्योरिटी जो 60 साल की उम्र में होती है और आप 85 साल तक के लिए ये सुविधा दी गई है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि फंड जो है वो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शेयरों में लगाया जाता है। आप विकल्प देते हैं और अगर आपने विकल्प दिया है कि नहीं मेरा ज्यादा पैसा लगना चाहिए, तब भी आपको मौका मिलता है कि आप उसमें किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप घबराएं नहीं, इसके भविष्य को लेकर के बहुत चिंता अभी नहीं करनी चाहिए।
1: और दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आईटी से बेटर किसी हमें पैसा लगाना चाहिए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो अभी जो दिवाली के लिए तो वहाँ काफी क्षति हो गई है कई देशों में, तो उसके अदर क्षेत्रों में आने वाले समय में यहाँ काफी जो काफी दिल्ली के द्वारा से भरे क्षेत्र में काफी स्कोप हो जाएगा, तो इससे क्या इससे आगे हम
0: केशव जी, आपका जो पहला प्रश्न है कि एफडी का क्या भविष्य है, एफडी को लेकर के क्या करना चाहिए, मेरी हमेशा से राय रही है कि एफडी एक सुरक्षित निवेश है, चाहे वो आप सरकारी बैंक में करें या डाकघर में करें। सरकारी बैंक में ये होता है कि आपको अगर बैंक डूब जाता है तो भी 5 लाख रुपए तक की जो मूल रकम आपको मिलती है डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत। डाकघर में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, 1 रुपया भी आपका डूबने का खतरा नहीं होता है। तो फिक्स डिपॉजिट आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, वो आपको एक सुरक्षा देता है। दूसरा प्रश्न था कि जगह जगह पर जो नुकसान हुए हैं, भवन नए सिरे से बनाने की जरूरत होगी। देखिए, बहुत ही दूर की सोच है, अभी की जो परिस्थिति है उसमें वहां पर उद्योगों की क्या स्थिति होगी, वहां किस तरीके से भवन निर्माण होगा, ये कहना भी बहुत ही मुश्किल है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जल्द से जल्द खत्म हो, युद्ध शांति की स्थिति बने, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर की कंपनियों के लिए मौके जो है वो बन सकते हैं।
4: नेक्स्ट कॉलर इज राजीव फ्रॉम दिल्ली। राजीव,
1: हमारा संपर्क टूट गया है राजीव जी से, आगे बढ़ते हैं।
4: या मूविंग ऑन, द अल्ट्राटेक सीमेंट टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। द कंपनीज कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज बाय 15.8% ईयर ऑन ईयर to 24,648 crore rupees. However, on a quarter-on-quarter basis, revenue dropped by 4.5%. The company's consolidated net profit grew by 16.8% to 2,599 crore rupees compared with the corresponding quarter of the previous financial year. However, on a sequential basis, the net profit declined by 12.8%.
1: और अब आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और जानते हैं कि एशियाई शेयर बाजार में क्या हलचल है। आज अधिकांश एशियाई शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5%, ताइवान का ताइएक्स 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5 6.2% लुढ़के, वहीं हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 2.5% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% बढ़ा। उधर छुट्टी के कारण जापान का बाजार बंद रहा। और रवि नारायण जी हमारे साथ श्रोताओं जुड़ रहे हैं भिलाई से। जी महोदय, अपना सवाल
2: जल्दी जल्दी पूछता हूँ। दो छोटे छोटे सवाल है
1: जी।
2: पहला तो ये कि आज वो पंजाब नेशनल बैंक का मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए कुछ फॉरेन किसी का उसको पार्टनर बनाने का प्लान के बारे में पढ़ा मैंने, तो इसमें पहली बात तो ये कि बाहर से क्यों जरूरत पड़ रही पार्टनर की, और दूसरा इसमें इनकी मंशा क्या है पंजाब नेशनल बैंक के लिए जाना चाह रहा था। और दूसरा ये कि अभी तो ये फिर से वार बढ़ने के बावजूद भी पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम का जो प्राइस है वो कैसे गिर रहा है।
0: पहले अगर आपके दूसरे प्रश्न का हम जवाब दे दें, क्योंकि पहले प्रश्न का जवाब इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि वह एक खास कंपनी और बैंक से जुड़ा हुआ है जिसकी योजनाओं की हम चर्चा यहां पर नहीं करते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि कच्चे तेल के भाव गिर रहे हैं, भाव गिरे नहीं, भाव तो बढ़े, 80-85 के ऊपर चले गए हैं, तो वो तो हमारे लिए चिंता का विषय जरूर बन रहा है क्योंकि बीच में थोड़ी गिरावट आई थी तो एक राहत की उम्मीद बनी थी। अब फिर से बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उससे रुपए पर दबाव बन रहा है और आपने उसका रुपए का चाल भी देखा है। तो अभी के समय में लड़ाई जैसे जैसे बढ़ेगी कच्चे तेल के भाव में तेजी आने की आशंका है, क्योंकि लड़ाई केवल एक देश तक सीमित नहीं है, वो पूरे क्षेत्र में है और वो क्षेत्र ऐसा है जहां से 20% जो है पूरी दुनिया की आपूर्ति का जो है वहां से गुजरता है, तो जाहिर है उसका असर तो आपके पेट्रोल डीजल या यूं कहें पहले हम कहें कि कच्चे तेल के भाव पर पड़ेगा।
1: आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उद्योग सूचकांक सालाना आधार पर जून में 5% बढ़ा। यह बढ़ोतरी पिछले 5 महीनों में सबसे अधिक है। इससे पहले मई में 3.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। जून के आंकड़ों के साथ ही संशोधित श्रृंखला भी पहली बार जारी की गई है जिसमें आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। नई श्रृंखला के अंतर्गत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार आयरन ओर के उत्पादन में लगभग 44% की वृद्धि हुई जबकि बिजली उत्पादन और सीमेंट उत्पादन में 9.8% की बढ़ोतरी हुई। वार्षिक आधार पर स्टील उत्पादन में 4.6% और कोयला उत्पादन में 1.4% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि वार्षिक आधार पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7.4%, रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में 4.5% से अधिक, कच्चे तेल के उत्पादन में 4% से अधिक और उर्वरक उत्पादन में 3.3% की गिरावट आई। शिशिर जी, ये एक अच्छी बात है कि ये बढ़ोतरी हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं, एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूँ।
0: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जितने भी हमारे आर्थिक सूचकांक है, अगर हम बात करें GDP, हम बात करें महंगाई दर की और जो है ये प्रमुख उद्योगों की बात करें, इसके आधार वर्ष का बढ़ना, इसलिए आधार वर्ष का तय सिरे से तयना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो वास्तविकता के करीब होते हैं। अभी जैसा कि आपने कहा कि 2011-12 पहले आधार वर्ष था, अब 2022-23 है, तो अगर आप GDP का भी देखेंगे तो 2022-23 हो गया है। WPI का भी देखेंगे 2022-23 हो गया है। CPI की हम बात करें वो 2024 हो गया है। तो आधार वर्ष का बढ़ना एक, दूसरा दायरा बढ़ गया है, पहले 8 होते थे अब 9 हुआ थे। और इस्पात का आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्पात जो है वो आर्थिक गतिविधियों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ना चाहेंगे कि जो प्रमुख उद्योग क्षेत्र है, ये जो आंकड़े आते हैं ये हमारे पूरे औद्योगिक क्षेत्र का एक ट्रेलर है, यानी कि जब 28 तारीख को औद्योगिक क्षेत्र के आंकड़े आएंगे तो एक अनुमान आज हम लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति क्या होगी। राइट, एंड नेक्स्ट कॉलर इज कांता फ्रॉम गुरुग्राम। कांता
5: जी नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
5: मैं ये पूछना चाहते हूँ, ये सीनियर सिटीजन स्कीम में मैं बैंक में पैसे लगाए हुए हैं सर
0: जी,
5: तो इस पर जैसे TTS का पैसा तो सरकार देती है, तो इसको बैंक दे रहा या सरकार देगी, और ज्यादा होगा तो बैंक डूब जाए तो फिर वो मर जाएगा, पैसा ज्यादा करवा दिया तो।
0: कांता जी, दो बातें हैं। जो आप बैंक में पैसा रखते हो, जाहिर सी बात है वो बैंक ही देता है, उस पर ब्याज भी बैंक ही आपको अदा करता है। यदि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगर आप डाकघर में खोलती हैं, वो पैसा वो सरकार के जरिए आता है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि अगर बैंक डूब जाए, तो बैंक डूबने की सूरत में प्रति शाखा जो है वो आपको 5 लाख रूपये तक का जो है वो आप प्रति बैंक जो है वो 5 लाख रूपये तक आपको मिलता है एक समय में, और बाकी पैसा जो है वो बाद में उसके भुगतान की उम्मीद बनती है। तो बैंकों में जो ब्याज दर है उससे कहीं

0: ज्यादा ब्याज दर डाकघर में है और वहां पे फायदा ये भी है कि वो ब्याज और मूल दोनों ही भुगतान सरकार करती है।
1: सर, दिल्ली से हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
2: अभी मेरे पास ये अपने फोलियो नंबर है खाली, हमारे पास शेयर नहीं है, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं मतलब हमारे को इश्यू हो जाएंगे जो उसके फिजिकल शेयर?
0: दिनेश जी, अब तो फिजिकल शेयर की तो बात होती नहीं है। आपके पास जिस किसी कंपनी के शेयर है वहाँ के रजिस्ट्रार से आप संपर्क करें, यहाँ उनके जो रजिस्ट्रार होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जो पैन नंबर होगा या जो डीमैट अकाउंट नंबर होगा उसमें से कोई भी एक जानकारी देकर के आप ये पता कर सकते हैं कि वो शेयर कहाँ है। फोलियो नंबर आमतौर पर म्यूचुअल फंड के लिए ज्यादा यूज होता है, तो अगर म्यूचुअल फंड के उससे है तो आप जो संबंधित असेट मैनेजमेंट कंपनी है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं।
3: शिक्षक जी, वन क्वेश्चन वी वर डिस्कसिंग अर्लियर ऑन, इफ यू लुक एट द मार्केट सिचुएशन, डोमेस्टिक मार्केट सिचुएशन एंड ऑल्सो द रिजल्ट्स व्हिच हैव बीन पोरिंग इन द पास्ट कपल ऑफ डेज नाउ, सो given the situation the world over, especially in the context of the West Asian crisis, how do you see these numbers stacking up? Especially these numbers are so very encouraging.
0: See, I think we need to understand that the impact was starting in the month of February, from 28th of the February. Mm-hmm. So the first full month was March, and then we have the first full quarter of April to June. Now the big question we are asking is that why there the number is so encouraging? Why the numbers, I mean, not indicating the kind of stress which we were apprehending. Mm-hmm. One of the reasons is because of the market situation. Market means the consumer market. If you go by the consumption market, the consumption is good in the domestic sector, that is also helping you. You also need to understand what is happening on the export front. Mm-hmm. Just on 15th of this month, we were going through the export data, and then we found that both export and import both have gone up. Export has also given a very encouraging sign. That means the companies are able to sell their produce outside. Mm-hmm. Now the concern here is that the cost of production has slightly gone up, and that is why the profitability is of course on a higher side, but it could have been much higher had the cost of production been the lower because of the fuel prices. And also you need to remember that during that period of April to June, we have seen some curb on the supply of fuel to various industries, various sectors. Now that supply has been normalized, so all these things are contributing in that. So the number one is export number and then the consumption number.
1: बिहार से हमारे साथ टिंकू जुड़ रहे हैं। टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते
4: मैम, मैं पोस्ट ऑफिस गए थे, बेगूसराय कोई गांव है, ठीक है, और मैं उससे पूछे थे संतोष पॉलिसी करना है इंश्योरेंस, तो वो पूछा क्या पोस्ट ऑफिस वाला अधिकारी
0: कौन सी पॉलिसी आपने, टिंकू जी कौन सी पॉलिसी आपने कही?
4: संतोष, संतोष,
0: संतोष पॉलिसी।
4: हाँ, पोस्ट ऑफिस का है, संतोष पॉलिसी इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस हो या
0: कुछ। अच्छा, ठीक है।
4: तो मैं वो पूछा आपका उम्र क्या है, तो मैं बोले 41। तो बोला कि 19 साल का पॉलिसी होगा आपको, 60 साल में आपको पूरे रुपया मिल जाएगा। तो सर वो 2 लाख मगर 1300 रुपया मंथली बोला था जमा करने के लिए। 2 लाख से तो ज्यादा पड़ रहा है क्या? जीएसटी वीएसटी वो तो कट रहा है क्या? इसमें पोस्ट ऑफिस में तो कोई एजेंट वगैरह तो है नहीं, तो एजेंट चार्ज तो लगता नहीं है, यही मैं जानकारी चाहते हैं। और एक और सवाल है, जैसे पीपीएस अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में कराते हैं, उसको ब्याज दर में क्या फर्क है और बैंक में क्या फर्क है, दोनों में जानकारी चाहिए सर।
0: पहले अगर मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दूं कि पीपीएफ आप कहीं भी खोले, चाहे आप बैंक में खोले या डाकघर में खोले, ब्याज की दर एक होती है, क्योंकि पीपीएफ को बैंक नहीं चलाता। बैंक वहां पर एक तरीके से आपके लिए एक सुविधा मुहैया कराता है कि आप हमारे यहां आकर के अकाउंट खोल लीजिए, डाक घर में भी आपको हो सकता है, तो उसको लेकर के आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि जो आपने जिस पॉलिसी की बात की, जीवन बीमा पॉलिसी की बात की, पहली बात की देखिए व्यक्तिगत तौर पर जब आप जीवन बीमा पॉलिसी की बात करते हैं उसमें कोई जीएसटी नहीं होता है।

0: उसमें जीएसटी को लेकर के अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है, व्यक्तिगत तौर पर नहीं है। हाँ, यदि एक सामूहिक आप किसी कंपनी की तरफ से ले रहे हैं तो वहां पर आपको देना पड़ता है। रहा सवाल कि कितने समय के लिए लेना है, वो हर पॉलिसी की अपनी शर्तें होती हैं। और डाकघर की जो जीवन बीमा पॉलिसीज है वो बहुत अच्छी पॉलिसी है, उनमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है और उसमें सुरक्षा भी काफी ज्यादा होती है।
1: Moving on to crude now, the global crude oil prices reversed their early gains today after Iran's foreign ministry said negotiations with the US could be pursued based on national interest. Brent crude was trading 0.8% down at $87.35 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 1.5% down at $81.23 per barrel when reports last came in. Quick comment, Shishiji.
0: The problem we are facing at this moment is there's still a lot of uncertainty. Sometimes you are finding that the Iran is saying, okay, we are ready to negotiate, but only on the national interest. On the other side, when you hear US president, he has his own way of explaining the thing. So at this moment, today you will see, I mean, as you just mentioned, that it was down by 8% and it was around 87 barrel.
1: 0.8%.
0: 0.8% and it was $87 a barrel. For us, from the Indian perspective, it is coming down below 80, then only there will be some relief. But anything above 80 is not good for rupee as well as for prices of petrol and diesel.
1: Right. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.5% up at 1,42,390 rupees per 10 grams, but silver was trading 1.2% up at 2,19,670 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi commodity exchange mein agast anubandh wala sona aadhe pratishat se adhik badhkar 1,41,754 rupees per 10 gram par karobar kar raha tha aur september anubandh wali chandi 1.3% ki badhat ke saath 2,19,233 rupees par chal rahi thi. जी संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी आपसे सोने और चांदी के भाव पर.
0: एक एक दिलचस्प बात यह है कि लड़ाई के बीच में सोने चांदी के भाव में गिरावट आ रही है. ये कई बार लोगों को हैरान भी कर रहा है, लेकिन आप इसको सीधा जोड़िए डॉलर से. जब जब डॉलर मजबूत होगा सोना उतना ही ज्यादा कमजोर होगा.
2: शिशिर जी, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारे तमाम कॉलर भी जुड़े हैं हमारे साथ में, उनके भी सवालों के आपने जवाब दिए, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू सो वेरी मच शिशिर जी. एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 450 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,239. इंडियाज कोर इंडस्ट्रीज रजिस्टर ग्रोथ ऑफ 5% इन जून दिस ईयर एंड द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस decline. And that's all we have in this edition of Market Mantra. I am Nishit Kumar along with my co-anchor Prachi Priya saying goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें. You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
4: Samir, आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा. यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात. मेरी सामने पेश है फरमाइश फिल्मी नकू पर मबनी प्रोग्राम तबील इरशाद. तमाम सामीन की खिदमत में अब्दुल्ला की जानिब से पुरखलूस आदाब.

आप एक मंदिर फिल्म नगमा सुन रहे थे, लता मंगेशकर का गाया हुआ, और नगमा निगार शैलेंद्र की तरतीब भी थी शंकर जयकिशन ने। फरमाइश आप सब की हमें मौसूल हुई थी। रामगंज खंडवा से विजय महविया, कविता महविया और पेंटर बाबू लावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब, रघुवीर नगर दिल्ली से फरमाइश इस्तेमाल करते हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रीति मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, कोजागिरी कॉलोनी कोपर गांव से राजू मारोदे, माया मारोदे, प्रिया मारोदे और उनके साथ की एक और खातून, टाइगर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, पलोंग निजामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रोमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी, अस्तपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद,

इंटर अहमदाबाद से कंचन सुनार कुसुम और सरोज सुनार, जय बिहार नजफगढ़ से शाहरुख फारूक शहनाज इनके साथ इनकी घर की कौर खातून, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टेके यशोधरा राम टेके शराबिया राम टेके, ये फरमाइश हमें मौसूल हुई गांव कल्याण मल्लका जिला भटिंडा पंजाब से अमृतपाल सिंह रामगढ़िया परमिंदर मनिंदर सिंह और एक और साथी, चंडीगढ़ से सतीश अनीजा बिमला अनीजा चंद्रेश गौहर वंदना गौहर जयपाल यादव इनके सामने सागर मध्य प्रदेश से, राणा उत्तर प्रदेश से फहीम मंसूरी फातिमा मंसूरी, और ये फरमाइश इस साल की है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जस्सी जसबीर जस्सी सीता गीता, ये फरमाइश इस साल करते हैं उत्तर नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल भानु प्रकाश कमला रानी, और सामीन अब आपको गूंज उठी शहनाई फिल्म का नगमा सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ, इस नगमे को कलमबंद किया भरत व्यास ने, मौसीकी से सजाया है वसंत देसाई ने, फरमाइश आप सबके में मौसूल हुई सुरेश गनीजा पूनम गनीजा दिशानी जलालाबाद वेस्ट से इस नगमे को सुनना चाहती हैं, गुजरात गांधी ग्राम से परवीन सोनी कलावती सोनी प्रथम सोनी ने भी इस नगमे को सुनना चाहा है, और ये फरमाइश चिरमेरी कुरासिया कालरी से हमें मौसूल हुई इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह और ऋषभ सिंह की, मल्लापुर दाखा से राजेश जैन बिट्टू जैन घोटना संजीव जैन आलिका डबवाली से बसंत सिंह चंद राजकुमार कुलदीप गांधी, ये फरमाइश चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा प्रियंका शर्मा की जानिब से मौसूल हुई, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहानकर सरिता गोहानकर अर्जुन गोहानकर अब्दुल गफ्फार डावर अब्दुल हक डावर जियाउल हक डावर नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से इस नगमे को सुनना चाहते हैं, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी भी फरमाइश स्टार करते हैं, खंडवा की सहेलियां शामिल हुई हैं हमीदा बानो आशा भदौरिया और सईदा बानो, फरमाइश स्टार करते हैं मास्टर विट्ठल सरोशी सुषमा सरोशी मायरा सरोशी इनके साथ हैं काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से, ये फरमाइश हमें इस साल की है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून अंसारी और इनके साथ हैं सुरीता रमेश साहू, नई बस्ती गंज डुडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी नजमा बेगम हाशमी मोहम्मद तौसीफ हाशमी इनके साथ इनकी एक और घर के फर्द हैं, राहुल मनवर सरला मनवर बेबी प्रियांशी शाहूनगर यवतमाल से फरमाइश इस्तेमाल करते हैं, कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह शाहजहां बेगम मरियम जैनब इनके साथ हैं, ख्याल शरीफ जिला खंडवा से सलीम चौधरी माहिनूर और सुल्ताना, रेलवे रोड गजडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी नजमा बेगम नाज बेबी फातिमा गाजी, और फरमाइश में इरशाल की है राहटगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्ष रामेकर दिलीप रामेकर अक्षय रामेकर, गांव व पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नून अंसारी फरियाद हुसैन अंसारी शकील अहमद इदरीसी और इनके ढेर सारे दोस्त अहबाब घर के अफराद, ये फरमाइश हमें इस साल की है बैला डेली बस्तर छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद देवदास मोहित कुमार देवदास ज्योति देवदास और भी कुछ साथी हैं, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ भी

सुने संगम फिल्म का दो गाना आपने सुना, आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। इस गाने को कलमबंद किया शैलेंद्र ने, मौसीकी से सजाया था शंकर जयकिशन ने। सुनना चाहता आप सब लोगों ने, नाम इस तरह है, जमानिया गाजीपुर से सूरज जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, सादर शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, नई दिल्ली से अजहर अहमद अलवी, इरशाद अहमद अलवी, शाहना बेगम अलवी, कोलकाता से सुब्रत चौधरी भी फरमाइश लेकर आए हैं और ये फरमाइश में मौसूल हुई प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, धुर्वी जोशी की, साथ बहन के साथ हैं घर की कौरफर्द। फरमाइश इस साल करते हैं जग राव से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, आरव खुराना और एक कुछ और साथी। तुम्बा मार्केट कीर्ति नगर नई दिल्ली से लड्डू कुमारी, निवेश कुमार, सुशांत, प्रिया झा, जमुनानगर खंडवा के बच्चे शामिल हुए, अल्तमस समीना फिरदौस, कल्पना मदन झा, मानव और मयंक, नरोली फाटक भिलाड़ वापी गुजरात से, स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नंगली डेरी नजफगढ़ से मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुक टुक इनके साथ है। ठीक है, मध्य प्रदेश से शबनम, शौहर अकरम, दोनों बच्चे,

रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, दिव्यांशी विश्वकर्मा, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से शामिल हुए हैं। नर्मदा पार्क मंगल बेड़ा से मिस्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीप पटेल, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले और अहले खाना, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, छोटा भगत की शुताशु, फाजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल खेरा, विशु खेरा, और नई दिल्ली उत्तर प्रदेश से जॉन सीना, बिया टेलर, सुमन, सरिता, पन्नाशी साल की मोहन प्रकाश, गौतम रोटर, दबीर वर्सन, शबनम अनवार ने अमीर खुसर रोडगंज ढुडवारा से, और ये फरमाइश इस साल की है, भोपाल के राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, ये फरमाइश हमें इस साल करते हैं। पश्चिम रोग गंडवारा से मस्टर अलीम रजा सिद्दीकी, मस्टर मनोहर अंसारी, फैजल अलीम सिद्दीकी, मोदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी, और ये फरमाइश इरशाद करते हैं खंडवा की तीनों बहुएं साबरा, शबाना और रईसा। राजनगर कांति निकेतन से कांति गुप्ता, कुशेश्वर कांति गुप्ता और रुद्र गुप्ता। समीर अब आपको सुनाते हैं अनजाना फिल्म का ये दुआना, आवाज है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसिकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फरमाइश जो मौसूल हुई है वो आप सबकी। गणेशवाणी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार, सारिका, एमडी इरफान खान, मुस्कान खातून, रौनक खातून, मलेरकोटला पंजाब से, विनायक मिंडे, मंगला मिंडे, शुभम मिंडे, आकोट से फरमाइश साल किए हैं उन्होंने, और ये फरमाइश हमें मौसूल हुई है। कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान, फैजी फराज, तेजस काले, संतोष काले, लोकेश काले, शिगांव बुल्ढाणा महाराष्ट्र से, भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा, रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मौजम शेख, फरत मौजम शेख, बेबी अलिशबा शेख, ये फरमाइश हमें इस साल की है। नरेंद्र मिर्गी, प्रियादर्शनी मिर्गी, डॉक्टर प्रियंका कालपंडे, साईनगर आरबी महाराष्ट्र से। तो ये सामने आप सबकी पसंद पर ये दुकान आप सबकी खिदमत में है।

0: Σαν να μην πάψουν να είναι φαρμάκι φίλμι να έχουμε πρόβλημα με την προκριά μου, τα μερία σιάντ. Η προγράμμα μιτζαρία για άραβο τσουγιά, η σαν μην περιάψουν ήχο πρέπει να παρέσει αγίστη.
1: Η Ακαρσουάνι είναι Μπαρεσαδίρ και χαμπρούκι σάτ με Τανβίρ. Πέλε χαμπρούκι σουρχιά. Parliament का मॉनसून इजलास शोरगुल के साथ शुरू हुआ. दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलात पर शोर शराबे की वजह से बार बार मुलतवी करनी पड़ी. मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में मुजाहरीन के साथ बातचीत की है. उन्होंने धरना खत्म करने और मामूल के हालात बहाल करने की अपील की. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्डोवा के दरमियान मजबूत इकतसादी शराकतदारी और आला तरक्की वाले शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर जोर दिया है. जम्मू डिवीजन में शदीद बारिश से मजीद चार लोगों की जान चली गई, जिससे पिछले दो रोज में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके के मुख्तलिफ अजला में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया. कल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी.

किया गया है। और लेबर पार्टी के लीडर एंडी बर्नमैन बर्तानिया के नए वजीर आजम की जिम्मेदारी संभाल ली है। अब खबरें तफसील से। मानसून इजलास के पहले दिन आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। अपोजिशन पार्टियां नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर हंगामा आराई करती रहीं। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिनभर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत हाल ही में फौत हुए अपने 6 साबिक अराकीन को ताजियत पेश करने के साथ हुई। ऐवान ने कतर के अमीर के वालिद शेख हम्मद बिन खलीफा अस्सानी को भी खराज अकीदत पेश किया। ताहम वक्फे सवाल की कार्रवाई नहीं चल सकी क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अपोजिशन अराकीन नीट मामले पर नारेबाजी करने लगे। पहले स्पीकर ओम बिरला और बाद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिलीप साइकिया की जानिब से ऐवान में नज्म नस्क बरकरार रखने और कार्रवाई चलने देने की बार बार अपीलों के बावजूद एहतजाज जारी रहा, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दिनभर के लिए मुलतवी कर दी गई। इधर राज्यसभा की कार्रवाई में भी बार बार रखना पड़ा। राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत 9 मुंतखबा अराकीन की हलफबरदारी से हुई, जिसके बाद 4 साबिक अराकीन के इंतकाल पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। अपोजिशन अराकीन की जानिब से नीट पेपर लीक मामले और दीगर मामले उठाए जाने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। हालांकि चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कामकाज चलाने की कई मरतबा कोशिश की। राज्यसभा की कार्रवाई भी बाद में दिनभर के लिए मुलतवी कर दी गई। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने यह कहते हुए एक सूदमंद मानसून इजलास पर जोर दिया कि जिस तरह एक अच्छा मानसून मुल्क के लिए मुफीद होता है, उसी तरह एक तामीरी पार्लियामेंट मुल्क की तरक्की में ताउन करता है। इजलास के शुरू होने से पहले मीडिया से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान नए संगे मील हासिल कर रहे हैं, जिससे इस्लाहात की कामयाबी और भारत की बढ़ती सलाहियतों का इजहार होता है। मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में जंतर मंतर के मुजाहिरीन के नुमाइंदों से मुलाकात की। जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत से बात करने की तजवीज आज सुबह मुजाहिरीन की जानिब से आई। जनाब नड्डा ने कहा कि ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और मुजाहिरीन के वफद के साथ तफसील से शुरुआती जबानी बातचीत हुई। इसके बाद मुजाहिरीन के वफद ने सपहर 4 बजे के करीब हुकूमत को एक तहरीरी अर्जदाश्त सौंपी। जनाब नड्डा ने सभी मुजाहिरीन से धरना खत्म करने और इंतजामिया को मामूल के हालात बहाल करने में मदद करने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान मुजाहिरीन से कौमी राजधानी में अमन व अमान बरकरार रखने, तहम्मुल बरतने और कानून नाफिज करने वालों के साथ ताउन करने की अपील की, ताकि अमन व कानून की अवामी सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके। अपने वीडियो पैगाम में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव रंजन ने लोगों से तशद्दुद से बाज रहने, पुलिस हिदायत पर अमल करने और सोशल मीडिया पर अफवाहें या गैर मुसद्दका इतलात फैलाने से गुरेज करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा है कि वो अयोध्या के राम मंदिर में मुबैना चंदा गबन मामले में खसूसी जांच टीम एसआईटी तश्कील देने के इम्कानात पर गौर करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजारों को खबरदार किया कि वो इस मामले को सियासी रंग न दें। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमालया बागची और जस्टिस वी मोहना पर मुश्तमिल बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो एसआईटी की तश्कील के बारे में हिदायत हासिल करें कि क्या मुकामी पुलिस के बजाय उस एसआईटी पर भरोसा किया जा सकता है जो एफआईआर दर्ज होने से पहले इस पूरे मामले की जांच कर चुकी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मॉल्डोवा के दरमियान गहरी मुआशी मसरूफियात की बात की है और कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आला नमू के कई शोबों में इश्तराक को वसत देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। सदर जमहूरिया आज चिसिनाउ में भारत मॉल्डोवा कारोबारी फोरम से खिताब कर रही थी। विकसित भारत 2047 का हवाला देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत एतमाद और मुश्तरका खुशहाली पर मबनी इश्तराक का खाहां है, वहीं मॉल्डोवा का स्ट्रेटेजिक महल
वकू और हुनरमंदी अफरियादी कुवत भारतीय कारोबार के लिए उम्मीद अफजा इम्कानात की पेशकश करती है।

नमस्कार, मैं हूं महेंद्र कपूर की आवाज में धूल का फूल। इस फिल्म का दुकान आप सुन रहे थे। मेरा कलमबंद किया था साहिर लुधियानवी ने और मौसीकी तरतीब दी थी एन दत्ता ने। आप सबकी फरमाइश इस तरह से मौसूल हुई। पटेल नगर माल रोड से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया, सिटी सेंटर मेदावास से कंचन सुनार, कुसुम और सरोज सुनार, गुरमहल महसूस सीतामढ़ी बिहार से मुसर जहानाज, तल जहानाज, फरहत जहानाज, और ये फरमाइश हमें मौसूल हुई बब्बू अंसारी, डब्बू अंसारी, बीबी आलिया की, स्टेशन रोड गिरिडीह झारखंड से, जगदीश जोड़ी, पूजा और पायल जोड़ी कंडला बंदर कच्छ गुजरात से, आदर्श नगर मरोड पंजाब से, राजकुमार मीना शर्मा, निवान शर्मा, और ये फरमाइश हमें इरशाल की है जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, अजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज ने, और उनके साथ घर के कुछ और साथी हैं, बाजार सूरत गुजरात से, मोहम्मद नयू मुल्ला जी, याकूब मुल्ला जी, मंगल गेट मलकापुर से, रामेश्वर तालेकर, वंदना तालेकर, भारती ठाकुर और साथ में एक और साथी, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद।

तेलंगाना जिला खंडवा से संतोष जायसवाल, मधु जायसवाल और अमन जायसवाल, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, माधुरा कुमारी, मेरी पट्टी मधुबनी बिहार से, इनके साथ कुछ और इनके साथी भी हैं। गोरेगांव फिल्म सिटी मुंबई से मोहम्मद आसिफ सागर, मोहम्मद नुमान शेख, मोहम्मद सुलेमान शेख, शेरवानी स्कूल का निडवाड़ा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनुर मास्टर, भाटापारा के बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृग भी फरमाइश लेकर आ गए हैं, बरगद बेल हुबली कर्नाटक से सफी मुल्ला जी, इदरीस मुल्ला जी और रफीक मुल्ला जी, ये फरमाइश हमें साल की है डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा ने, चिमर पार्क दिल्ली से मौसूल हुई है, दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोदी असीन अनजान साइमन वाज बाबू अहद इनके साथ हैं, मनोज जेठवा अर्ष जेठवा बोराव की नगर श्री रामपुर से परमेश करते हैं, बीकानेर राजस्थान से कैला चंद सोनी, गोविंद उत्तम कुमार सोनी इनके साथ हैं, समीर फरमाइश हमें साल करते हैं, गायत्री कॉलोनी खंडवा से फैज अहमद अफसाना और हसन लाला, सैयद मसरूर शाइना हसन नाजिया कहां से फरमाइश, कुमारेड़ा सहारनपुर से फरमाइश, सुपन मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सुपन ताड़े, विजय ताड़े जी गांव विदर्भ से वसुंधरा भोजने, पीएस नाहपकर अहमदपुर के गांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली और वैदिका फूलमाली, जब्बार मोहम्मद नजीब खान, मंजू निमी खान जी पीर उदयपुर से और इंद्र चौक दिल्ली से, अजीम वकार, माहिर अजीम, निशा अजीम, गांधी रोड गंज डुडवारा से मोहम्मद अजीम और जावेद मुन्ने सलमानी, मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादी खत्री और मोहम्मद यूसुफ खत्री चिपा कॉलोनी खंडवा से ये फरमाइश हमें मौसूल हुई, अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले देवयानी और गणेश कामले की, जेल रोड राज जालंधर से सोनाली जहां, रोशन जहां और मन्नत जहां को शामिल कर लिया गया है, ये फरमाइश हमें आशकियाना अपार्टमेंट बांद्रा मुंबई से मौसूल हुई है, मोहम्मद मुजीब शेख, जैना नाबिया शेख, बेबी अमिया शेख की, ऐसा में नवाब को सुनाते हैं हमराही फिल्म का दो गाना, मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हजरत जयपुरी नगमा निगार है, मौसीकी को सजाया है शंकर जयकिशन ने और फरमाइश आप सबकी मीना राजेश रिंकी गुलाब कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश से, ये फरमाइश हमें इरसाल की है डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीद सिद्दीकी, ईशान अहमद सिद्दीकी ने पुरानी बिलाई 3 चरौदा छत्तीसगढ़ से तशरीफ लाते हैं और ये फरमाइश इरसाल करते हैं, ताज अहमद अंसारी, गुलाम साबिर राय, मिलाद जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, अकोला महाराष्ट्र से रमेश खटनकर, वैशाली खटनकर और धनंजय खटनकर को शामिल कर लिया हमने, गुजरात गांधीग्राम से परवीन सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी, मोहल्ला पठान कुरावली से बेगम समीरा खान, शेख मोहम्मद अजीम भाई, कामरान खान, पालदा नाका इंदौर मध्य प्रदेश, हसीना भी मंसूरी, रफीक मंसूरी, आमिना भी मंसूरी और ये फरमाइश मेहर साल की है, किसने की है, नाम है महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनित नाचानी ने, रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि नीलम गुप्ता और रूपा इलाहाबादी, एश बाग पीली कॉलोनी लखनऊ से ये फरमाइश हमें इरसाल की गई, तो लिए सामीन आप सबकी पसंद करिए, दो गाना आप सबकी खिदमत में।

जैसे हम इन प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवाते हैं गीता दत्त और अमर नाटी की आवाजों में जिद्दी फिल्म का दो गाना, नगमनिगार से जयपुरी और मौसीकी सजाया सचिन देव बर्मन ने। फरमाइश आप सबके में मौसूल हुई। खदान कोठी बोरो पारा चौक बसबेरिया वेस्ट बंगाल से मोनी देवी शाह जयप्रकाश शाह अनिरुद्ध बाबू उनके साथ हैं और ढेर सारे घर के अफराद भी। ये फरमाइश हमें मौसूल हुई सौरभ निषाद प्रकाश कुमार प्रमोद बगाड़े वर्ष बगाड़े प्रतीक बगाड़े तालुका नानदुरा से गांव है कोलासर तहसील रोड गंडवारा से केशराही गुड़िया बेगम वकील इनके साथ हैं। ये फरमाइश हमें इरशाल किए हैं जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी ने। राजू गजानन संजय और साथ ही बुलडाना महाराष्ट्र से फरमाइश स्वागत हैं आसल गांव बाजार। ये फरमाइश वरुड तहसील वरुड जिला अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कासलेकर की। तालाब डुमराव सुहेल अंसारी सुल्तान अंसारी और अस्मा नाज अंसारी। आवास विकास कॉलोनी कासगंज से पवन गौड़ तन्मय पूर्वी गौड़ आशीष गौड़। पद्मा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिर नासिर साजिद शाहिद और गुमला झारखंड से एसएम जावेद शगुफ्ता अंजुम। पटियाली रोड गंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी नुसरत बेगम बेबी अरीबा और साथ में हैं और भी इनके साथी। जय मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी नसीर अंसारी नौरीन अंसारी। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और ममता मोदी। फरुखाबाद साहबगंज चौराहा मोहल्ला साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश सुरेश चौरसिया सरोज चौरसिया।

शिवा चौरसिया। गीत फरमाइश विराटनगर नेपाल से प्रियंका कुमारी शर्मा, वंदना कुमारी शर्मा, रेणु शर्मा और अहले खाना। मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह की फरमाइश हमने शामिल की है। ये फरमाइश सहेली ग्रुप उदयपुर से फरीदा शबनम, सबिया खानम, रईसा निम्मी, सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली नारंग सहारनपुर से, गांव फरानसी हिसार से राजकुमार दुद्दी, प्रमोद कुमार दुद्दी, पुष्पेंद्र कुमार दुद्दी। तो लीजिए आप सबके पसंद भी, आप सबकी खिदमत में।

0: فهميني شي نغمي كي ساعات فما يشوف فيلمي نغمو برما مي بروجرام تعمل ارشاد ختم ہوتا ہے یا کاشوانی ہے آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات جی سامین اب پیش ہے پروگرام سرخیوں میں
1: आकाशवाणी है प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पूर्वी यूरोप में भारत के राजनयिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशित कुमार।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 राष्ट्रों की यात्रा पर कल मोल्डोवा पहुंची और बाद में फिर वो नॉर्थ मैसेडोनिया और फिर बाद में रोमानिया पहुंचेंगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी आपका बहुत स्वागत है।
3: बहुत धन्यवाद।
2: प्रोफेसर जोशी, राष्ट्रपति सबसे पहले अपने पहले चरण में कल मोल्डोवा पहुंची हैं और ये गौरतलब है कि ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी मोल्डोवा की। 20 जुलाई से 21 जुलाई तक ये यात्रा होने वाली है। इस यात्रा को आप कैसे देखती हैं अगर हम खास मोल्डोवा की बात करें तो?
3: निश्चित जी, ये हमारे भारतीय राष्ट्रपति की एक ऐतिहासिक यात्रा है मोल्डोवा की। यदि मोल्डोवा और भारत के संबंधों की बात की जाए तो कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर बहुत अच्छा सहयोग है दोनों देशों के बीच में। और मोल्डोवा की यदि बात की जाए तो छोटा देश है यूरोप का, लेकिन ये सामरिक दृष्टिकोण से अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बड़ा महत्वपूर्ण है पूरे विश्व के लिए। यदि हम पूर्वी यूरोप की बात करें तो इसके द्वार के रूप में मोल्डोवा को जाना जाता है। यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमने हाल ही में एक ऐतिहासिक FTA साइन किया, हिस्टोरिक डिफेंस डील साइन की। तो सामरिक दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण

0: दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मोल्डोवा भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी अब नजर आता है। और जब भारत ग्लोबल साउथ की बात वैश्विक स्तर पर करता है, ग्लोबल साउथ को नेतृत्व देने की बात करता है और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय जब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर रिफॉर्म्स की बात करता है, गवर्नेंस में रिफॉर्म्स की बात करता है, तो वहां मोल्डोवा भारत की बात को इको करता हुआ नजर आता है। तो एक गहरा संबंध दिखाई पड़ता है दोनों देशों के बीच में। और व्यापार की दृष्टि से मैं कहूं तो फिर निवेश को देखते हुए, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट्स को देखते हुए, आईटी सर्विसेज के क्षेत्र में, प्रोफेशनल मोबिलिटी के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खुलते हुए नजर आते हैं। तो चाहे कूटनीतिक स्तर पर देखें, सामरिक स्तर पर देखें, व्यापारिक सहयोग की ओर देखें, ऊर्जा सहयोग की ओर देखें, मोल्डोवा भारत का आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। और हमारी राष्ट्रपति जब इस देश की यात्रा पर है तो दोनों द्विपक्षीय स्तर पर और बहुपक्षीय स्तर पर मुझे लगता है दोनों देशों के बीच में सहयोग और ज्यादा गाढ़ा होगा।
1: राष्ट्रपति के साथ दल में बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन भी और बिजनेस कम्युनिटी भी साथ में वहां पे गए हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मौजूदा जो हालात हैं, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रहे हैं, उसमें जो भारत का ये आउटरीच है, खास करके ऐसे देशों में, अगर हम यूरोप की, आपने यूरोपियन यूनियन की बात की, जो मदर ऑफ ऑल डील्स, जो ट्रेड डील हुआ था, तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कितना महत्वपूर्ण है भारत का ये आउटरीच टुवर्ड्स मोल्डोवा।
0: पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि वैश्विक राजनीति में लगातार एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है, जिसमें एक और रशिया यूक्रेन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा तो पश्चिम एशिया के संकट ने पूरे विश्व के सामने नई नई चुनौतियों को प्रस्तुत किया है, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर मानवीय सुरक्षा तक। ऐसे में भारत अपनी सकारात्मक कूटनीति के माध्यम से वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देता हुआ नजर आता है और लाइक माइंडेड देशों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में साझा सहयोग की और साझा विकास की बात करता है। तो हम याद करें कि अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे महत्वपूर्ण देशों की यात्रा संपन्न की। इसके पहले वो यूरोप के दौरे पर थे, इसके पहले उन्होंने पश्चिम एशिया के, अफ्रीका के देशों का दौरा किया, यूरोप के कुछ और देशों का दौरा किया। तो ये जो एक आउटरीच प्रोग्राम है, इसके जरिए भारत ने न सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को सफलतापूर्वक पूरा करने का काम किया है, भारत ने वैश्विक स्तर पर इस बात का संदेश दिया है कि युद्ध किसी भी बात का समाधान नहीं है। आज का जो विश्व है उसमें शक्ति की परिभाषा में तकनीकी सहयोग, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं। और इस दृष्टि से मोल्डोवा हमारा एक महत्वपूर्ण साझेदार नजर आता है, न सिर्फ बहुपक्षीय स्तर पर ईयू के मेंबर के रूप में, जो हमने एक एफटीए कर रखा है, तो निवेश के, को मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग जो द्वार हैं संभावनाओं के, वो खुलते हुए नजर आते हैं। द्विपक्षीय स्तर पर फिर जब जो कूटनीतिक लक्ष्य लेकर के भारत वैश्विक स्तर पर बात करता है, चाहे वो ग्लोबल साउथ का एजेंडा हो या फिर अलग अलग हम गवर्नेंस में रिफॉर्म्स की बात करते हो या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हो, तो वहां पर फिर हमको मोल्डोवा एक सहयोगी के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए मोल्डोवा का ये दौरा हर प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: प्रोफेसर जोशी और राष्ट्रपति अपने यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंचेंगी। प्रोफेसर जोशी, हम ये समझना चाहेंगे कि नॉर्थ मैसेडोनिया का कितना प्रभाव, किस प्रकार आप इसे देखती हैं?
0: देखिए, नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और भारत उन यूनाइटेड नेशंस के 40 देशों में से एक है जिसने यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन फॉर नॉर्थ मैसेडोनियाज एडमिशन टू यूनाइटेड नेशंस जो 1993 में हुआ था, उसको को स्पॉन्सर किया था। और नॉर्थ मैसेडोनिया की एक एम्बेसी नई दिल्ली में 2008 से है। दोनों ही देशों के, यदि हम सामरिक सहयोग की दृष्टि से बात करें, सांस्कृतिक सहयोग की बात करें या आर्थिक सहयोग की, तो दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। और नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो यूरोपियन यूनियन के एक सदस्य देश के रूप में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रदान करता है हमारे सारे प्रोडक्ट्स के लिए, तो हमारे लिए एक मार्केट के रूप में, फिर नॉर्थ मैसेडोनिया हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है तो उस दृष्टि से, और एक को मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग हब ये भारत को मानता है, तो इस दृष्टि से भारत के बिजनेसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि मैं आपको दूसरे यदि क्षेत्र बताऊं तो फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दोनों देश लगातार अपने सहयोग को बढ़ा रहे हैं। और ये भी बता दूं कि यदि हम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो मदर टेरेसा नॉर्थ मैसेडोनिया से ही ताल्लुक रखती थी, तो फिर बाद में ये इंडियन सिटीजन बनी। तो यदि हम ऐतिहासिक सहयोग या ऐतिहासिक रिश्तों की बात करें तो दोनों देशों के बीच में बड़ा गाढ़ा रिश्ता है। और इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के भी भारत नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो इसके राष्ट्रपति का ये दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: जी प्रोफेसर जोशी, यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी नॉर्थ मैसेडोनिया की, और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि वहां के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जी वहां पहुंचेंगे 21 और 22 जुलाई को, और वहां नॉर्थ मैसेडोनिया के असेंबली को भी एड्रेस

0: करेंगे। और साथ साथ इंडिया नॉर्थ मैसेडोनिया बिजनेस फोरम, अभी अभी हम थोड़ी देर पहले बिजनेस की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रोफेसर जोशी। अगर हम देखें जैसे कि हमने पीछे भी जब बात कर रहे थे मोल्डोवा की, तो बिजनेस खास करके करंट परिप्रेक्ष्य में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितना ये आउटरीच इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जबकि हमें किसी भी एक ब्लॉक पर हम डिपेंड नहीं रह सकते आज के डेट में, ये आज का ये वास्तविक सच है। और दोनों ही पक्ष जो है, खास करके भारत की बात करें या नॉर्थ मैसेडोनिया की बात करें, दोनों ही काफी कीन है अपने इकोनॉमिक टाइज को और ज्यादा गहरा बनाने में। और प्रायोरिटी सेक्टर्स की आपने बात की, एग्रीकल्चर की बात की, फार्मा की बात की, साइंस टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैसे आप देखते हैं इसे?
1: देखिए, हमने अलग अलग क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की बात की और मोल्डोवा के साथ भी भारत के इसी प्रकार के घनिष्ठ संबंध हैं। यदि हम व्यापार की दृष्टि से बात करें तो दोनों ही द्विपक्षीय, और फिर मैं ईयू पर आऊंगी, ईयू के मेंबर के रूप में मैसेडोनिया का एक महत्व बढ़ जाता है। और भारत जिस तरह से लगातार अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को मजबूत करते हुए, विशेषकर तब जब ट्रंप ने हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए थे, तो भारत ने इस बात को लगातार सुदृढ़ करने का प्रयास किया कि जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं उनके साथ हम साझा सहयोग, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, सामरिक क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, हम इसको आगे बढ़ाएं और लगातार अपने लक्ष्यों की पूर्ति करें। तो फिर इस दृष्टि से मैसेडोनिया के साथ फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आईटी सर्विसेज के क्षेत्र में सहयोग महत्वपूर्ण जाता है। और फिर ईयू के मेंबर के रूप में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमको ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो हमारे जो बिजनेसेस हैं और हमारा जो विशेषकर लघु और मध्यम उद्योग है, उसके लिए फिर ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संभावनाओं का क्षेत्र खुल जाता है इन यूरोपियन देशों के साथ यदि हमारा सहयोग बढ़ता है। तो क्योंकि भारत लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि ये जो अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज अभी तक की रही है, इन पर भारत काम करे, और इस प्रकार के देशों के साथ जो भारत की बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इको करते हैं, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे साझा सहयोग की, सबके विकास की बात हो, तो फिर ऐसे देशों के साथ आगे बढ़ा जाए।
0: प्रोफेसर जोशी, और राष्ट्रपति अपनी यात्रा के अंतिम चरण में जुलाई 23 से लेकर जुलाई 25 तक रोमानिया की यात्रा पर होंगी। गौरतलब है कि ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की 3 दशक में या 3 दशक के बाद ये पहली यात्रा होने वाली है। और फिर से हम बता दें कि ये यात्रा वहां की राष्ट्रपति के निमंत्रण पर यह हो रहा है। तो रोमानिया का जो ये विजिट है प्रोफेसर जोशी, ये कितना महत्वपूर्ण है?
1: देखिए, रोमानिया की ओर भी देखें तो भारत और रोमानिया के बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशंस 1948 से ही हैं, और एक सामरिक सहयोग की दृष्टि से देखें तो दोनों ही देश लगातार अपने सहयोग को बढ़ा रहे हैं। ये फिर एक ऐतिहासिक यात्रा है जो हमारे राष्ट्रपति की पहली बार रोमानिया की यात्रा होने वाली है किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की। तो चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था का या आर्थिक सहयोग का क्षेत्र हो, तकनीकी सहयोग का क्षेत्र हो, सामरिक पार्टनरशिप की हम बात करें, तो फिर हर प्रकार से ये दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है। 1948 में दोनों देशों के बीच में संबंध विकसित हुए, और फिर इसके बाद एम्बेसी लेवल के जो कूटनीतिक संबंध है वो 1957 में स्थापित हुए। 2023 में दोनों देशों ने अपने कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्षों को पूर्ण किया है, मनाया है। और रक्षा के सहयोग में यदि मैं बात करूं तो दोनों ही देशों ने एक ज्वाइंट कमेटी बनाई है डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर के, और कैसे को मैन्युफैक्चरिंग के, को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर के दोनों देशों ने एक बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन प्लान बनाया, जिसमें कि जो कन्वेंशनल हमारे रक्षा सहयोग के क्षेत्र है उसके अलावा साइबर डिफेंस, ज्वाइंट ट्रेनिंग और कैसे इंडस्ट्रियल कलेबरेशन को हम बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि मिलिट्री इंडस्ट्री जो कॉम्प्लेक्स है इसमें हम कैसे दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी शामिल कर सकते हैं, इसकी बात है। फिर हम यदि आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में देखें तो दोनों के बीच का बायलैटरल ट्रेड बहुत बड़ा अमाउंट, और रोमानिया का लेकिन जिस प्रकार से लोकेशन है, भारत के साथ जिस तरह का सहयोग है, ईयूएस की जिस प्रकार की मेंबरशिप है, तो ये एक मार्केट एक्सेस भारत को देता है। और जो भारत की अलग अलग 500 कंपनियां हैं वो यहाँ रजिस्टर्ड है, तो भारत की कंपनियों के लिए यूरोप में ये महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है, आईटी के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। फिर रोमानिया एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर दिखाई पड़ता है, और भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है, भारत के ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात को ये भी साझा करता है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत के लगातार सहयोगी के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टि से भी हमारे राष्ट्रपति का ये दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
0: रोमानिया यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है, और इससे हम दोनों के बीच में, भारत और रोमानिया के बीच में संबंध और भी गहरा, खास करके आर्थिक संबंधों की बात करें तो और भी गहरा होने की। गौरतलब है प्रोफेसर जोशी की तीनों राष्ट्र, मोल्डोवा हो, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया, इन तीनों राष्ट्रों ने पिछले वर्ष जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो उसमें बहुत ही स्ट्रांगली सॉलिडारिटी सपोर्ट और एक बहुत ही साथ दिया था भारत का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर जोशी, कैसे देखते हैं इसे आप?
1: जी बिल्कुल, जैसे कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि मोल्डोवा, मैसेडोनिया और रोमानिया, ये तीनों देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करता है, तो इसमें ये देश भारत के बड़े सहयोगी के रूप में नजर आते हैं और ये बिल्कुल कहने से नहीं चूकते। भारत की जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसमें भारत ने लगातार साथ दे रहे हैं और इसीलिए इस दृष्टि से भी ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे राष्ट्रपति का इन तीनों देशों का। और आपको ध्यान होगा कि जब हमारे ऊपर दुर्दांत पहलगाम अटैक हुआ था और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, तो ये तमाम देश जो है ये भारत के साथ बहुत ही स्ट्रांगली हमको खड़े हुए दिखाई पड़े।
0: प्रोफेसर जोशी, और जाते जाते अक्सर जो दौरे होते हैं, राष्ट्रपति जी के दौरे हों, प्रधानमंत्री जी के दौरे हों, वो अगर हम यूरोप की बात करें, क्योंकि अभी यूरोप की चर्चा हो रही है, यूरोप की बात करें, बड़े राष्ट्र हैं जैसे फ्रांस हो गए, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, ये सारे देश, ये तो अपनी जगह अपने महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो तो साथ में समेटे हुए हैं ही, लेकिन ऐसे जो छोटे देश हैं जैसे हम मोल्डोवा की बात करें, मैसेडोनिया, रोमानिया, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप कैसे समझती हैं इसे, कैसे इसे आंकती हैं कि ये जो दौरा है राष्ट्रपति जी का पूरे यूरोपियन यूनियन या यूरोप महाद्वीप की अगर हम बात करें, तो कैसे आपस में इसे एक एसिमुलेट करते हुए देखती हैं इसे आप?
1: देखिए ऋषि जी, ये किसी भी देश को छोटा या बड़ा समझ करके कूटनीतिक दायरों में बात करने से बेहतर होता है कि हम उस देश के सामरिक महत्व को समझे, उसकी लोकेशन क्या है, वो किस तरह से कूटनीतिक संबंधों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों ही स्तर पर भारत के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये देखते हुए ये इन तीनों ही देशों की अपनी एक भूमिका है, भारत के साथ जो इन तीनों देशों के संबंध है वो द्विपक्षीय स्तर के अलावा, जब बहुपक्षीय स्तर पर हम ओवरऑल एक यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं या यूरोप के दूसरे देशों के साथ बात करते हैं, तो फिर उस दृष्टि से इन देशों के साथ सकारात्मक संबंध न सिर्फ पूरे यूरोप में, फिर भारत की जो एक सकारात्मक आउटरीच है उसको बढ़ाने में सहयोगी सिद्ध होते दिखाई पड़ते हैं, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिस तरह से ग्लोबल साउथ के देशों के नेतृत्व की बात कर रहा है या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, तो वहां ये एक वोटिंग नेशन के रूप में यूनाइटेड नेशंस में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये एक देश एक वोट के रूप में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये भारत की बातों को, भारत के उद्देश्यों को लगातार इको करते हैं। तो इस दृष्टि से भी इन देशों का भारत के साथ सहयोग और हमारे राष्ट्रपति के साथ दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है।
0: जी प्रोफेसर जोशी, आप हमारे साथ जुड़ी, बातें साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद निशीत जी।
2: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी यूरोप में भारत के राजनयिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशीत कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुरमेन, आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के नशरियात। लेन अब पेश है कव्वालियां, आज के फनकार हैं सईद साबिर कव्वाल और हम नवा।

0: अपोजिशन अराकीन की जानिब से नीट पेपर लीक मामला और दीगर मामले उठाए जाने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही कई मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। हालांकि चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कामकाज चलाने की कई मरतबा कोशिश की। राज्यसभा की कार्यवाही भी बाद में दिनभर के लिए मुलतवी कर दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए एक सूदमंद मानसून इजलास पर जोर दिया कि जिस तरह एक अच्छा मानसून मुल्क के लिए मुफीद होता है, उसी तरह एक तामीरी पार्लियामेंट मुल्क की तरक्की में ताउन करता है। इजलास के शुरू होने से पहले मीडिया से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान नए संगमील हासिल कर रहे हैं, जिससे इस्लाहात की कामयाबी और भारत की बढ़ती सलाहियतों का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता महीने की हुसूलियाबियों ने, जिनमें खलाई शोभा शामिल है, हर भारतीय को फख्र का एहसास कराया है। मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में जंतर मंतर के मुजाहिरीन के नुमाइंदों से मुलाकात की। जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत से बात करने की तजवीज कल सुबह मुजाहिरीन की जानिब से आई। जनाब नड्डा ने कहा कि यह मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और मुजाहिरीन के वफद के साथ तफसील से शुरुआती जबानी बातचीत हुई। इसके बाद मुजाहिरीन ने वफद के वफद ने सपहर 4 बजे के करीब हुकूमत को एक तहरीरी अर्जदाश्त सौंपी। जनाब नड्डा ने सभी मुजाहिरीन से धरना खत्म करने और इंतजामिया को मामूल के हालात बहाल करने में मदद करने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान मुजाहिरीन से कौमी राजधानी में अमनो अमान बरकरार रखने, तहम्मुल बरतने और कानून नाफिज करने वालों के साथ ताउन करने की अपील की, ताकि अमनो कानून की अवामी सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके। अपने वीडियो पैगाम में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव रंजन ने लोगों से तशद्दुद से बाज रहने, पुलिस हदायात पर अमल करने और सोशल मीडिया पर अफवाहें या गैर मुसद्दका इत्तलात फैलाने से गुरेज करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कल उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा कि वो अयोध्या के राम मंदिर मुबैना चंदा गबन मामले में खसूसी जांच टीम एसआईटी तश्कील देने के इम्कानात पर गौर करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजारों को खबरदार किया कि वो इस मामले को सियासी रंग न दें। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना पर मुश्तमिल बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो एसआईटी की तश्कील के बारे में हिदायत हासिल करें कि क्या मुकामी पुलिस की बजाय उस एसआईटी पर भरोसा किया जा सकता है जो एफआईआर दर्ज होने से पहले इस पूरे मामले की जांच कर चुकी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्डोवा के दरमियान गहरी मुआशी मसरूफियात की बात की है और कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आला नमू के कई शोबों में इश्तराक को वसत देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। सदर जमहूरिया कल चिसिनाऊ में भारत मोल्डोवा कारोबारी फोरम से बात कर रही थी। विकसित भारत 2047 का हवाला देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत एतमाद और मुश्तरका खुशहाली पर मबनी इश्तराक का खां है, वहीं मोल्दोवा का स्ट्रेटेजिक महल वकू और हुनरमंद अफरादी कुवत भारतीय कारोबार के लिए उम्मीद अफजा इम्कानात की पेशकश करती है। सदर जमहूरिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजी, मस्नूई जहानत, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे, ज़राअत, फार्मास्यूटिकल्स और सेहत देखभाल और मुस्तकबिल के इश्तराक के कलीदी मैदान करार दिया है। जम्मू कश्मीर में आज जम्मू डिवीजन में बारिश से वाबस्ता वाकयात में मजीद 4 लोगों की जान चली गई, जिससे पिछले 2 दिनों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। सैलाब से मुतासिरा राजौरी और पूंछ अजला में मुसलसल बारिश के सबब बचाव और राहत कार्रवाईयों में रुकावट पैदा होने से कम 7 अफराद अब भी लापता हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश, अचानक सैलाब और चट्टानों के टुकड़े गिरने के पेश नजर सूरत हाल का जायजा लिया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पूंछ 2 सरहदी अजला में बारिश से मुतल्लिक वाकयात में जान गंवाने वालों के हर कुनबे को 6-6 लाख रुपए की नकद इमदाद देने का ऐलान किया है। आज की शदीद बारिश ने पूंछ और राजौरी अजला में बचाव कार्रवाइयों को काफी मुतासिर किया। एक दिन पहले अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकये में 12 अफराद हलाक और मुतअद्दिद दीगर लापता हो गए थे। दोनों सरहदी अजला में आज देर रात वक्फे वक्फे से बारिश होती रही, जो आखिरी खबरें मिलने तक जारी थी। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल और शुमाल मशरकी हिस्सों में भी अगले दो दिन तक भारी बारिश की पेशगोई की गई है। मौसमियात के महकमे ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारेकल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार जजायर में भी आज गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। आज दिल्ली में हुई बारिश से लोगों को राहत मिली। महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक आज राजधानी दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 से 33 डिग्री जबकि कम से कम दर्जे हरारत 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को की है। लेबर पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद एंडी बर्नहम ने बरतानिया के नए वजीर आजम की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। केयर स्टार्मर के इस्तीफे दिए जाने के बाद शाह चार्ल्स सोयम ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 साल साबिक मेयर को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदऊ किया। इससे कबल कियर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर अपना आखिरी खिताब किया, जिसके बाद वो बाजाब्ता तौर पर अपना इस्तीफा देने के लिए बकिंगम पैलेस गए। उन्होंने कहा कि वो जनाब बर्नमैन को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और उन्होंने लेबर पार्टी के नए लीडर को अपनी मुकम्मल हिमायत का अज़्म किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शोरगुल के साथ शुरू हुआ। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलात पर शोर शराबे की वजह से बार बार मुलतवी करनी पड़ी। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में मुजाहिरीन के साथ बातचीत की है। उन्होंने धरना खत्म करने और मामूल के हालात बहाल करने की अपील की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मॉल्डोवा के दरमियान मजबूत इक्तिसादी शराकतदारी और आला तरक्की वाले शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर जोर दिया। जम्मू डिवीजन में शदीद बारिश से मजीद 4 लोगों की जान चली गई, जिससे पिछले 2 रोज में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। और लेबर पार्टी के लीडर एंडी बर्नहम ने बरतानिया के नए वजीर आजम की जिम्मेदारी संभाल ली है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। रेजा मेरा पेश है क्लासिकी मौसीकिया। इस प्रोग्राम के तहत उस्ताद अब्दुल लतीफ खान का सारंगी पर बजाया राग ललित सुनते हैं।

है। इजलास के शुरू होने से पहले मीडिया से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान नए संगे मील हासिल कर रहे हैं, जिससे इस्लाहात की कामयाबी और भारत की बढ़ती सलाहियतों का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता महीने की हुसूलियाबियों ने, जिन में खलाई शोभा शामिल है, हर भारतीय को फख्र का एहसास कराया है। मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में जंतर मंतर के मुजाहिरीन की नुमाइंदों से मुलाकात की। जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत से बात करने की तजवीज कल सुबह मुजाहिरीन की जानिब से आई। जनाब नड्डा ने कहा कि ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और मुजाहिरीन के वफद के साथ तफसील से शुरुआती जबानी बातचीत हुई। इसके बाद मुजाहिरीन के वफद ने सहपहर 4 बजे के करीब हुकूमत को एक तहरीरी अर्जदाश्त सौंपी। जनाब नड्डा ने सभी मुजाहिरीन से धरना खत्म करने और इंतजामिया को मामूल के हालात बहाल करने में मदद करने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान मुजाहिरीन से कौमी राजधानी में अमनो अमान बरकरार रखने, तहम्मुल बरतने और कानून नाफिज करने वालों के साथ ताउन करने की अपील की, ताकि अमनो कानून के अवामी सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके। अपने वीडियो पैगाम में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव रंजन ने लोगों से तशद्दुद से बाज रहने, पुलिस हदायात पर अमल करने और सोशल मीडिया पर अफवाहें या गैर मुतसद्दिका इत्तलात फैलाने से गुरेज करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कल उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा है कि वो अयोध्या के राम मंदिर में मुबैना चंदा गबन मामले में खसूसी जांच टीम एसआईटी तश्कील देने के इम्कान पर गौर करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजारों को खबरदार किया कि वो इस मामले को सियासी रंग न दें। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना पर मुश्तमिल बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानी से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो एसआईटी की तश्कील के बारे में हिदायत हासिल करें कि क्या मुकामी पुलिस के बजाय उस एसआईटी पर भरोसा किया जा सकता है जो एफआईआर दर्ज होने से पहले इस पूरे मामले की जांच कर चुकी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्डोवा के दरमियान गहरी माशी मसरूफियात की बात कही है और कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आला नमू की कई शोबों में इश्तराक को वसत देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। सदर जमहूरिया कल चिसिनाउ में भारत मोल्डोवा कारोबारी फोरम से खिताब कर रही थी। विकसित भारत 2047 का हवाला देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत एतमाद और मुश्तरका खुशहाली पर मबनी इश्तराक का खां है, वहीं मोल्डोवा का स्ट्रेटेजिक महल वकू और हुनरमंद अफरादी कुवत भारतीय कारोबार के लिए उम्मीद अफजा इम्कान की पेशकश करती है। सदर जमहूरिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजियों, मसनूई जहानत, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे, जरात, फार्मास्यूटिकल्स और सेहत देखभाल को मुस्तकबिल के इश्तराक के कलीदी मैदान करार दिया। जम्मू और कश्मीर में कल जम्मू डिवीजन में बारिश से वाबस्ता वाकयात में मजीद 4 लोगों की जान चली गई, जिससे पिछले 2 दिनों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। सैलाब से मुतासिरा राजौरी और पुंछ अजला में मुसलसल बारिश के सबब बचाव और राहत कार्रवाइयों में रुकावट पैदा होने से कम 7 अफराद अब भी लापता हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश, अचानक सैलाब और चट्टानों के टुकड़े गिरने के पेश नजर सूरत हाल का जायजा लिया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पूंछ 2 सरहदी अजला में बारिश से मुतालिक वाकयात में जान गंवाने वालों के हर कुनबे को 6-6 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया है। कल की शदीद बारिश ने पूंछ और राजौरी अजला में बचाव कार्रवाइयों को काफी मुतासिर किया। एक दिन पहले अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकये में 12 अफराद हलाक और मुतअद्दिद दीगर लापता हो गए थे। दोनों सरहदी अजला में कल देर रात वक्फे से बारिश होती रही। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी हिस्सों में भी अगले 2 दिन तक भारी बारिश की पेशगोई की गई है। मौसमियात के महकमे ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान व निकोबार जजायर में भी

0: आज गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। आज दिल्ली में हुई बारिश से लोगों को राहत मिली। महकमा मौसमियात ने कल दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक आज राजधानी दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री जबकि कम से कम दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को की है। लेबर पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद एंडी बर्नमैन ने बरतानिया के नए वजीर आजम की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। कीर स्टारमर के इस्तीफा दिए जाने के बाद चार्ल्स स्वयं ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 साल साबिक मेयर को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदु किया है। इससे कबल कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर अपना आखिरी खिताब किया जिसके बाद वो बाजाब्ता तौर पर अपना इस्तीफा देने के लिए बकिंगम पैलेस गए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शोरगुल के साथ शुरू हुआ। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलात पर शोर शराबे की वजह से बार बार मुलतवी करनी पड़ी। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में मुजाहरीन के साथ बातचीत की है और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्डोवा के दरमियान मजबूत इकतसादी शराकतदारी और आला तरक्की वाले शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। समय सबका एक बजा चाहता है। उर्दू सर्विस की आज की तीसरी मजलिस की नशरियात अब खत्म होती है। कल सुबह 9:30 पर पहली मजलिस की नशरियात लेकर फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए मेरी जी इजाजत, खुदा हाफिज, सब बखैर, जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस दुखद घटना में 4 भारतीय

भारतीय नागरिकों की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर है। मंत्रालय ने बताया कि घटना के समय जहाज पर 5 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 17 सदस्य थे। मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों पर हमला तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालना निंदनीय है और इससे बचा जाना चाहिए। सरकार ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन एक सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं, उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। नामची SSP ने बताया कि NDRF और स्थानीय एजेंसियां उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। हालांकि गैस रिसाव के कारण फंसे हुए लोगों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सुरंग ढहने के बाद गैस रिसाव की सूचना मिली थी। यह घटना मिमरंग पुलिस चौकी के अंतर्गत हुई। और खेलों में PV सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कुछ तो ए कुछ तो बो

भारतीय फिल्म से गीत सुना मन्ना डे की आवाज में और कार्यक्रम गीत सुना रहे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल।

सुराग फिल्म का गीत सुना आपने लता मंगेशकर की आवाज में, और जी हाँ, बहुत सारी यादें जरूर आपकी ताजा हो गई होंगी। भीगा भीगा मौसम, और इस समय अगर बात करें तो मौसम बिल्कुल भीगा भीगा है। स्टूडियो से बाहर अगर हम देखें तो बारिश की फुहार और मौसम बहुत खूबसूरत, कार्यक्रम भी खूबसूरत है। और आप हैं आकाशवाणी के AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर, जहां आज के इस कार्यक्रम में, जहां गीत सुनहरे कार्यक्रम में, जहां लेकर आते हैं हम गोल्डन एरा का फिल्म संगीत, तो उसमें आज आपके साथ आपका दोस्त अतुल इन खूबसूरत गीतों के साथ। सौदागर फिल्म से एक और खूबसूरत गीत आशा भोसले जी की आवाज में।

परख फिल्म के इस गीत में आपने सुना रविंद्र जैन साहब को, और कार्यक्रम में आगे बढ़े तो महेंद्र कपूर की आवाज में ये खूबसूरत गीत जब आप सुनेंगे तो बहुत सारी यादें ताजा हो जाएंगी, यकीन मानिए। आप सुन रहे हैं गीत सुनारे, कार्यक्रम फिल्म संगीत पर आधारित होता है, आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। कार्यक्रम में आज आपके साथ आपका दोस्त अतुल।

महेंद्र कपूर की आवाज में गीत आपने सुना पूरब और पश्चिम फिल्म से। और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये खूबसूरत गीत शराबी फिल्म से।

0: इसके साथ आज का गीत सुनारे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल और श्रोताओं को जी बलों में 2 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्की से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत में के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के

0: इसी के साथ गीत बाहर कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल और श्रोताओं कुछ ही पलों में 3 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद की मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही रद्द स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के हिंसा में बदलने से 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कल घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक और हिंसक बर्ताव किया। वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देशों के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले की SI जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में अपने पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा अवास्केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित व्यापक चर्चा की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। ओमान के मस्कट में कल FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष और महिला टीमों ने अपने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय टीमें पुरुष और महिला वर्ग के एलीट पूल में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by RS Raghu. Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues including the NEET paper leak case. Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to the father Emir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Union Minister Jagat Prakash Nadda met the representatives of protesters in New Delhi. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation, and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. More than 118 police personnel sustained injuries yesterday when a protest escalated into violence in New Delhi area. The injured include senior officers of the rank of Special Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, Additional Commissioner and Deputy Commissioner of Police. In a statement, Delhi Police said, during the protest, the protesters displayed unruly, aggressive and violent behavior, and despite repeated warnings and lawful directions, they refused to disperse and violated the prohibitory orders in force. Delhi Police said the protesters attacked police personnel, vandalized police and other government vehicles. The police said during the scuffle, around 60 protesters were reported to get injured. It said around 70 protesters have been detained and appropriate legal action is being initiated and an FIR is being registered under the relevant provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita and other applicable laws. President Draupadi Murmu has called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth air sectors. The President was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau yesterday. Referring to the vision of Vikasit Bharat 2047, President Murmu said, India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for Indian businesses. Earlier, President Draupadi Murmu and her Moldovan counterpart Maya Sandu held delegation-level talks. The Supreme Court has asked the Uttar Pradesh government to apprise it about the possibility of setting up an SIT to probe the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya and cautioned the litigants not to politicize the issue. A bench comprising Chief Justice of India Suryakant and Justice Joymalya Bagchi and V. Mohan asked Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the Uttar Pradesh government, to take instructions on whether the special investigation team, which had examined the entire issue before the registration of the FIR, could be entrusted with the responsibility to probe the case instead of local police. The apex court will hear plea again on the 27th of this month, when Uttar Pradesh government will apprise it about sit probe in the matter. In Himachal Pradesh, all education institutions in Kangra, Mandi and Sirmaur districts will be closed today in view of a red alert issued by the weather department, officials said. The Met office has issued a red warning for heavy rain in Chamba, Kangra, Kullu, Mandi and Sirmaur districts tomorrow. Authorities have asked people to follow official advisories and to contact the state emergency helpline 1070 or the district emergency helpline 1077 in case of any emergency. The Indian sub-junior men's and women's teams made winning start to their respective campaign at the FIH Youth Hockey 5S Asian Championships at 2026 at Muscat, Oman yesterday. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है. समय हुआ है 3:10 श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गजल गीत. कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति गायक कलाकार हैं पंडित अनूप जलोटा और निगारिका सिन्हा. गीत रचना यानी कि जो गजल रचना है वो है मिर्जा गालिब साहब की और संगीत दिया है निहारिका सिन्हा ने. तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति.

जी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे, और कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गजल के साथ चित्रा सिंह को।

और कार्यक्रम की अग्नि प्रस्तुति के रूप में हमने लिया है एक गजल को फिल्म नाम से। कलाकार हैं पंकज उदास और साथी, रचना है आनंद बख्शी साहब की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।

0: इसी के साथ आज का गजल गीत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।
1: लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का यह लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं चरण्या लक्ष्मी कुमारन का गायन।

आषाढ़ मास की 30वीं तिथि तदनुसार 21 जुलाई 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 48 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओ आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज का विषय रहेगा कंधे का मूवमेंट और ताड़ासन। प्रस्तुतकर्ता होंगी योग विशेषज्ञ डॉ हिमानी श्योखन। 5:30 पर स्वर रंजनी कार्यक्रम होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आप सुनेंगे वरुण कुमार पाल का गिटार पर बजाया गया राग नट भैरव।

सुबह 7:10 पर संगीतिका कार्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे अर्चना आचार्य के भजन। 7:30 का समय रहेगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग अर्थात हिंदी फिल्म संगीत का, और 8:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर शर्वरी बनर्जी का गायन।

और साथ ही परामर्शदाता होंगी स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, भेंट करता होंगे दिलीप झा। नौ बजकर 30 मिनट का समय रहेगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का, और दिन में 10 बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित। ग्यारह बजकर 30 मिनट पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा सुरमंजरी, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे अनुजा झा का सितार वादन। दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर महिला कार्यक्रम होगा घर आंगन। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में अब आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

सुबह 9:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका, जिसमें आज का विषय रहेगा भ्रूण चिकित्सा और जेनेटिक्स। प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर ज्योति गुप्ता, भ्रूण चिकित्सा और आनुवंशिकी विशेषज्ञ।

0: मन में रंग किया कल में भी असर हुआ नाम कदाई अलो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वे इस प्यार बड़े गुणे तू चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सरगुर विट मारिया इत मिले
1: ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ।

करे औगण पछु तामना। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार।

वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह।

दया कपाल संतोख सूत जत गंदी सत वट एहो जनो जी का पांडे घट ना टुटे ना मन लगे ना जाए तन सुमा।

ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦਇਆਲ।